बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: rewind. Sif Rova par.
1: Introducing Pizza Hut's new tikka and paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
5: At Bunnings Trade, we've got your next build covered from foundation to finish. With our estimating and takeoff service, our team provides costings and calculated quantities, then partner with local suppliers to keep you covered throughout your build. Call us on 0800 134 872. Bunnings Trade.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
7: The Grand Musti Night in conjunction with Freight & Cargo Brokers, Lowfinity in Wicked Chicken Botany Downs on 23rd May at Manurewa Netball from 6 p.m. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satya Anand, Jay Bhaiyaji, Rowdy Naman Chapar alongside Money, Monto, Aku and Ketan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jay's Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Kes Manurewa and Wicked Chicken Botany.
8: Don't miss out.
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz.

0: केतन
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan. वैसे बहुत सारी बातें करनी हैं. Yes, बीच में of course, you know, I just went out for a quick work. But yes, how have you been? कैसा जा रहा है आपका lunch time? काफी बातें हमने की है. Of course, ये सारी बातें जैसे कि you know, आपको homesick remedies के बारे में बताया है, and then of course office shout out के बारे में भी बताया है, and of course कुछ latest news भी बताई है जो आपको of course थोड़ी देर में हर आर में हम आपको बताते हैं. SR की भी latest जो खबर है उस पर भी थोड़ी नज़र डाल देते हैं. पहले music सुन लेते हैं यार, music बहुत प्यारा है यार. हाँ, ये इसके बिना क्या थोड़ा उतना मज़ा नहीं आता है. बट यस, ट्रैफिक यार, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो चुका है ऑकलैंड में. इट्स लाइक आप पता नहीं आप कौन सा ऐप यूज़ करते हैं अपने फ़ोन पे या फिर अपने यू नो कार डिस्प्ले पे, बट डू यू थिंक आपका कोई ऐसा ऐप है जो रिकमेंड करेगा फॉर यू? आई मीन लाइक यू वुड लव टू रिकमेंड मी कि जो एड्रेस है, आई मीन जो ETA होता है वो आपको एग्जैक्ट बताता है. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम सामने वाले को बता देते हैं दैट ETA मैं इस टाइम पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑन एंड ऑफ ऐसा हो जाता है कि आप नहीं कर पाते हैं. बट यस, बहुत ही बढ़िया बातें करनी है. बट अभी की लेटेस्ट खबर बता देता हूं. ऑकलैंड के स्टूडेंट्स के डेटा एक मैसिव ग्लोबल साइबर हैक में लीक होने का रिस्क है. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड और ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कैनवा बैक हो गया है, जो थर्ड पार्टी कंपनी इंस्ट्रक्चर चलाते रहते हैं. और इस ब्रीच में स्टूडेंट्स के नेम्स, ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट्स आईडी एंड ऑफ कोर्स यू नो काफ़ी ऐसे प्राइवेट मैसेजेस हैं वो एक्सपोज हो सकते हैं. यूनिवर्सिटी ने ये भी बोला है कि पासवर्ड्स और असेसमेंट डेटा सेफ हैं, लेकिन फिशिंग स्कैम्स के डेंजर बढ़ चुके हैं. हैकर्स ने एलिजली यूनिवर्सिटी को May 12th तक कॉन्टैक्ट करने की वार्निंग भी दी है.
1: Lunchbox with Ketan.
2: मुझे पसंद है लड़का.
1: हाँ.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: टाइगर बार एंड रेस्टोरेंट इन सोहो होटल माउंट रॉस्कल आए और इंजॉय करें इनका सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग एक्सपीरियंस जहां पर आपको तरह तरह के फ्लेवर्स मिलेंगे क्रिएटिव एशियन फ्यूजन डिशेस से लेकर जेस्टी सी फूड तक साथ में रिफ्रेशिंग कॉकटेल्स सब कुछ एक बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश अंदाज में। ये ओपन है फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर क्लोज टू ऑकलैंड सीबीडी एंड मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। टाइगर रेस्टोरेंट बार इन सोहो होटल स्टोरा रोड माउंट रॉस्कल विजिट टाइगर @soho.co.nz।

0: Make your budget stretch further with Mitre 10. Freshen up the walls with Accent Interior Paint 10 litre, now $119. Plus get 20% off assorted Nuvo tapware. T's and C's apply. Grab these great deals and more in-store or online at Mitre 10.
1: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
2: Time check.
3: Time ho chuka hai din ke theek ek.
2: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
4: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 1. Met Service is warning small tornadoes are possible as a weather system pushes over the country's western coast. In the south, gusts of up to 110 k's are expected and up to 100 in the north. There is a moderate risk of thunderstorms till midnight. And surface flooding is affecting roads in the South Island. The Transport Agency has issued an area warning for State Highway 7 between Reefton and Springs Junction on the west coast. Another one remains in place for State Highway 6 that connects the region to Makarora in Otago. Instagram is rolling out further restrictions to its teen accounts. It's aiming to prevent young users from seeing age-inappropriate content, with the new rules based on 13-plus movie ratings. Spokesperson Mia Garlick.
5: We're really trying to build on the research and the feedback that we've had from young people and parents to make sure that we're addressing their core concerns.
4: And Consumer New Zealand is bringing back its Yen Na Awards for 2026. Spokesperson Gemma Rasmussen says it's about highlighting the worst of the worst in business.
6: We give out these awards to put pressure on poor performing companies to try and help them up their game.
4: To rugby with Shift 4, one Test All Black, now Wallabies prop Aidan Ross loves the prospect of an Anzac Day Bledisloe Cup test. Ross says it's a great idea and fitting it into the schedule does not need to be a big issue.
7: Once you're in the groove, you know, you're just playing week in, week out, so they can make it work. I'm sure as players, they want to play it. I'm sure as fans, they want to see it happen, so why not?
4: And play has been suspended late in the opening round of the PGA Tour event in North Carolina. Kiwi Ryan Fox is two over with two holes to play, sitting just outside the top 50.
2: Sports news brought to you by Sona Sensar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update
8: with Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 46 26 26 or visit gobananasnz.co.nz.
2: Bollywood ka asli blockbuster. Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga. Playing Bollywood's biggest hits. Hum.
3: वेदर के हालचाल जान लेते हैं। सबसे पहले आज 22 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाला है और 14 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर आने वाला। 90% चांस है बारिश के आज। 8.6 mm हो सकती है बारिश, क्या बात है। लेकिन आज का सनसेट होगा 5:30 PM पे।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
9: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
2: लंच के मंच पे।
3: Welcome back. Here on Namaste. आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच वॉक शो में। Well, दिन बहुत बढ़िया है, काफी वार्म फील हो रहा है मुझे पर्सनली। आप भी बताइए, इज इट गुड ओवर देयर जहां से भी आप मुझे सुन रहे हैं। यहाँ पे तो अभी लास्ट के, अरे कल भी थोड़ी गर्मी ही थी। गर्मी ऐसे लाइक नो, रात में यूजली मैं नाइट गाउन पहनता हूँ, बट कल मुझे लगा कि यार थोड़ी गर्मी है तो चिल आउट, मतलब यू नो अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू वेदर मैं उस तरह के कपड़े पहनूँ। बट यस, लास्ट का जो एक हफ्ता था वो काफ़ी ठंडा था और अभी कल और आज थोड़ा, बट कहीं कहीं कहीं कहीं ह्यूमिडिटी भी फील हो रही है। सो यस, आप मुझे बताइए जहाँ से आप सुन रहे हैं, इज़ दैट कोल्ड इनफ? और अभी थोड़ी गर्मी है वहाँ पे भी। डाउन साउथ की अगर बात करूँ, जहाँ से मैं था इन्वरकागिल से, वहाँ पे तो भाई मेरे ख्याल से मार्च से ही शुरू हो गई थी ठंड। बट यस, मेरे को लगता है ऑफिशियली ऑकलैंड में अभी भी हम वेट कर रहे हैं प्रॉपर ठंड का। But you guys are back on your normal, you know, winter dresses, jackets, so वो सब पे आ गए आप? बताइए मुझे 5599 पे। But yes, इस आर में आप बने रहिए, because यहाँ पे हम आपके लिए थोड़ी देर में लेके आएंगे बहुत ही जल्द लंच टाइम रेंट लाइन की बातें, जहाँ पे आप मुझे अभी टेक्स्ट करके भेजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। इट कुड बी रिलेटेड टू लंच, इट कुड बी रिलेटेड टू नॉट लंच एग्जैक्टली, बट इट कुड बी रिलेटेड टू योर फूड और इट कुड बी रिलेटेड टू योर सम अदर देन फूड एज वेल. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक तो खाने से अगर बात करूँ तो फिश वाला मैंने एग्जांपल दिया था, दैट अगर आप माइक्रोवेव में रखेंगे, वहाँ पे हीट अप कर रहे हैं, तो स्मेल जो है उसकी ऐसी भयंकर होती है दैट यू नो अदर पीपल विल ऑल्सो ईदर दे विल फील लाइक आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव फिश या फिर नहीं. बट येस दूसरी तरफ मैंने ये बताया था, इंडिकेशन का बताया था दैट पीपल डू ड्राइव बट दे जस्ट ड्राइव इट लाइक दे ओन द रोड लाइक दैट. तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं इफ़ यू फील लाइक ये दिक्कत है बात पे. सो यस 5599 इज द नंबर, आप अपने नाम के साथ मुझे भेज सकते हैं. बट यस इस आर में आपके लिए मैं एक और मस्त चीज लेके आने वाला हूँ. डू यू नो ऑल, आपको डेफिनेटली पता ही होगा एंड आई नो दैट यू ऑलवेज बीन वेटिंग फॉर दैट. आप हमेशा 8, 11, 1 और 5 के हिसाब से वेट करते हैं. सो यस आज भी मैं इस आर में बताने वाला हूँ कि भाई वो स्पेशल जो कोड है वो क्या है, बिकॉज उस कोड को सुनते ही आपको डालना है रो ऐप पे, और रो ऐप पे डालने के बाद यू विल गेट इनटू ड्रॉ जहां पे आप जीत सकते हैं एक रिटर्न फ्लाइट टिकट टू फिजी.
2: बचाओ क्या,

0: with Ketan.
1: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, yes, आप मुझे टेक्स्ट करिए, बताइए कि आप किसके थ्रू मुझे सुन रहे हैं. आर यू लिसनिंग टू मी थ्रू रेडियो, आपकी कार के थ्रू, या फिर आपके कंसोल के थ्रू जो घर पे है, यानी कि 104.2 एफएम के जरिए, या फिर आप मुझे रोआ ऐप के जरिए सुन रहे हैं वाइल ड्राइविंग. मेक श्योर करना आप प्लीज टेक्स्ट करिए मुझे 5599 पे. और हाँ, एक और जरिया है जहां से आप सुन सकते हैं, वो है hum.roa.nz. अब देखिए, मेरे घर पे ना ही रेडियो कंसोल है और ना ही मेरे पास कोई ऐप है ऑन पीसी. तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसे वेबसाइट ओपन करता हूँ hum.roa.nz, और वो कूल तरीके से चलता रहता है. एंड उस हिसाब से ना गाने चलते रहते हैं, मस्त, बहुत ही बढ़िया लगता है, मज़ा आता है सुन के. सो यस, दैट इज़ माई वे ऑफ लिसनिंग व्हेन आई एम एट होम. और बस यस, आप भी मुझे बताइए क्या जरिया है. कार में तो ऑफकोर्स मेरे पास रो ऐप चला लेता हूँ मैं, इनफैक्ट है, बट कभी कभी लूज़ हो जाता है, यू नो, क्वालिटी, यू नो, जब से हमारे एक फ्रिक्वेंसी गई है हाथ से, तो डेफिनेटली यू नो, हम में थोड़ी फ्रिक्वेंसी जो क्लियरेंस है ऑडियो में, उसमें दिक्कत तो आती है, बिकॉज दे आर स्टिल मेंटेनिंग सम ऑफ द एरिया फॉर 104.2 एफएम. बट यस, कार में मैं प्रेफर करता हूँ रो ऐप, और रो ऐप के जरिए यू नो, कभी भी कुछ भी मेरे को चीज़ एक्सप्लोर करनी है, मैं इजी तरीके से कर लेता हूँ. आपके पास भी मौका है, आप भी कर सकते हैं वही सेम चीज़. एक गेम है चर्डल, उसे भी खेल सकते हैं रो ऐप के जरिए. जाइए, और अगर आप, इफ़ यू फील दैट यू आर अ कीवी वर्ड विजर्ड, देन दैट इज़ अ गेम, प्ले इट एंड विन $100. बट डू टेक्स्ट मी अबाउट द लंच टाइम रेंट लाइन. जी हाँ,
0: सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग. प्रेजेंटिंग बैक योर बैकयार्ड बीट्स, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार. आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे. ट्यून इन करो और अपने बैकयार्ड बीट्स को दो फुल सपोर्ट. बैक योर बैकयार्ड बीट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स. गूगल PFSL टुडे एंड अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. There's the mum who raised you, the grandma who spoiled you, and the auntie who knows all your secrets. Buying gifts for all of them? Stressful. Buying a Prezi card? Easy. The Mother's Day gift that always lands. Shop prezicard.co.nz.
2: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like LA and San Francisco from just $939 one way. Or fly to Vancouver from only $999 one way. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent. Conditions apply.
3: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
4: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
3: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
4: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tamaki showroom. It's worth the visit.
3: Elite Bathroomware.
4: A reflection of you.
5: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us

0: Lunchtime Rant Line.
1: हाँ जी, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में फिर से। लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सबसे पहले तो आपके मैसेजेस के लिए, बहुत बहुत मैसेज आए हैं। होपफुली टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं सब तो पढ़ नहीं पाऊंगा, बट लेट मी रीड आउट। सबसे पहला भाई राज भाई हमेशा सबसे पहले मुझे मैसेज करते हैं, थैंक यू सो मच राज भाई। मैंग्रे से करते हैं मैसेज, कहते हैं कि ब्रो, ऑकलैंड ड्राइवर्स ईदर ड्राइव लाइक दे आर इन द फास्ट एंड फ्यूरियस और लाइक दे जस्ट लर्न्ड यस्टरडे, देयर इज नो बैलेंस। That is true, yeah, that is true. But not totally, यार, मतलब मेरे को लगता है कि हाँ, हमें आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं इस पर, क्या फीडबैक है आपके। यस, उसके बाद अनीता कहती है, वाई डू आंटीज आस्क वेन यू आर गेटिंग मैरिड बिफोर दे इवन आस्क हाउ आर यू। रिलैक्स आंटी, लेट मी फिनिश माई समोसा फर्स्ट। ये बढ़िया तरीका, ये बढ़िया क्रिएटिविटी इन्हें दिखाई अनीता जी ने। वेल थैंक यू अनीता आपके मैसेज के लिए। वेल, इसका जवाब तो आंटीज ही देंगी कि क्यों वो पूछती हैं हाउ आर यू से पहले, भाई शादी कब कर रही है, ये तो वही जवाब देंगे। संजय कहते हैं, समवन इन माय ऑफिस कीप्स माइक्रोवेविंग फिश एट लंच। ये तो मैंने, देखो मैंने बात की थी आपको, वो किसने वही मैसेज किया है, वी नीड HR इंटरवेंशन इमीडिएटली। ऐसा लग रहा है किसने, इन्होंने ये बोला है, we also need to include that if you want to get citizenship, you need to have this thing not to be microwaving in. ये सही था। Well, Priya कहती है, Indian parents still use ice cream container for curry, should honestly be investigated. I trusted that containers emotionally. When I was hungry, I opened up. I wanted to have the craving. I was having craving of ice cream, but when I opened the ice cream box, it was frozen dal. ये सही था, आपके साथ भी होता है ऐसा, 5599 पे बताइए मुझे। देव कहते हैं, आखिरी मैसेज पढ़ते हैं हम, इफ यू स्टैंड इन द मिडल ऑफ सिल्वर पार्क विद योर होल फैमिली ब्लॉकिंग द वॉकवे, जस्ट नो पीपल बिहाइंड यू आर सफरिंग। इतना मैंने नोटिस नहीं कभी, कभी मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया, बट कुड बी ऑफकोर्स, यू नो, अलग अलग लोगों की अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। चलो आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं। कविता कहती है, ओटाहू से, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, आई वोक अप टू 63 गुड मॉर्निंग मैसेजेस एंड 3 ग्लिटर रोजेस। ओ, ये तो होता है, ये तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मेरी फैमिली ग्रुप है फ्रॉम इंडिया, और जब मैं सुबह उठता हूँ, बेसिकली मैं तो पहले उठता हूँ, तो ऑफकोर्स उनको टेंशन नहीं, लेकिन दिन के टाइम, लाइक लंच टाइम अभी हो रहा है, तो इसी टाइम मुझे इतने टन टन टन टन टन टन घंटियाँ बज रही हैं, और सबके गुड मॉर्निंग सबके मैसेजेस आ रहे हैं। बढ़िया, थैंक यू सो मच यार आप सभी के लिए, और जिन्होंने मैसेज भेजे हैं आप ऐसे ही भेजते रहिए, मैं नेक्स्ट सेगमेंट में डेफिनेटली आपके पढ़ूंगा। बट कीप लिसनिंग टू मी लंच बॉक्स शो में।
0: लंच बॉक्स विद केतन। हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना, तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे। Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

यस डेफिनेटली आ गया हूँ मैं, बट यस यहाँ पे बात होगी और भी चीजों की। एक शो होने जा रहा है, जी हाँ एक शो होने जा रहा है, राहत फतेह अली खान, वन ऑफ माय फेवरेट लेजेंडरी सिंगर, उन्हें काफी टाइम से फॉलो भी करता हूँ, वो आ रहे हैं यहाँ पे 25th of July लाइव एट द ट्रस्ट एरिना। जी हाँ इनका शो होने जा रहा है, तो आप डेफिनेटली इनके गाने जो है मिस मत करेंगी लाइव परफॉर्मेंस। मैंने 2 साल पहले इनको एक्सपीरियंस किया था पहली बार, एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली एज अ सिंगर माई सेल्फ, मैं आपको बताता हूँ ये शो डेफिनेटली अगर आप मिस करेंगे तो बहुत पछताएंगे। सो यस अभी भी आपके पास टाइम है, टिकट खरीद लीजिए, लाइव एट द ट्रस्ट एरिना में होने वाला है। चाहे उनकी पावरफुल वोकल हो, हाई पिच हो, उनके सरगम हो या फिर कवाली के टच हो, ये सारे जो है एक से बढ़कर आपको सुनने को मिल सकते हैं। बट यस एक और चीज आपको सुनने को मिलेगी, तरह तरह के गानों की बैक टू बैक। एक सबसे खास बात पता क्या है, ये टाइम वेस्ट नहीं करते, ये कम्युनिकेट नहीं करते, ये बस आपको गाने सुनाते हैं एक के बाद एक के बाद, और इतने बढ़िया बढ़िया। मेरा तो एक गाना है, वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं गाया, बट मेक सेंस यार, वो ऑब्वियसली उन्होंने इतने हजारों गाने गाए हैं उनमें से वो कहाँ आएगा। एक गरज बरस मेरे को बहुत पसंद है, गरज बरस सावन फिर आयो। एनीवेज तो आप इस कॉम्पिटिशन इस शो में जाइए, कॉम्पिटिशन ये रहा आप सभी के लिए, हमारे लिसनर के लिए, आपके लिए एक मैं गाना चलाने वाला हूँ, उसे सुनिए आज और मुझे बताइए कि उसके जो 2 लाइन है वो मुझे जल्दी से भेजना। बट उससे पहले इस गाने को थोड़ा बंद करते हैं। हाँ जी ये हो चुका है बंद, अब मैं गाना चलाऊंगा और गाना सुन के आप मुझे बताइए कि फटाफट से मुझे RFK लिख के मुझे 5599 में टेक्स्ट भेज देना अपने नाम के साथ और लिरिक्स भी लिखना 2 लाइन। तो ये रहा आपके सामने ये गाना।

सो यस, ये गाना है, ये मैंने चला दिया म्यूजिक, आप फट से मुझे इसकी जो स्टार्टिंग की जो दो लाइन है उसकी करेक्ट लिरिक्स जो है वो मुझे भेज दीजिए 5599 पे, और ड्रॉ में शामिल हो जाए जहां आप जीतेंगे, जीत सकते हैं एक डबल पास फॉर द शो। लंच के मंच

0: वेल नीरज श्रीधर और हर्षदीप कौर की आवाज में आपने ये गाना सुना है, जक मार के। क्या बात है, क्या बात है। ये गाना मैंने चलाया पीछे, आप सभी को पता है क्यों। गाना सुनिए पहले, आवाज सुनिए इस बहुत ही बड़े लेजेंड की।
1: थोड़ा ठहर, थोड़ा ठहर, सुन ले जरा।
0: क्या आवाज है यार, मतलब जितना जितना जितना सुनूं उतना कम लगता है मुझे। मैं मिला था दो दिन पहले यहाँ पे, बट अमेजिंग है, बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदा है। और मैं एक्चुअली पता है, मैंने सैंडी को इनको बोला भी है दैट आई एम वेरी वेरी इंट्रोवर्ट व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ सेलिब्रिटी। मैं पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि यार उनकी प्राइवेसी जो है यू नो नहीं करना चाहिए। एक होता है ना कभी किसी को, हमने काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं, लोग हर्ट हो जाते हैं, भाई क्या है अब, ठीक है ना यूँ ऐसे। तो मेरे को लगता है कि शायद उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट यू नो किसी रेस्टोरेंट में अगर मैं खाना खा रहा हूँ, वहाँ पे भी अगर कोई आ गया तो आई वोंट फील लाइक, मैं दूर से उनका कैप्चर कर लूँगा हल्का सा एक दो सेकंड के लिए, बस खत्म। बट आई एम वेरी वेरी इंट्रोवर्ट टू गो एंड टॉक टू देम। बट यस, आप सुनिए और बहुत ही बढ़िया इनका शो जो है वो आज होने जा रहा है। $59 से टिकट खरीद सकते हैं आप। आज के दिन शो है, आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। StarAllianceEntertainment.com पर जाकर आप ये खरीद सकते हैं। जी हाँ, 8 मई यानी कि आज के दिन विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। आई नो मेनी पीपल हैव ऑलरेडी बॉट द टिकट्स, बट इफ यू हैवंट, आज आखिरी मौका है आपके पास। सो यस, जाइए वेबसाइट पे और खरीद लीजिए इनके टिकट्स।
1: ये जिंदगी
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
4: इसके पीछे
5: ब्रो, लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी ल्यूक वार्म, टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तो क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तो बीच के लिए बनाए, तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
6: लिसन टू हम ऑन रोवा एवरी वीकडे एट 8 AM, 11 AM, 1 PM एंड 5 PM। हम देंगे एक स्पेशल कोड वर्ड। यू गॉट 60 मिनट्स टू एंटर इट इन द रोवा ऐप एंड गो इन द ड्रॉ टू विन अ ट्रिप टू फिजी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द रोवा ऐप नाउ, विन अ ट्रिप टू फिजी, ओनली ऑन हम ऑन रोवा। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
7: It's nesting season at Freedom. Save up to 50% off selected sofas, furniture, and mattresses. That's up to 50% off. Hurry, sale ends Monday. Only at Freedom.
8: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a shower dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every shower dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
9: If your business needs a boost, a push in the right direction, or some shelter to get you through, KiwiBank can help with Fast Capital, the digital loan application with real-time decisions. It's the fuel for your rocket, the wind in your sails, and an umbrella in the rain that allows you to grow, expand, or provide a buffer for your business. Search KiwiBank Fast Capital to apply online today. This is Kiwi. Eligibility criteria, lending criteria, T's and C's and fees apply.
10: Manukau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys ला रहे हैं भक्ति कीर्तन संध्या Friday 8 मई को रात 7 बजे से Vedic Center 32 Glasgow F Papatoetoe में, जिसमें कलाकार रहेंगे फिजी के नितिन निलेश प्रकाश और न्यूजीलैंड के दवेन नाथ। दो पहुंचे हुए कलाकारों को एक साथ देखने का अनोखा मौका। टिकट्स सिर्फ $20 हैं। तैयार हो जाइए भक्ति कीर्तन संध्या के लिए Friday 8 मई को रात 7 बजे से Vedic Center Papatoetoe में।
11: Pacific Electrical Services presents Javed Ali live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Mohammed Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8 May, 7 p.m. onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit StarAllianceEntertainment.com or call Edwin on 0211-382184.
12: Ek din tera ho jaunga.
13: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
14: हाँ। अच्छा
13: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
14: मिसेस सिंह,
15: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
16: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन्स.co.nz।

0: ब्रेकफास्ट विद केतन।
1: मुझे पसंद है लड़का।
0: हम
2: स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स में। फिर से बॉलीवुड की खबर लेके आया हूँ। बॉलीवुड में आजकल काफी चीज का रूमर्स जो है वो बढ़ते जा रहा है थ्री इडियट्स टू को लेकर। जी हाँ, एक्साइटमेंट तो बढ़ी रही है, बट क्या ये सचमुच हो रहा है? नहीं। वेल, आर्टिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कंफर्म भी किया है कि सीक्वल पर काम कर रहे हैं और स्टोरी सपोजली 10 से 15 साल बाद सेट होगी। वेल, ये कहानी बताया जा रहा है। फैंस नेचुरली क्यूरियस भी हैं रैंचो फरान राजू की लाइफ को अब कैसी होगी, लेकिन कंसर्न ये कि बॉलीवुड में आजकल नॉस्टैल्जिया को काफ़ी ओवरसी कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि कुछ क्लासिक्स को सीक्वल की जरूरत नहीं है। रेडिट और सोशल मीडिया पर भी मिक्स रिएक्शन है। कुछ फैंस एक्साइटेड हैं, जबकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई ओरिजिनल को ओरिजिनली रहने दो, डोंट स्पॉइल इट उसकी लेगेसी। वैसे आर्टिकल का कंक्लूजन ये है कि अगर सीक्वल सिर्फ ऑल इज वेल नॉस्टैल्जिया और कॉल बैक्स पर डिपेंड करेगा तो फेल हो सकता है, लेकिन अगर वो आज के इश्यूज AI प्रेशर, करियर एंजाइटी, सोशल मीडिया कंपैरिजन, मेंटल हेल्थ को जेन्युइनली एक्सप्लोर करें तो हो सकता है ये ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। बट यस, आपके क्या रिव्यू है? थ्री इडियट्स टू बननी चाहिए या नहीं?
0: दिल से दिल तक।

वेल हम फ्लाईवे फ्रेंजी में ये रहा कोड जो आप डाल दीजिए रो ऐप में. जी हाँ, आज ये 8 तारीख और आज का जो कोड है वो है यसावा, यानी कि YASAWA यसावा. आप डाल दीजिए अपने रो ऐप पे बहुत ही जल्द, ताकि आपके पास अभी से लेके 60 मिनट्स हैं और 60 मिनट्स में आप रजिस्टर करने चाहिए ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सकें और एक रिटर्न एयर फ्लाइट टिकट जीत सकें, एज इन ड्रॉ में जा सकें टू फीजी.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

करना नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। कैसे हैं आप सभी? वेल यस, मेरा नाम केतन है, मैं अभी से लेके 3 बजे तक हूँ यहाँ पे, और ऑफ कोर्स मैं 12 बजे से यहाँ पे था वैसे तो, बट यस अभी मैं कॉफ़ी ब्रेक पे गया, यानी कि कॉफ़ी लेके आया हूँ। बहुत ही मन हो रहा था, बहुत ही क्रेविंग हो रही थी कॉफ़ी की, और वही लेके मैं आ चुका हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था एक्चुअली कॉफ़ी लिए हुए, बट यस इट्स अमेजिंग है, बहुत ही सही टेस्ट कर रहा है ये। बट आप बस बने रहिए, बिकॉज इस आर में भी काफ़ी कुछ ऐसी खबरें लेके आऊँगा। ऑफकोर्स एक टेक टॉक भी होने वाली है, और आपको मौके भी देने वाला हूँ, एक सिनेरियो क्रिएट करूंगा यहाँ पे जहाँ पे आप पार्ट लेंगे मदर्स डे पे। ऑफकोर्स 2 दिन ही बचे मदर्स डे के लिए, आई एम प्रीटी श्योर आपने बहुत ही बढ़िया दिल से बहुत कुछ प्रिपरेशन कर रखी होगी अपनी मॉम के लिए, या फिर फर्स्ट टाइम टू बी मॉम। वेल यस, मेरी वाइफ भी पहली बार मॉम, आई मीन शी विल बी सेलिब्रेटिंग द मदर्स डे फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम, विच इज गोइंग टू बी अमेजिंग यार, मजा आएगा यार, आई मीन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई एम प्रीटी श्योर। वैसे आज मैं स्कूल में भी गया एक जहाँ पे मदर्स डे सेलिब्रेट हुआ, तो यस आप बने रहिए उस तरह की खबरें को लेके, और अभी आपके सामने मैं थोड़ी देर में लेके आऊँगा बहुत सारी बातें। जी हाँ, वैसे यस आप उसके लिए सुनिए, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से महारथी आ चुके हैं यहाँ पे जो जिनका शो होने वाला है। वैसे आप सभी को पता है कब और कहाँ हो रहा है, बट स्टिल सुनते रहिए, बिकॉज उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ।

What a song, Soldier, DJ Chilli इनका नाम है. Well, yes, ये मैं बताऊं कि ये कौन है, उससे पहले आपको बता देता हूं कि ये म्यूजिक मंथ हम चला रहे हैं फॉर अस टू सेलिब्रेट द लोकल आर्टिस्ट. जी हां, हम यहां पे हर दिन एक नए आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करते हैं, उनके गाने भेजे हुए यहां पे हम उन्हें डेडिकेट करते हैं, ऑफ कोर्स उनके गाने चलाते हैं, उन्हें बताते हैं हमारे लिसनर को कि कितने बढ़िया एक से बढ़कर एक टैलेंट है. Well, yes, if you also know any singer or any musician जो गाने क्रिएट करते हैं तो वो हमें भेज सकते हैं buzz@humfm.com पर अपने बायो के साथ, ताकि हम यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके उन्हें भेज उनके गाने जो है यहाँ पे चला सके ऑन रेडियो. जी हाँ, MM लिखिए 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप तक डिटेल्स पहुंच जाए क्या है क्या नहीं है. बढ़िया सा आज के जो स्पेशल आर्टिस्ट थे, लोकल आर्टिस्ट थे, वो थे डीजे चिली. उनका गाना आपने सुना ही था, सोल्जर, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अमेजिंग गाना है ये. बट यस, अगर आप भी किसी को जानते हैं, मेक श्योर आप टाइम से हमें भेज दें सो दैट वी शॉर्टलिस्ट. बट उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जितने भी वोट्स यहाँ पे हमें मिलेंगे, प्लस ऑनलाइन भी वोट्स मिलेंगे, यानी कि आप जब भेजेंगे तो आपको कोलैबोरेशन करने का भी मौका मिलेगा हमारे साथ ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे जाके या फिर सोशल मीडिया पे जाके. और जितने भी लाइक्स आएंगे, जितने कमेंट्स आएंगे, शेयर करेंगे लोग, उतने आपके पास चांस होंगे उन्हें सुनने का, उन्हें फीचर होने के मौके को देख के, या जी हाँ, रो ऐप पे वो फीचर होने का मौका पा सकते हैं बाय टोटल एंगेजमेंट ऑनलाइन एंड ऑफ कोर्स ऑन एयर के साथ.

0: आतिफ असलम की आवाज में आपने गाना सुना है जिंदगी आ रहा हूं मैं। एक्चुअली शायद टाइगर श्रॉफ के साथ इन्होंने गाना किया है, बहुत ही बढ़िया। मेरे को वीडियो भी बहुत अच्छा लगा और गाना भी बहुत अच्छा लगा। पर यस, लेट्स कम बैक एंड अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। बे ऑफ प्लेंटी बीच पर एक डॉग वॉकर को पहले लगा कि कोई ईल यानी कि मछली जैसी क्रिएचर, आप सभी को पता ही होगा ईल कैसी दिखती है, रास्ते में पड़ी हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक हाईली वेनमस येलो बेलीड सी स्नेक थी। वाओ, ये न्यूजीलैंड में बहुत रेयर है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सेकंड सी स्नेक है जो कुछ ही दिनों में वहां मिली है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉर्म्स और ओशन करंट की वजह से ये ट्रॉपिकल स्नेक्स गलती से न्यूजीलैंड तक आ जाती हैं, लेकिन यहाँ के ठंडे पानी में ज़्यादा टाइम सर्वाइव वो नहीं कर पाती है। अथॉरिटीज़ ने वार्निंग भी दी है कि लोग इन स्नेक्स से दूर रहें और टच ना करें क्योंकि ये जहरीले होते हैं और अगर बाइट कर लिया तो शायद डेंजरस भी हो सकता है, इवन दो इंसिडेंट रेयर होता है। आई एम एक्चुअली लुकिंग एट द पिक्चर राइट नाउ और मतलब अलग ही, पता नहीं वो डेड है क्या है क्योंकि ये तो एकदम फोटो ले लिया है। बट यस, अगर आप भी उस वे में जाते हैं और अगर आपको दिखता है तो मेक श्योर कि आप ऐसा टच ना करें और या फिर एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाए नहीं आप। सो यस, लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हम यू गिव मनी गिव बैक। New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
1: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie. Tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
2: Get into Bunnings today and get cooking, because you can pick up a Mistral 6.5 litre digital air fryer for just $69. But hurry, only while stocks last. Shop online or in-store at Bunnings Warehouse.
3: Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
4: क्यों? क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे, बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424। ब्यूटीफुल हाउस प्लांट से लेकर हर वो चीज जो माँ को घर और गार्डन के लिए पसंद है, सब मिलेगा माइटन मेगा वेस्टगेट और हैंडरसन में। एवरीथिंग टू मेक मम स्माइल एक्सेप्ट द होममेड कार्ड, बट यू कुड लेट मम डिसाइड विद अ माइटन गिफ्ट कार्ड एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हैंडरसन।
6: स्कैमर्स वांट यू टू रश बिकॉज़ इट्स हार्डर टू नोटिस व्हेन थिंग्स आरंट राइट। Security features in the BNZ app help you take your sweet time. Bank of New Zealand. Let's find a way.
7: I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down.
8: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tire pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes

0: या रिप्ले।
1: स्वागत करते हैं आपका फिर से लंच बॉक्स शो में। वेल यस, आपको पता है कि आज दो डिस्क्लोजर होने वाले हैं। एक हो चुका है जिसका विनर ब्रेकफास्ट शो में हो चुका है। जी हाँ, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज जीत चुके हैं फॉर द मदर्स डे। क्या बात है मदर्स डे सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन एक और है आपके पास। वैसे जस्ट टू लेट यू नो, मैं थोड़ा अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ। एक्चुअली नहीं, थोड़ा सस्पेंस तो होना चाहिए, राइट? सो यस, अभी क्या है कि एक और कंपटीशन है जिसमें आप पार्ट ले सकते हैं। अभी भी टाइम है आपके पास, ड्राइव शो शुरू होने से पहले तक का टाइम है। अगर आपके पास अभी भी एक दो घंटे हैं, आपके पास टाइम है, तो फटाफट से एक कार्ड बना दीजिए, एक वाउचर बना दीजिए, पर्सनल वाउचर फॉर मॉम फिल्ड विथ एवरीथिंग शी डिजर्व। यानी कि आप वो वाउचर क्या बनाएंगे सो दैट शी कैन यूज इट। ऑफकोर्स शी वॉन्ट बी एबल टू, बट क्या आप स्पेशल वाउचर देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि मॉम को ये चीज बहुत पसंद आएगी? तो ये वाउचर बनाइए और हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहां पे हम 104.2 FM सर्च करिए, अगर नहीं मिलता है तो डायरेक्टली, और इस पे जाके शेयर कर लीजिए। यस, वंस यू गो देयर, फीचर्ड आपको पोस्ट दिख जाएगा, उसी के कमेंट सेक्शन में जाके आप डाल दीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी टैग करिए, आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। मेरे ख्याल से डेढ़ घंटा ही बचा है, डेढ़ घंटे के बाद कभी भी अनाउंस हो सकता है। सो जितना जल्दी हो सके आप पार्ट लीजिए और उसके साथ ही ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और $200 जीतने का आपके पास मौका है। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया है। सो यस, मेक दिस मदर्स डे इवन मोर स्पेशल फॉर योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स फॉर योर मॉम एज वेल। बट यस, बने रहिए, मैं थोड़ी देर में लेके आने वाला हूं जावेद अली के आखिरी दिन के कुछ ही सेकंड, कुछ ही आज बचे हैं, आप टिकट खरीद लीजिए। थोड़ी देर में आपको बताता हूं कहां से कैसे।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
4: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

स्वागत करते हैं वेल गेस एक बहुत ही लेजेंडरी शो होने जा रहा है आज रफी और मैं स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट आपके लिए लेके आए हैं एक टाइमलेस क्लासिक ऑफ मोहम्मद रफी बाय जावेद अली प्रेजेंटेड बाय पैसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज जो आज होने वाला है 8 तारीख को आज के दिन विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में यानी कि हमारे तो पड़ोस में ही है $59 से टिकट खरीद सकते हैं वहां से शुरू हो रहा है टिकट की प्राइसिंग अभी भी आपके पास टाइम है स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट.com पर जाइए और वहां से आप टिकट खरीद लीजिए फ्रॉम सोल स्टेरिंग रफी क्लासिक टू जावेद अली के खुद के टॉप गाने यानी कि आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे एक ही छत के नीचे सो टाइम वेस्ट ना करिए और जल्दी से अपने फोन से या अपने पीसी से वेबसाइट पे जाइए और खरीद लीजिए।

0: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे हम
2: ड्राइविंग यू होम
3: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ किसी ने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप तो
5: बताओगे।
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल। हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
8: At IKEA, turn clutter into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at IKEA.co.nz.
9: IKEA.
10: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel. Or tuck into beef enchiladas, tender pulled beef, soft tortillas and bright tangy sauce. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
11: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
12: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
13: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
12: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
14: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर Goals.

0: With Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. Tech Talk.
2: वेलकम बैक टेक टॉक के सेगमेंट में आपका स्वागत है. वेल यस, एक मस्त सी चीज थोड़ी डिस्कवर हुई है. मैंने तो क्या अभी तो चाइना ने की है डिस्कवर, हम तो भाई सोर्सेस हैं आप तक पहुंचाने के. बट यस, एक बहुत ही बढ़िया गेम आया है मार्केट में, चाइना ने इन्वेंट किया है, जो आपके कंट्रोलर से नहीं चलेगा. एक रेसिंग गेम है, जैसे एक कुछ बोर्ड है और बोर्ड के ऊपर कार्स लगी हुई हैं, F1 की जो टॉय कार होती है, और उनको आपको भगाना है बट विदाउट कंट्रोलर. तो यानी कि आप कैसे करेंगे ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये तो आपके लिए ऑफकोर्स यू नो पहले भी हो चुकी थी. वेल द गुड ट्विस्ट इज कि वो आपको ब्रेन से चलानी है. ये ट्विस्ट है, मतलब इतना बढ़िया लगा यार ये जो इन्होंने इन्वेंट किया है, ब्रेन कंट्रोलिंग गेम. ये उन्होंने अभी हाल फिलहाल तो नाम रखा है, बट ये नया इन्वेंट, और मेरे को लग रहा है ये गेम क्या है, ये तो रियल फ्यूचर में भी जो रेसिंग होगी वो भी लग रहा है आने वाले टाइम में इसी तरीके से वो खेलने शुरू हो जाएंगे. बट अमेजिंग यार, आप जब भी आपको मौका मिलता है आप सर्च करना ब्रेन कंट्रोलिंग गेम बाय चाइना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ. बट मैं जो वीडियो देख रहा हूँ मेरे सामने, अमेजिंग यार, मतलब चाइना इज एक्चुअली लिविंग इन 2050 यार. हम अभी भी, मेरे को लगता है न्यूजीलैंड 2015 में तो नहीं है. जोक्स अपार्ट, बट आप एक्चुअली सर्च करना ब्रेन कंट्रोलिंग गेम बाय चाइना, ये सर्च करना कहीं पे भी, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे भी, तो आपको समझ में आ जाएगा. बट यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू गाइस ऑन मंडे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टिकट खरीद लीजिए फॉर जावेद अली जो होने वाला है आज रात विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू.

नी तू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई पंग होगी।

0: चाहे आप हमके ढिंचैक 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.
1: व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस रन ऑन बिजनेस फाइबर? Cloud thriving businesses, CGI building businesses, even big file sharing, video calling, meme sharing businesses. For uncompromising bandwidth and reliability, get your business running on Business Fiber.
2: ब्यूटीफुल हाउस प्लांट से लेकर हर वो चीज जो माँ को घर और गार्डन के लिए पसंद है, सब मिलेगा माइटन मेगा वेस्टगेट और हैंडरसन में. एवरीथिंग टू मेक मम स्माइल एक्सेप्ट द होममेड कार्ड, बट यू कुड लेट मम डिसाइड विद अ माइटन गिफ्ट कार्ड एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हैंडरसन.
3: In this final hour, when the lives and well-being of your fellow country folk hang in the balance, is it you here that rise to answer NZ Blood's call?
4: Do they have parking?
3: There is some.
5: Are there biscuits?
3: Of course.
6: Can I do it during work hours?
3: Don't know. Talk to your manager. Probably.
7: Join forces and save lives. Plasma donations are powerful and help create up to 11 life-saving products. Book your plasma donation today at nzblood.co.nz.
8: Right now at Guthrie Vauron, enjoy free curtain making on thousands of quality fabrics. Take 15% off selected blinds, shutters and motorisation. Plus receive a free in-home measuring quote. Cozy up your home in time for the cooler months. Guthrie Vauron, inspiration starts here.
9: हम सब चाहते हैं कि रिसाइकल सही तरीके से हो, तो याद रखिए, प्लास्टिक बैग, ड्रिंक कार्टन्स और पुराने लैपटॉप अपने रिसाइकल बिन में मत डालिए. रिसाइकल सही करें, ये आपके हाथ में है. सर्च ऑकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमाकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ऑकलैंड. Pacific Electrical Services presents Javed Ali live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Mohammed Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8th May, 7 PM onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit staralliancentertainment.com or call Edwin on 0211-382184.
10: Ek din tera ho jaunga.
11: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडो जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
12: Non-stop Bollywood.
13: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
12: हम playing Bollywood's biggest hits. Coffee break with Sandy.
14: 314 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं फिलहाल. कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड आपके लिए आज भी हम बैक योर बैकयार्ड बीट्स यानी कि न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ में लोकल आर्टिस्ट का गाना लेके आ रहे हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे फील के लिए आज डीजे का गाना है. डीजे चिली, इनका एक रीमिक्स आप सुनने वाले हैं 5 बजे के बाद. 5 बजे के बाद जो सेकेंड सॉन्ग है ये एक्चुअली में आप सुनने वाले हैं. बट इफ़ यू आर अ लोकल सिंगर, अभी भी ज़्यादा देरी नहीं हुई है, 8 ही दिन मे के गए हैं, बहुत दिन बाकी है, तो आपका गाना भी यहाँ पे अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो हम यहाँ पे आपका गाना प्ले कर सकते हैं रेडियो पे एट डिफरेंट टाइमिंग. सो आप हमें ईमेल कर सकते हैं buzz@humfm.com पर, buzz@humfm.com हमारी वैसे ईमेल आईडी है. वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है अपने गाने के साथ एक्चुअली में आप भेज सकते हैं. अगर आपका गाना शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट किया जाएगा और बताया जाएगा कि आपका ये जो गाना है ये कब प्ले होगा. वैसे आज शाम को जावेद अली परफॉर्म करने वाले हैं. स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट का ये इवेंट है जहाँ पे रफी और मैं ये शो लेके आए हैं जावेद अली. जावेद अली की वैसे हमने कल आपके लिए इंटरव्यू प्ले की थी बिटवीन 6 to 7, जहाँ पे उन्होंने अपने दिल से जुड़े हुए गानों के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, अपने ऐसे गानों के बारे में बताया था जो उनके दिल के बहुत करीब है. सो ये सब गाने और भी बहुत गाने और मोहम्मद रफ़ी के गाने आज आप एक्चुअली में वहाँ पे सुनने वाले हैं. विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में टाइम पे पहुँच जाएगा, ऑन साइट पार्किंग अवेलेबल रहती है. अगर आपको टिकट चेक करनी है लास्ट मिनट की तो staralliancentertainment.com इज अ वेबसाइट जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं.
12: Hollywood's most wanted.
15: Kundi ghad dao. Ya seedha andar aao.
16: Main laau apna A game.
12: Brought to you by Indelible Home. your dreams.

324 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड कुछ कॉम्पिटिशन्स भी है. फ्लाई अवे फ्रेंजी, फ्लाई अवे फ्रेंजी का कोड भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और ये जो कोड है ये 5 बजे के बाद रहेगा. सो फ्लाई अवे फ्रेंजी ये प्रमोशन अगर आपने अभी तक मिस आउट की है कि इसमें होता क्या है,

इट्स वेरी सिंपल. सो अगर आपको एक हॉलीडे चाहिए, यू नो बहुत काम हो चुका है, यू वांट टू जस्ट गो आउट समवेयर, थोड़ा चिल करना चाहते हैं एंड वेदर बहुत ही अच्छा चाहते हैं इस समय पर, तो फिजी, वहाँ के रिटर्न एयर टिकट आपके नाम हो सकती है. सो वन रिटर्न एयर टिकट टू फिजी, ये आपके नाम हो सकते हैं. इसके लिए आपको करना क्या है, सुनते रहेगा. सो एवरी वीकडेज यहाँ पर हम आपको कोड, स्पेशल कोड्स दे रहे थे, जैसे कि 8 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, और आज 5 बजे के बाद आपको मिलने वाला है. सो बिटवीन 5 to 6 आपको एक कोड मिलेगा, एंड उसके बाद आपके पास 1 आवर का समय रहेगा, 60 मिनट्स रहेंगे रोवा पे जाके इस कोड को एंटर करने के लिए. सो रोवा पे जाएंगे, वहाँ पे हम पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन आपको हम फ्लाई अवे फ्रेंजी का पोस्ट दिखाई देगा, क्लिक ऑन इट एंड एंटर द कोड, और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा. अगर आपको स्क्रॉलिंग ज़्यादा नहीं करनी है, आपको लिंक चाहिए, तो FF लिख के भेज डालिए 5599 पर. ऑटो रिप्लाई में ये लिंक आपको हम दे देंगे. सो रोवा ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, नाउ इज़ द टाइम टू डाउनलोड, बिकॉज इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जो कि हम एक्सक्लूसिवली रोवा के लिए लेके आते हैं. सो फ्री टू डाउनलोड हमारी ऐप है, तो डाउनलोड कीजिएगा, एंड हमें कहीं पर भी कभी भी आप सुन सकते हैं.

0: साथ दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Bunnings Trade is here to help you get set for winter with our new winter workwear range. From trusted trade brands like Hard Yakka and Sitco, you'll find a range of jackets, hoodies and more, so you can keep warm on and off the site. Get set for winter with Bunnings Trade.

0: 3:36 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. एंड वैसे आरजू अपना तैयारी कर रही है शो की, जो कि उसका होने वाला है संडे को. एंड दिस शो इज गोना स्पेशल. आरजू हाय, गुड आफ्टरनून.
1: हेलो, गुड आफ्टरनून.
0: कैसी हो?
1: मैं ठीक हूँ, आप?
0: बढ़िया बढ़िया. सो संडे को आरजू दो सेलिब्रेशन करने वाली है, राइट?
1: मदर्स डे.
0: सेलिब्रेशन इज मदर्स डे,
1: ऑफ कोर्स.
0: सो यू गोना हैव द डेडिकेशंस ओवर हियर. तो आप उस समय पर मैसेज करना आरजू को 5599 पर. एंड
1: डेडिकेशंस, वी विल बी टेकिंग इन डेडिकेशंस.
0: या what is a second big celebration? बोलो.
1: मुझे शर्म आ रही है. मेरी 20th शो ऑन हम.
0: 20th शो है, 20 शो तक पहुंच गई ये लड़की.
1: They haven't fired me yet. Yeah.
0: हर शो से पहले वो थोड़ा कंफ्यूज होती है कि अच्छा कैसे ही जाएगा. मतलब उसका फिर एक सेशन होता है, लाइक अरे सही है, बहुत सही है.
1: ओह थैंक यू.
0: सो या सो 20th टू डेकेड्स ऑफ डबल डेकेड तुम सेलिब्रेट करने वाली हो ना.
1: यस, ऑल थैंक्स टू यू.
0: हाँ,
1: आपने मुझ में यू नो बिलीव करके
0: वो क्या देखा मैंने, क्या कहते हैं उसको, अंदर का कीड़ा देखा है.
1: थैंक यू, थैंक यू.
0: सही है. सो गाइज, शो सम लव. जब हम यहाँ पे बोलते हैं तो आरजू इसीलिए आती है यहाँ पे बताने के लिए कि भाई मुझे भी सुनना संडे को सुबह.
1: प्लीज गाइज, कोई टेक्स्ट पठाओ, मैसेज पठाओ. हाँ, आप लोग भी
0: तो आप सुनना. सो 6 से 12 ना आप संडे को सुनना, जब भी आपको टाइम मिलता है. हम ये नहीं कह रहे कि फुल 6 आवर्स सुनो, व्हेनेवर यू गेट टाइम.
1: 5 मिनट भी काफी है.
0: 5 मिनट भी उसको ये है कि आप जितना भी सुनोगे बढ़िया है. एंड सेंड अस द फीडबैक. थोड़ी चिट चैट हम करते हैं. लेकिन ये अभी थोड़ा बोलती है ना, आप संडे को सुन
1: एक स्टोरी बोलती हो,
0: कहानियां सुनाती है ये लड़की उस समय पर. तो आप सुनना तो भी है, इसका टैलेंट आपको ये सुनने को मिलेगा संडे
1: 6 to 12
0: सुबह
1: इन द मॉर्निंग.
0: इन द मॉर्निंग आपकी मॉर्निंग्स का साथ दे रही है आरजू. सो आरजू मूवी भी थी तुम्हें पता है एक?
1: ओह रियली, कौन सी?
0: माधुरी दीक्षित एंड देयर वाज अनदर एक्टर इन द मूवी, शाहरुख खान शायद.
1: ओह रियली,
0: नहीं याद मुझे. किसी को पता है तो प्लीज यहाँ पे कॉल करके बताओ. हमारा बेस्ट गूगल तो हमारे लिसनर्स है वैसे, बॉलीवुड की सबसे हमसे बढ़िया जानकारी उनके पास होती है.
1: आई नो लाइक अ लॉट ऑफ लाइक ग्रोइंग अप आई न्यू लाइक सो मेनी सॉन्ग्स में आरजू था. सो आई टू गेट एक्साइटेड एंड एवरी टाइम इट्स सो फनी लाइक व्हेन मी एंड माय कजिन्स हम गाते थे लाइक बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड देन वी न्यू दैट माय नेम इज कमिंग अप सून एंड दे विल ऑलवेज पॉइंट एंड लाइक सिंग दैट पार्ट लाउडर. इवन लाइक इवन हैप्पी बर्थडे में बार बार दिल ये गाए
0: माधुरी दीक्षित एंड अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान.
1: वाओ, व्हिच ईयर? 80s.
0: सो दिस इज 1999. ओह, क्लोज टू 2000s.
1: आई वाज 2 इयर्स ओल्ड.
0: या सो या, अच्छी मूवी लग रही है ये. सो परेश रावल भी, अमरीश पुरी,
1: गुड कास्ट
0: एक्चुअली. मुझे लगता नहीं मूवी ज्यादा चली थी, बट या. ओह, प्रशांत ने मैसेज किया है, आई लाइक आरजू शो, हिंदी भी थोड़ा और चलेगा.
1: हम कोशिश कर रही हूँ.
0: आपको पता है कि आरजू को नेपाली तो बहुत ही फ्लुएंटली आती है. अरे yes. नेपाली आती है बहुत अच्छी. तो अभी नेपाली में तुम गुजारिश करो कि तुम्हारा शो देखे, सुने
1: नेपाली में.
0: हाँ,
1: ओके,
0: फुल नेपाली में.
1: ठीक है. ओके, हाँ से संडे प्लीज मेरे सन आइतबारमा मेरो शो हार्न हर्सेस शो नेपाली मेरो इङ्ग्लिस चलेगा. ओके, आइतबार मेरो शो सुन्न आउनुहोस् प्लिज, किनभने रमाइलो हुन्छ. आफ्नो क्या लाग्यो?
0: क्योंकि मेरो पता तुम क्या बोल्ने वाली थी. तो
1: व्हाट डज रमाइलो मीन?
0: रमाइलो
1: रमाइलो हुन्छ. आई सेड रमाइलो हुन्छ.
0: थ्याङ्क यू.
1: No.
0: Huh.
1: Thank you. Same as you. Dhanyawad.
0: Okay, dhanyawad. Okay.
1: Dhanyawad? So yeah, ramailo hunsa is like it'll be fun. Ramailo means fun. Hunsa means it will. It is.
0: Okay. Hunsa. Ramailo hunsa. मतलब बहुत मजा आएगा.
1: बहुत मजा आएगा. Yeah, that's the literal translation. बहुत मजा आएगा.
0: Okay. So ramailo hunsa, guys. जब आप सुनेंगे आरजू को.
1: I think my Hindi has gone better. Prashant, what do you think? 5599 rupees.
0: आप संडे को सुनना. Full सुनना भी.
1: Full. मैं सब हिंदी में बोलूँगी. Start से शुरू तक.
0: वो dance भी नहीं बोलती है. वो नाच बोलती है.

0: accurate traffic.
1: Northern Lights Autumn Carnival Meet.
2: A windy evening with a few showers tonight, the low 14 degrees. On the southernmost way out of town, we had a crash after Hill Road. It's been cleared, but it's still looking very heavy in patches all the way from town to Papakura. An hour and 20 minutes to get to Drury from the city. The southwestern is not a great alternative. Crawling south from Nielsen Street there, 40 minutes out to the airport. The northern slow to Esmond.
1: Get trackside at Alexandra Park this Friday night. Book at alexandrapark.co.nz.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: Moisture और ventilation का problem लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
6: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
7: Popeyes is turning two, but you get the presents. Their limited time birthday box is packed with 2 drumsticks, 6 nuggets, and regular Cajun fries for just $11.90. Celebrate 2 years of world famous Louisiana fried chicken at Popeyes.
8: Love that chicken from Popeyes.
9: Get it sorted with Cheap As Deals. Save 40% on a 12-centimetre living foliage Monstera Deliciosa, now $9. And get over 50% off a Gutter Boss Spouting Protector, now $7. Limited stock, Cheap As Deals. In Sunday at Mitre 10.
10: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू. विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी. टीज एंड सीज अप्लाई.
11: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
12: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 4. The Tasman District is watching and waiting for the impacts of severe weather rolling through. Like many other parts of the South Island, it is also under a heavy rain warning, with large gusts also expected. It could bring 1 in 5 year flooding to certain parts. Mayor Tim King says Civil Defence is ready to act.
13: It hasn't reached where it's triggered like a pre-deployment or anything like that, but they are acutely aware that that can change very rapidly.
12: The PSA believes cuts to Maritime New Zealand will put lives at risk. The regulator has confirmed it needs to cut expenditure, and the union estimates more than 30 roles will go. National Secretary Dwayne Leo says New Zealand already has a bad record on water safety.
14: We've had last year 19 people die in recreational boating accidents. These cuts will have impacts on those teams that prevent and investigate these kinds of deaths.
12: Maritime New Zealand says it will prioritise harm prevention. Two of the country's fuel companies are being allowed to merge. The Commerce Commission is clearing the way for Astra Energy Group to acquire all the shares in the parent companies of Gull and NPD. Data from Westpac shows the average age of first home buyers nudged down last year. The figure now sits at 35. To rugby with shift 4, the Chiefs feel primed to make a playoff push in Super Rugby Pacific. They face the Reds in Brisbane from 9:35. Chiefs second Quinn Tupaia says points tonight are vital ahead of 3 consecutive New Zealand derbies.
15: Had a good week off last week, so boys are feeling refreshed, and yeah, we've got a big 4 weeks ahead of us.
12: The Crusaders and Blues get round 13 underway at 7:05 in Christchurch. And the Carolina Panthers remain unbeaten in ice hockey's NHL playoffs after a 4-1 win over Philadelphia.
11: Sports News, brought to you by Sona Sensar, Papatoy and Mount Roskill.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
11: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
16: Cloudy day hai aaj ka, lekin thand nahi hai. It's quite warm actually. Feels like 19 degrees. Overnight temperature 15 degrees tak ka rahega. 5:30 baje hoga aaj sunset. Thodi bahut barish hone ki sambhavna, and winds gusting 100 kilometers per hour in some places.
11: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
17: Hamesha saath dene wale dost.
18: Brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
11: Super Se Ooper. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
19: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
16: 4:03 हुए हैं. टुडे इज द 8th ऑफ मे. गुड आफ्टरनून ड्राइव शो में आपका स्वागत है. हाय सैंडी.
0: हाय रुजबे. गुड आफ्टरनून. हाउ आर यू?
16: आई एम डूइंग गुड.
0: एक बार फिर से पूछना चाहूंगी क्योंकि मैंने ऑफ ईयर पूछा. ऑफ ईयर तुमने बताया मुझे आंसर.
16: ऑफ ईयर तो मैंने बताया आपको आंसर.
0: सो अभी सबको बताओ.
16: अभी तो मैं ग्रेट हूँ.
0: अभी ग्रेट हो.
16: अरे यार मेरा आज मतलब ऐसा होता है आपके साथ कभी कि जब आपकी छुट्टी हो तब आपको और सुस्ती फील होती हो.
0: या
16: वही हो रहा है.
0: ओके. लेकिन तुमने काफी काम भी किया है ना.
16: हाँ मतलब थोड़े बहुत काम निपटा है लेकिन फिर भी मतलब
0: तो मैं भी उसके कारण. क्योंकि जब हम काम पे जाते हैं तो हम एक ही जगह बैठे होते हैं.
16: राइट.
0: एक जगह काम कर रहे होते हैं. तो हमारे यहाँ छुट्टी थी तो हमारे 2-3 ट्रिप कहीं पे लगे हैं. तो इसके कारण टायरिंग हो जाता है. ट्रैवल इज टायरिंग.
16: यस यस. आई एक्चुअली वो
0: अनलेस यू हैव अ प्लेलिस्ट जैसे हमारे पास हम जो आपको सुनाने वाले हैं.
16: दैट्स राइट एक्चुअली. सो आज ट्रेंड मेकर्स में हम आपके लिए रोड ट्रिप स्पेशल लेकर आने वाले हैं.
0: अगर अपनी ट्रैवलिंग को बोरिंग नहीं बहुत ही अच्छी करना चाहते हो ना तो आज 6 से 7 के बीच में सुनना. ये प्लेलिस्ट आपको सेव करनी चाहिए अपने रोड ट्रिप्स के लिए.
16: राइट. एंड कोशिश करेंगे कि हम ये प्लेलिस्ट को पब्लिश भी करें.
0: यस.
16: हमारे ग्रुप पे तो डाल ही देंगे हम.
0: अनफिल्टर्ड
16: क्रू जो हमारा फेसबुक पे ग्रुप है.
0: अगर आपको भी बाद में वो लिस्ट चाहिए होगी तो अनफिल्टर्ड क्रू हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा. ग्रुप्स में जाके सर्च यू हैव टू डू अनफिल्टर्ड क्रू.
16: आज फ्राइडे है. ढेर सारी मस्ती करेंगे आपके साथ. एंड आज वैसे मदर्स डे कॉम्पिटिशन के विनर्स बोलने अनाउंस करने का टाइम हो गया.
0: Yes, हो चुका है. तो हमें वाउचर किसने जीता है ये एक्चुअली में आज अनाउंस करना है.
16: चलो ठीक है. तो आप तैयार रहिए क्योंकि थोड़ी देर में विनर्स के नाम भी अनाउंस होंगे इस शो में. और कौन सा कंपटीशन है? और राहत
0: फ्लाईवे फ्रेंजी का कंपटीशन है. राहत फतेह अली खान का कंपटीशन है. सो स्टे ट्यून्ड.
16: जी. एंड काफी लोग गियर अप हो रहे हैं आज शाम को शो के लिए. जावेद अली इज गोइंग टू बी परफॉर्मिंग टुनाइट एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर.

0: May month is NZ Music Month. ये सिर्फ music नहीं, ये है emotion, passion और थोड़ा सा desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, जहाँ हर गली, हर corner से निकलता है एक नया superstar. आज का local artist, कल का global sensation. तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे? Tune in करो और अपने Backyard Beats को दो full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today and Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love.
1: Beautiful house plant से लेकर हर वो चीज जो माँ को घर और garden के लिए पसंद है, सब मिलेगा Mytotin Mega Westgate और Henderson में. Everything to make mom smile except the homemade card. But you could let mom decide with a Mytotin gift card at Mytotin Mega Westgate and Henderson.
2: Right now at Woolworths, collect double bonus points on every $50 shop. Plus, boost your budget and collect 10 times points on some of your favourite brands. Boost in the app, shop in store or online, and scan your everyday rewards card at checkout before Sunday 10th of May.
3: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
4: Whiteware Super Sale is on now at Noleeming. Get up to 25% off whiteware and cookware. Plus, check out our finance options available. Conditions and exclusions apply. Whiteware Super Sale ends Tuesday 12th May. Only at Noleeming.
5: Big Boss, देखा है ना? अब घर से बाहर निकलो और विनर को लाइव देखो. मुन्नावर फारूकी आ रहे हैं ऑकलैंड विद हिज स्टैंड अप कॉमेडी शो धंधो.
6: छोटा तो मेरे को नहीं समझ में आता, तो मैंने अपने चाचा से पूछा, कुबुले कुबुले कुबुले क्यों होता है ऐसा तीन बार? तो मेरा चाचा बोलता है औरतों को एक बार में समझ में कहा आता है.
5: सैटरडे 23rd में ब्रूस मेसन सेंटर ताकापुना 7 PM onwards. बुक योर टिकट्स नाउ ऑन ticketmaster.co.nz.
7: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
9: And award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
11: Hamesha saath dene wale dost.
12: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
0: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
13: 4:16 हुए हैं और आज 8 मई एक्चुअली सैंडी अभी हमें पता चला, हमारे एक बहुत ही आर्डेंट लिसनर है, उन्होंने कॉल करके हमें बताया अबाउट टुडे इज इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे. ये बेसिकली एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज्ड बाय फॉल्टी जीन म्यूटेशंस जो कॉज करते बॉडी में इनसफिशेंट हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है एंड रिजल्टिंग इन क्रॉनिक एनीमिया, फटीग एंड पेल स्किन.
14: बस साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी में ये बहुत ही कॉमन है, ये जो है ना, ये साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी में, रुजबे अफ्रीकन, मिडल ईस्टर्न, इन सब में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये.
13: तो इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स शेयर करने के लिए हमारे साथ थोड़ी देर में यहाँ पे कोई जुड़ने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे एंड थोड़ी हमें भी जानकारी पता चलेगी इसके बारे में एंड
14: समवन हु इज एक्चुअली ऑफिशियली वर्किंग विद दिस.
13: Yeah, and they also providing support to people who are dealing with thalassemia. So, pata chalega aaj hume aur bhi zyada information. Let's see if we can get them right now. Hi. Arey, ye to chalega abhi. But koi nahi. Yaar, miss call khel rahi hai hamare saath yahan pe abhi. But anyway, ek kaam karte hain, ek Bollywood's Most Wanted sunte hain and then we'll arrange for a call jahan pe we'll get to know more about thalassemia today on World Thalassemia Day.
0: Most wanted.
15: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
16: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: थ्रोबैक में आपके लिए गाना लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले अभी टाइम आ गया है फॉर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। टिंसल टाउन में बॉलीवुड के दुनिया में क्या हो रहा है इसकी खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। अब एक न्यूज बहुत एक्साइटिंग वाली न्यूज, अभी पता नहीं है सच है कि नहीं, अफवाह है अभी भी, लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि धुरंधर का थर्ड पार्ट बन सकता है।
1: ये तुम्हें किसने बोला?
0: ये मुझे इंडिया टीवी ने बताया।
1: ओके, सो मैं ये पढ़ रही हूँ,
0: नॉट दैट आई ट्रस्ट एनी न्यूज चैनल्स, बट या
1: सो रिसेंटली जियो स्टूडियो की जो ज्योति देशपांडे है,
0: हाँ, वही
1: उसी का पढ़ रहे हो तो?
0: नहीं, ज्योति देशपांडे ने कुछ तो भी ऐसा बोला ना, सरप्राइज आएगा,
1: वही उसने बोला कि वी आर नॉट डन विद धुरंधर येट। उसने ये बोला है कि उसने बोला कि अगर आपको लगता है कि आपने धुरंधर के दोनों पार्ट देख लिए, इट्स ओवर एंड आउट, बट अभी कुछ बाकी है,
0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त,
1: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और मुझे क्या लगता है ना, वो जो र्यूमर आई थी पहले, तुमने सुनी है कि बिहाइंड द सीन 7 आवर्स का है, ऐसा कुछ पहली बार सिनेमाज में रिलीज होने वाला है
0: क्या
1: बिहाइंड द सीन धुरंधर के? या र्यूमर है, सो हो सकता है कि अबाउट इट्स अबाउट दैट
0: बिहाइंड द सीन्स वो लोग रिलीज करेंगे थिएटर में।
1: यार
0: लोगों की
1: मुझे लगता है वो भी हिट जाएगा।
0: मतलब लेकिन यार ये शर्मनाक बात होगी दूसरों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों की मूवीज नहीं जा रही है थिएटर में, चल रही है
1: बीटीएस चल गया तो
0: अरे बाप रे, दिस इज गोइंग टू बी तमाचा ऑन मूव फॉर अ लॉट ऑफ देम,
1: बट लेट्स सी। सो पार्ट 3 है, सॉरी
0: क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है पार्ट 3 इज गोइंग टू बी एन ओवरकिल।
1: पार्ट 3 मैं नहीं देखना चाहती।
0: हाँ वही, पार्ट 3 कुछ ज्यादा ही हो जाएगा।
1: पार्ट 3 में ना, एक तो 2 में भी चलो एक्सपेक्टेशंस मीट हो गई, अच्छा हो गया वो सब, लेकिन पार्ट 3 विल बी लाइक टू मच ऑफ रनिंग, एंड देन क्योंकि वो वापस आ गया ना, इसका मतलब वो नए मिशन में जाएगा।
0: आपने देखा है ये स्पेशल ऑप्स? देखा है आपने स्पेशल ऑप्स?
1: नहीं, मैंने सुना है बट देखा नहीं है मैंने।
0: तो केके मेनन की ये सीरीज है स्पेशल ऑप्स, स्पेशल ऑप्स 1.5 और 2 रिलीज हुआ है।
1: 1.5
0: इज लाइक अ बैक स्टोरी ऑफ केके मेनन, उसमें मतलब बहुत कूल सीरीज है ये।
1: अरे तो वो 0.5 होना चाहिए था ना,
0: वो अभी उनको okay. जाके बात करो अभी। बट बेसिकली देयर 3 सीजंस एंड इट्स एन अमेजिंग शो। उसमें दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट दीज डिफरेंट स्पाइज। तो जो यहाँ पे मूवी में कंसाइज वर्जन में रणवीर सिंह वॉज प्लेइंग मल्टीपल स्पाइज, उस स्पेशल ऑप्स में यू विल सी डिफरेंट स्पाइज लोकेटेड इन डिफरेंट एरियाज जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। हाँ, बहुत सिमिलर है वो धुरंधर को लेकर, मतलब काफी सारी चीजें बहुत सिमिलर है।
1: और 3 में अभी हम ये भी नहीं देख सकते कि करेक्टर की बैक स्टोरी क्या है, क्योंकि वो हमने देख चुके हैं 2 में। लेकिन अगर 3 में बैक स्टोरी हम बाकी करेक्टर्स की देख सकते हैं,
0: राकेश बेदी की बैक स्टोरी,
1: माधवन की बैक स्टोरी,
0: आलम ने माधवन की बैक स्टोरी क्या
1: हो सकता है, उसकी भी एक कहानी हो सकती है,
0: उसकी भी कहानी है ही ना, वो भी वहाँ पे रहा है,
1: या तो उसकी कहानी हो सकती है। राकेश बेदी की बैक स्टोरी विल बी टू गुड,
0: राकेश बेदी
1: से हाँ ज्यादा नहीं बोल
0: कनेक्ट कर सकते ना, राकेश बेदी, माधवन और आलम, ये तीनों की बैक स्टोरी कनेक्टेड हो सकती है ना।
1: और आलम जो गौरव गैरा ने रोल किया है,
0: वही आलम,
1: वही मैं कहा आलम, वो एक्चुअली में सबसे इंटरेस्टिंग उसकी रहेगी, बिकॉज वो बोलता है कि वो कहानी सुनाने लगता है लेकिन कहानी सुनाता नहीं है, फिर कभी पे छोड़ देता है, तो वो फिर कभी हो सकता है कि वही हो।
0: नहीं, वो कहानी सुनाता है, म्यूट पे चलाते वो लोग, वो अगर आप मूवी में देखोगे तो
1: म्यूट था
0: वो म्यूट हो जाता है वो, दे डोंट वो ऑडियो नहीं उसका ऑन किया, मतलब रखा है वो लोग ने, तो मे बी पार्ट 3 होगा। Well anyway, what would you be interested in? Part 3 or BTS? आप यहाँ पे 5599 पर लिखकर हमें बता सकते हैं। और अभी के लिए जो गाना है थ्रोबैक में, दिस इज सोनू निगम अलका याग्निक फ्रॉम द मूवी हर दिल जो प्यार करेगा।
1: अरे इसमें प्रीति जिंटा बहुत क्यूट लगती है ना, सलमान तो है
0: हमेशा ही क्यूट लगती है,
1: लेकिन इसमें लाइक सुपर क्यूट मेरे को लगी थी इस मूवी में।
0: इसमें प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी बहनों का रोल प्ले कर रही है ना, और दोनों सेम टी-शर्ट ऐसे सब पहनते हैं ना,
1: वही गाने में।
0: But it's actually quite a beautiful movie, हर दिल जो प्यार करेगा।

0: मैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: स्टार्ट ऑफ द वीक जब मैं पढ़ रहा था, वेदर अपडेट देख रहा था, तो वीकेंड के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर था, बट टिपिकल ऑकलैंड बिहेवियर. यहाँ पे वीकेंड आया है और अभी विंड्स वार्निंग आ गई है, गस्टिंग 100 किलोमीटर पर आर, एंड क्लाउडी वीकेंड भी रहने वाला है अपेरेंटली.
0: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्पे,
2: हमेशा साथ देने वाले दोस्त,
3: ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस मोनाको एंड पुकेकोई विद स्लीपी हेड क्वीन मैट्रेस फ्रेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 449 एंड जिमी टेलर एंड टीम फ्रॉम वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप, द होम ऑफ GWM हैवल एंड ओमुडा जेकू.
4: पावर ड्राइव एट 5,
0: ब्रॉट टू यू बाय फोकस किचन्स, क्वालिटी किचन्स विद मॉडर्नाइज्ड कस्टमाइज्ड डिजाइंस फॉर योर ड्रीम किचन.
5: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: 5:03, यू आर लिस्निंग टू द ड्राइव शो. 5+3 कितना होता है?
6: 8.
1: आज तारीख भी 8 ही है सैंडी.
6: अरे वाह, क्या कनेक्शन निकाला तुमने.
1: तो वैसे गुड इवनिंग, वेलकम टू द ड्राइव शो. अगर अभी भी आपने ज्वाइन इन किया है, आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है रास्ते पे.
6: Yeah.
1: अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं और अभी ट्रैफिक से हमें सुन रहे हैं, गिव अस अ कॉल 0800-004-866.
6: आज वहीं से ट्रैफिक की रिपोर्ट दीजिए.
1: हाँ, गिव अस अ कॉल. आप जहाँ पे भी ट्रैफिक में फंसे, वी नीड टू हियर वेर यू आर स्टक राइट नाउ इन ट्रैफिक, वेर यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. और आपकी कोई भड़ास अगर आपको निकालनी है तो आज दिल खोल के बोलिए
6: 0800-004-866 पे आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं. यू नो, वेदर थोड़ा ट्रिकी हो रहा है ओवर द वीकेंड. साउथ आइलैंड में तो इतनी हैवी रेन है कि वहाँ पे ऑलरेडी काफी जगह पे पावर भी जा चुकी है.
1: पावर भी गई है ऑलरेडी.
6: या हैवी विंड एंड रेन एंड पावर आउटेजेस, ये साउथ आइलैंड में हो रहा है.
1: ये सारे ना वीकडेज पे होना चाहिए यार, वीकेंड पे ये सारी चीजें
6: कौन करता है? या
1: हाँ ना, कौन करता है बताओ, कौन करता है?
6: तो फोन किसका है?
7: हेलो.
1: यस, बोलिए भाई, किधर अटके हो?
7: हाय रुद्र संडी.
6: हाय शिवराज.
7: हाय, मैं इधर अटका हूँ, ये जो पाकुरंगा वाला जो नया ब्रिज बनाया ना.
1: हाँ, वो पॉइंटलेस ब्रिज, आई मीन
7: भाई यार, वो मुझे समझ में नहीं आया ये ब्रिज कैसे बनाया इन्होंने. जो जहाँ पहले उधर लगता था वो उधर लगने लग गया.
1: हाँ,
7: जो पाकुरंगा रोड पे जो सीधा ट्रैफिक है उसको इन्होंने फ्री नहीं करा.
1: बट आपको पता है ना उस ब्रिज का नाम क्या है?
7: कर रहे हैं दोनों से काम चल रहा है.
1: वो उस ब्रिज का नाम क्या पता है? नहीं आपको?
7: नहीं पता भाई मुझे.
1: पॉइंटलेस ब्रिज.
6: ये तो तुमने अभी नाम दिया है.
1: पॉइंटलेस ब्रिज है वो.
6: या
1: उसका पॉइंट नहीं है वो ब्रिज का.
7: इसका नामकरण हो गया आज.
1: हाँ, अगले बार अभी बस वही उसको वहाँ पे आप जब भी जिक्र करो, पॉइंटलेस ब्रिज जो पाकुरंगा में.
7: पी फॉर पाकुरंगा. बोलो
1: अभी मैं
6: गाली खाऊंगा. आप बताइए,
1: ज्यादा बोलूंगा तो.
7: थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं, आप बताओ.
1: नहीं नहीं नहीं ठीक है यार.
6: अच्छा, आपको पहुंचना कहाँ पे है?
7: मैं तो बॉटनी रहता हूँ.
1: बहुत ही इंसिडेंट हुआ है हिल रोड पे पापाकुरा के पास. एलएसली में भी काफी लोग फंसे हैं और
6: एलएसली में बहुत ट्रैफिक रहता है वैसे इस समय पर.
1: काफी जगह
7: भरा होता है. सुबह जब मैं जॉब पे जा रहा था ना, कुछ लोग इतने इरिटेटिंग होते हैं, इतनी जल्दी जल्दी लाइन चेंज करते हैं ना. बहुत गुस्सा आता मुझे ऐसे लोगों को देख के ना. खुद तो टाइम से निकलते नहीं है घर से और फिर रोड पे इतनी जल्दी मचाएंगे जैसे जहाज बना देंगे इसका.
6: जरूरी नहीं कि सब लेट ही हो रहे होते, कईयों को शौक भी होते ना ऐसा कट मारने का.
7: नहीं यार, बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं बहुत लोग यहाँ पर. तो इतना अच्छा लाइन सिस्टम है इंडिया में, तो बस क्या बताऊं, ऐसे लोग पागल हो जाएंगे सही में चलाएंगे गाड़ी तो. वहाँ तो कोई लाइन सिस्टम है ही नहीं.
1: या नहीं ठीक है यार.
7: इतने गंदे गंदे कट मार रहा था वो सवेरे, बस क्या बताऊं मैं. मतलब
1: और मेरे को सबसे ज्यादा उनके ऊपर उनका बुरा ये लगता है कि ये सब करने के बाद भी वो हमारे पीछे हो जाते कितनी बार.
7: देखो ऐसा भी नहीं है कि भाई तुमने जैसे लाइट जंप कर गई तुम जल्दी पहुंच गए, आगे सिग्नल आ जाएगा तो आपको रुकना ही पड़ेगा. मैंने कई बार देखा ऐसे बंदों को, वो आगे ही मिल जाते हैं फिर.
1: हाँ वही तो, फिर बाद में ऐसा देख के उनको लगता है कि भाई इतनी मेहनत करके क्या फायदा हुआ, इधर की इधर ही है.
7: ड्राइविंग करते हैं,
1: नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और एक और चीज नहीं करनी चाहिए जो काफी बार मैं नोटिस करता हूँ, लोग ना ब्लूटूथ कनेक्ट करके फोन पे बात करते रहते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेकिन यूजुअली काफी बार क्या होता है, आप फोन पे अगर बात कर रहे हो ना तो सामने फिर आपको रियलाइज नहीं होता कि गाड़ी कितनी दूर चली गई है, आप लोग फिर एकदम ऐसे फुर्सती हो जाते हो।
7: अरे आज आज ही मेरे बॉस ने बोला मेरी गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है,
6: ओके,
7: तो उसने देखा कि मैं फोन यूज कर रहा था, तो मेरे बॉस ने बोला ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यूज करो, वैसे हाथ में पकड़ के यूज मत करो फोन को।
6: वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो बहुत डेंजरस है।
1: जी जी, बट थैंक यू शिवराज।
7: मैंने कहा यार मैंने कोशिश करी थी, मेरे से ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैं मंडे को कोशिश करूंगा।
1: हाँ, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप फोन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे
7: रहे। देखो डाइवर्ट होता है, अगर आप बात कर रहे हो चाहे ब्लूटूथ से ही कर रहे हो, माइंड तो आपका डाइवर्ट हो रहा है ना।
1: दैट्स राइट, दैट्स राइट।
6: तो सिर्फ रेडियो सुनो,
7: नहीं करनी चाहिए बात, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
1: ठीक है, थैंक यू शिवराज। लेकिन खुद के पाव पे कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं ये अभी हमने आपको डेमो दिया इस चीज का।
6: एनीवे, आप कहाँ पे स्टक है, आप भी यहाँ पे कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं। आपके साथ कोई पैसेंजर है तो उसको भी बोलिए मैसेज करने के लिए,
1: या फिर वो आपके सीरी वीरी को बोल सकते हो ना आप।
6: हाँ।

0: celebrating local artists.
1: Back your backyard beats.
2: Back your backyard beats. New Zealand Music Month में हम shout out दे रहे हमारे local artists को and आपको मौका दे रहे हैं to support them as well by messaging over here.
3: Yeah, so local artists की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे DJs भी हैं यहाँ पे जो कि full on आपके लिए entertainment different events में भी लेके आते हैं. उसी में से है DJ Chilli. तो DJ Chilli का ये एक chilled सा remix आप यहाँ पे सुनने वाले हैं. ये सुनेगा, enjoy कीजिएगा. And if you are a local artist and आप अपनी आवाज़ यहाँ पे चाहते हैं कि बुलंद हो तो आप हमें ईमेल कीजिए buzz@humfm.com पर. अगर आपकी एंट्री शॉर्ट लिस्ट होती है तो आपका गाना यहाँ पे डेफिनेटली प्ले होगा. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसकी. फॉर एग्जांपल, वी हैव टू गो थ्रू अ साउंड चेक की मतलब द जो एंट्री है वो प्ले हो सकती है रेडियो पे या फिर नहीं हो सकती है.
2: दैट्स राइट. सो या आज के हमारे जो लोकल आर्टिस्ट DJ Chilli,
3: या
2: इनका एक मिक्स आपको हम सुनाने वाले हैं एंड देन इन द इवनिंग और भी इनके मिक्सेस रहेंगे.
3: एंड फ्लाई वे फ्रेंजी का कोड भी आपके लिए इसी आवर में रहेगा. मदर्स डे का अल्टीमेट वाउचर कौन जीता है ये भी आपको बताने वाले हैं. राहत फतेह अली खान का कॉम्पिटिशन भी है अभी आपके लिए.
2: बाप रे, कितना कुछ करेंगे सर.
3: सो मेनी थिंग्स. सो ये सब कुछ है आपके लिए तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड.
2: जी
3: ऑल्सो आज 6 बजे के बाद हम क्या करने वाले हैं रुजबे?
2: आज 6 बजे के बाद हम रोड ट्रिप सॉन्ग्स आपको सुनाने वाले हैं.
3: सो यू नो, जब आप ऐसे कहीं पे स्टक होते हो, अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, आपको एक मस्त सी प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए कि भाई जब ट्रैवल कर रहे हो ना तो ये गाने बजने चाहिए रोड ट्रिप के लिए, वो गाने आज आपके लिए हम लेके आ रहे हैं 6 से 7 के बीच में.
2: राइट. सो 6 से 7 ट्रैवल सॉन्ग्स 6 से 7 के बीच आपको सुनाएंगे. अभी हम हमारे जो लोकल आर्टिस्ट है DJ Chilli उनका भी गाना सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आया मेरे लिए यहाँ पे सैंडी. व्हाई वुड यू से इट्स अ पॉइंटलेस ब्रिज? ये वो पाकुरंगा वाला जो ब्रिज बना है ना, उसके लिए मैंने जो कमेंट मारा था. श्योरली सर्व्स अ पर्पस एंड देयर इज मोर रोडिंग वर्क्स गोइंग दैट एरिया व्हिच स्लोज द ट्रैफिक. जस्ट बिकॉज यू ऑन रेडियो डजंट मीन यू टॉक विदाउट थिंकिंग. आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने टॉक किया विदाउट थिंकिंग? मैं तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ.
3: हम अगर आपको वेंट आउट करने के लिए बोल रहे हैं कि आप वेंट आउट कर सकते हो अगर आप ट्रैफिक पे स्टक है, तो वो बस साथ दे रहे हैं भाई कि यार वहाँ पे ऐसा होता है.
2: और मुझे लगता है वो पॉइंटलेस ब्रिज है अभी भी, क्योंकि मेरा रैशनल है इसके ऊपर, क्योंकि इसके पहले जो वहाँ पे जो रास्ता था, आई डोंट थिंक दैट ब्रिज इज सर्विंग अ लॉट ऑफ पर्पस. वो भी 50 का जोन वाला ब्रिज बना है, मुझे तो पॉइंटलेस ब्रिज लगता है. मेरा ओपिनियन, अगर आपका कोई ओपिनियन आप शेयर करो ना यहाँ पे कॉल करके.
3: Actually, मैं rather than saying this, you share positive about it. उसका क्या फायदा क्या है उसका?
2: And I'm happy to take that on board as well.
3: वो बताओ ना.
2: ये मतलब ये emotional blackmail कर रहे कि तू रेडियो पे है तो तू ये बढ़ा रहे. भाई मैं तुमको भी मौका दे रहा हूँ यहाँ पे बोलने का, तुम्हारी बात बस एफर्ट लो ना
3: करने के लिए. बोला था
2: क्रिटिसाइज करने से बेटर आप बोलो क्यों अच्छा है वो ब्रिज, उसके लिए एफर्ट लो.

0: This was DJ Chilli, जिसके गाने आप यहाँ पे सुनते हैं, हमारे लोकल आर्टिस्ट है, ये डीजे है और काफी कमाल मिक्सेस भी आपके लिए लेकर आते हैं.
1: बहुत अच्छा मिक्स है यार इनका, वेरी नाइस मिक्स.
0: Well, we have the real message now.
1: जिन्होंने ऐसा बोला था कि आपने क्यों ऐसा बोला pointless bridge.
0: तो उन्होंने explain किया कि क्यों ये pointless bridge नहीं है, ठीक है? तो इनका argument ये है, you don't have to go through the traffic lights like previously you used to. Was jam packed before. I also used that road and found to be much better.
1: You know what? ये message ही आपको पहले करना था.
0: ये अच्छा.
1: आपने ये जो message किया है ना, आपको अपना point आगे रखना था. तो यही करना था.
0: उनको ऐसा लगा था शायद कि हम उनके point नहीं यहाँ पे रखते, हम सिर्फ हमारे point रखते. But यही तो आपका misconception है जिसको हम दूर कर रहे हैं ना. हम आपका भी point सामने रखते.
1: Exactly.
0: And we give everyone a right to put their point forward. It doesn't have to be right or wrong.
1: Feeling share करना आपका भी बनता है, हमारा भी बनता है.
0: So
1: rather than, I will just say one thing, rather than saying कि ये तुमने कैसे बोल दिया, उसकी जगह जो आप सोचते हो आप वो लिख के भेजेंगे और अगर आप कॉल करके बोलेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक बेटर कम्युनिकेशन होती है, एक बेटर डिस्कशन होती है चीजों के बारे में.
0: इन जनरल ना,
1: इन जनरल
0: ये चीज करना कि ये इसने ऐसा कैसे बोल दिया, वो तो मुंह से ही बोला उसने.
1: हाँ, लेकिन आप अपना पॉइंट रखिए.
0: जी, अभी एक और पॉइंट यहाँ पे आने वाला है. हाय
2: हाय उसबे.
0: हाय जी, बोलिए, क्या नाम है आपका?
2: हाय सैंडी.
1: हाय
2: क्षितिज, कैसे हो?
1: क्षितिज,
0: क्षितिज बोलो. क्षितिज
2: भाई, I completely agree with you.
0: अच्छा अच्छा.
2: I support you.
0: अच्छा ओके.
2: हाँ 100%.
1: अच्छा, आपको भी pointers लगता है वो?
2: कोई मतलब जरूरत ही नहीं है वहाँ पे.
0: नहीं ठीक है, अभी ट्रैफिक लाइट्स नहीं जाने पड़ रहे तो मतलब वो कुछ लोगों को फायदा भी हो रहा है उससे. मतलब चलो ठीक है यार, मतलब बना है, मतलब मैं नहीं बोलता, मतलब देखो मेरा पॉइंटलेस कहने का मतलब ये था कि जितना उसमें कंस्ट्रक्शन का जो टाइम यूज हुआ है और जो रिसोर्सेज, जो पैसे, सब कुछ जो यूज हुआ है, उसके कंपैरिजन में जो रिटर्न इसने दिया है वो मुझे नहीं लगता वो वर्थ इट है. ऐसा मेरा ये एमेच्योर टेक है ऑन दिस.
2: Obviously, I mean, we don't know what has gone in, but कितने लोगों को फायदा हुआ है, like inconvenience भी कितना हुआ है, we have to check that also.
1: Yeah, exactly. Because कितनी देर तक तो कौनसी ही होती है वहाँ पे ना.
0: और देखो ना क्षितिज, देखो it is fair ना, अभी कोई मेहनत से मूवी बना रहा है, ठीक है, हम जाके देखते और बोलते फालतू लगी, हम बोल देते ना सीधा फालतू लगी, नहीं मजा आया. तो उसमें तो सामने वाले ने तो मेहनत की है ना उस चीज में भी. बट जनता का वही काम है ना, जनता वो अपना देखेगा कि नहीं अपने को मजा आया तो नहीं मजा आया ना.
1: और किसी को वो मूवी अच्छी भी लगेगी रुस्वे, ऐसा नहीं है.
0: कितने लोग हमारा शो सुनकर ऐसा बोलते हैं कि क्या फालतू है पकाया.
1: Exactly.
0: बट अभी उसमें हम थोड़ी काम करना बंद कर देंगे ना.
2: चलो ठीक है, कोई नहीं.
0: और भी आइटम लेकर आते हैं आपके लिए, मतलब न्यूज आइटम्स लेकर आते हैं आपके लिए, सुनते रहिए. हम
3: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी.
4: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्बे.
5: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी
3: हैं. New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi.

0: Massey. The Southwestern is slow south from Queenstown Road, about 40 to get out to the airport.
1: Big hits, fast plays, edge of your seat, family-friendly fun. Search ice hockey tickets.
2: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
3: Kyun? Kya hua?
2: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya, no response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
4: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
5: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
6: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर. फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर. सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसाज हर बार. क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा. और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री. लिमिटेड टाइम ऑफर 31st मई तक. कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर.
7: Danny didn't think he needed a DVS system.
8: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
7: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
8: Nah, only one room. It was just too noisy.
7: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.

0: 10th मई को मदर्स डे सेलिब्रेट होता है और मदर्स डे के इस मौके पे आपके साथ हमने यहाँ पे ढेर सारे कॉम्पिटिशन रन किए. आज 3 लोगों ने ऑलरेडी जीता है हमारे ऑन एयर प्रमोशन में, $300, $200 एंड $100.
1: फिलहाल वैसे आज अभी आप विजय वर्मा का लिखा हुआ गाना सुन रहे थे.
0: अरे so, क्या बात
1: yeah,
0: है?
1: Yeah, so, आसमां से आंचल जो उन्होंने आज ही रिलीज किया बाय द वे. सो यस, मदर्स डे का सुबह जो कंपटीशन हुआ ना, जो इतना हमारे देर से कंपटीशन हुआ था रुजबे, उसमें सुबह के जो 3 विनर्स हैं, अगर आपने मिस आउट किए हैं नाम तो वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ. सो $300 के जो विनर हैं, ये जीत इसके विनर ओमकार हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस. $200 सनब ने जीते थे एंड $100 अंजू ने.
0: Congratulations to all the winners. अभी हम आपको बताने वाले, सोशल मीडिया पे हमने कॉम्पिटिशन किया था जहाँ पे आपको एक वाउचर बनाना था आपकी मॉम के लिए.
1: Yeah.
0: And we got great entries over there and I think it's been a really tough job to find out कौन है आज के इस वाउचर के विनर. $200 का वाउचर आपको जीतने का मौका मिल रहा है यहाँ पे.
1: Yeah, तो $200 का वाउचर जिसने जीता है, ये एक बच्ची है जिसने वाउचर अपने हाथों से बनाया और उसकी फ़ोटो खींच के, उसके फादर ने एक्चुअली में फ़ोटो खींच के पोस्ट किए वहाँ पे. तो हमें सुल्ताना जो है इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं. तो थैंक यू सो मच यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए. अगर तुम देखो ना वाउचर्स, काफ़ी लोगों ने AI से खुद जनरेट किए. Actually, they got like really creative in making the vouchers.
0: Yeah, I read something. Yeah, जो एक एक मतलब कुछ wishes, mom की wishes जो लोगों ने लिखी है वहाँ पे. Beautiful.
1: Very beautiful.
0: Really lovely. So thank you so much for participating. अगर आप नहीं जीते, please अपना दिल छोटा मत कीजिए. Your mother's going to be very proud. आपने इतना बढ़िया voucher बनाया उनके लिए. But yeah, we have one winner.
1: Yeah.
0: और इस बार it is
1: सुल्ताना. तो नाम वो है, मुझे नहीं पता है कि रियल नेम क्या है वहाँ पे, बिकॉज फेसबुक पे ऐसे नाम आते हैं ना, मतलब फेसबुक पे व्हेन इट कम्स.
0: नाम भी हो सकता है वो सैंडी.
1: नहीं, आई मीन आईडी पे कई बार वैसा लिखा होता है, पर ये नहीं पता कि घर पे फैमिली में किसी का नाम है या क्या है, वो हमें नहीं पता है.
0: सो या कांग्रेचुलेशंस टू द विनर्स. आप तक हम डिटेल्स पहुंचा देंगे कि आप कैसे आपका विनिंग प्राइस जो है वो कैसे क्लेम कर सकते हैं बाय नेक्स्ट वीक.
1: थोड़ी देर में अभी कॉम्पिटिशन एक और होने वाला है एक्चुअली में, राहत फतेह अली खान का.
0: श्योर. एंड अंटिल देन एंजॉय द मदर्स डे एज वेल. आज इस वीकेंड पे मदर्स डे, मेक श्योर यू पैम्पर योर मॉम. Don't forget that. Bollywood's most wanted. Gundi ghad dao ya seedha andar aao. Main laun apna A game. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: बंगला का गाना अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। अभी आपको हम मौका देने वाले हैं टू पार्टिसिपेट इन राहत फतेह अली खान कॉम्पिटिशन, बट उससे पहले जो सैंडी को डाउट था वो क्लियर हो गया है। शोएब का यहाँ पे मैसेज आ गया है कि जिसने आज मदर्स डे का वाउचर जीता है सोशल मीडिया का, उनका नाम है आसमा सुल्ताना।
1: आसमा सुल्ताना या
0: लवली वाइफ ऑफ शोएब,
1: और उनकी डॉटर ने वो एक्चुअल में वाउचर बनाया है जो वहाँ पे पोस्टेड है। सो डॉटर का नाम नहीं है वो, उनकी वाइफ का नाम मतलब मदर का नाम है।
0: मदर का नाम मतलब द मदर दैट्स वन इज आसमा सुल्ताना। कांग्रेचुलेशंस आसमा एंड विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। अभी राहत फतेह अली खान का कॉम्पिटिशन और आज
1: आपको करना क्या है, आप सुनिए गाना जहाँ पे खत्म होता है उसकी नेक्स्ट लाइन क्या है ये आपको लिख के भेजनी है RFK कीवर्ड के साथ और 5599।
0: तो सुनिए ये गाना।

0: इसके आगे का आपको बताना है।
1: इसके आगे क्या लाइन है? 5599 पर लिख के भेज डालिए। योर नेम विल बी इन द ड्रॉ टू विन अ डबल पास फॉर दिस शो जो कि 25th जुलाई को होने वाला है ट्रस्ट अरीना में।
2: पावर ड्राइव एट 5 ब्रॉट टू यू बाय फोकस किचन्स, क्वालिटी किचन्स विद मॉडर्नाइज्ड कस्टमाइज्ड डिजाइंस फॉर योर ड्रीम किचन। आर यू रेडी? चैटबस्टर्स
3: थोड़ा सा हॉल बना दे।

0: भारी संधु की आवाज अलोंग विद स्वस्ति मेहुल आप सुन रहे थे ये बहुत ही बढ़िया सा गाना ना कोरी है।
1: सो भी वक्त आ चुका है फ्लाई वे फ्रेंजी का स्पेशल कोड देने के लिए। द कोड ऑफ टुडे इज दामू दामू
0: दामू दामू
1: या दामू दामू एंड द स्पेलिंग इज DAMU नो स्पेस नथिंग एक ही वर्ड है DAMU दामू दामू।
0: आपके पास एक घंटे का टाइम है रुआ ऐप पे जाइए और वहाँ पे फ्लाई वे फ्रेंजी का बैनर आपको दिखेगा वो बैनर को क्लिक करके देयर वुड बी अ स्पेस जहाँ पे आप इस कोड को एंटर कर सको। दामू दामू आज का कोड है फटाफट जाके एंटर कीजिए। एंड
1: दामू दामू का मतलब क्या है
0: मुझे तो नहीं आइडिया।
1: इट इज द फिजियन वर्ड फॉर द कलर रेड या रेडिश ब्राउन।
0: अच्छा इनसे भी पूछ लेते हैं। हाय हेलो
2: हेलो
0: जी स्वागत है आपका। हाय
2: दामु
0: दामु मींस रेड।
1: इनको पता था कि हम पूछेंगे।
0: नहीं थैंक यू आंसर देने के लिए।
2: आप तो हरदम पूछते हैं
1: वही ना। अच्छा
0: हमको नहीं आइडिया ना तो इसलिए
1: वेरी नाइस
2: दैट्स गुड
0: वो लोग बोला ना कि ग्लो रेड रेड पहनो सब।
2: अच्छा
1: थैलेसीमिया कंडीशन होती है बेसिकली तो वो कंडीशन की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काफी लोग आज रेड कलर पहनते हैं दामू दामू कलर पहनते हैं।
0: दामू दामू यस
2: वेरी गुड
0: ऑसम थैंक यू सो मच
1: थैंक यू बाय
0: बाय। द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्पी हमेशा साथ देने वाले दोस्त ब्रॉट टू यू बाय बेड्सरस मोनाको एंड पुकेकोई विद स्लीपी हेड क्वीन मैट्रेस फ्रेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 449 एंड जिमी टेलर एंड टीम फ्रॉम वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप द होम ऑफ GWM हैवल एंड ओमुडा जेकू। Accurate traffic.
3: What's my house value.co.nz.
4: A few showers tonight. It's going to be windy with a low of 14 degrees. From Auckland City out to Manukau, the drive time is about 50 minutes now. It's just starting to drop off, but still very heavy through to around Mount Wellington. On the northwestern, there's traffic queuing St. Luke's to Te Atatū, 35 minutes to Massey. The southwestern is slow south from Queenstown Road, about 40 to get out to the airport.
3: Looking to sell your home? Visit whatsmyhousevalue.co.nz.
5: Cooking ka asli flavor chahiye? Switch to Kashish Foods Ginger Garlic Paste, freshly ground in New Zealand, bina added chemicals, bina preservatives and vinegar-free. Sirf clean, natural taste. Bilkul ghar jaisa. Ginger ho, garlic ho, ya perfect combo. Har dish banegi full of flavor. Aur haan, buy any Kashish Dosa batter, any size. Aur pao, 250 grams ginger garlic paste, bilkul free. Limited time offer, 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
6: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day. Because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
7: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepy head beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
8: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
9: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। T's and C's apply.
10: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
11: The Drive Show with Sandy and Rusby.
0: हमेशा साथ देने वाले दोस्त. Brought to you by Bedzaras, Monaco and Pukekohe with Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449 and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
11: सैंडी कॉफ टेस्ट आप भी प्लीज करो, मेरे को लग रहा है जरूरी है आपको ये देखो.
1: Oh my God.
11: यार लिटरली मेरे को लग रहा
1: है ये
11: हमारे कोई लिसनर को शो सुनते सुनते खांसी होने वाली है, मेरे को लग रहा है.
1: अरे ये जानबूझ के वाली थी रुज़
11: दे. जानबूझ के वाली थी. हाँ तो अभी हम करने वाले हैं, हम खेलने वाले हैं आपके साथ ये
0: कनेक्ट द डॉट्स.
11: कनेक्ट द डॉट्स में होता ये है सैंडी, आज कुछ एक लेकर आएगी वर्ड,
1: एक वर्ड बोलूंगी और उस वर्ड से कुछ भी कनेक्टिंग रुज़बे को बोलना है, देन अगेन वहां पे मुझे बोलना है. अगर कोई कॉल करके उसको कनेक्ट करना चाहता है तो कनेक्ट कीजिए.
11: या 0800-004-866 बहुत कम टाइम है तो प्लीज फटाफट कॉल कीजिए एंड लेट्स प्ले टुगेदर टू दिस फ्राइडे.
1: कनेक्ट द डॉट्स में आई विल स्टार्ट. माय वर्ड इज अमरीश पुरी.
11: मोगैम्बो.
1: लाजो.
11: लाजो. ओ माय गॉड. मैं किसी और को बोलना पड़ेगा, मैं नहीं बोलना. हाय हाय, स्वागत है आपका. आ गए आप ऑन एयर. हेलो
1: हेलो. गए वो लज्जो सुन के लज्जा आ गई उनको.
11: लज्जा इज आल्सो गुड वर्ड.
1: या
11: लज्जा के बाद वो ना वो लज्जा मूवी में कौन थे यार, दो एकदम पावरफुल हीरोइंस.
1: माधुरी दीक्षित थी.
11: माधुरी दीक्षित भी थी उसमें. और कौन थी दूसरी, एक और
1: मुझे माधुरी दीक्षित याद है.
11: अच्छा.
1: या बट रानी भी थी क्या उसमें?
11: नहीं रानी नहीं थी.
1: ओके एनीवे सो आपको कुछ भी उससे के उसके साथ ना कनेक्टिंग आपको बोलना है. रुज़बे कम ऑन, यू हैव टू कंटिन्यू दिस नाउ. किसी का कॉल नहीं आया है.
11: आई कांट कंटिन्यू.
1: व्हाई?
11: लज्जा बोला है आपने.
1: लज्जा नहीं, लाजो बोला है मैंने.
11: लाजो बोला है आपने.
1: या
11: लाजो से लज्जा.
1: नहीं नहीं नहीं. तुम चेन को ब्रेक नहीं करो.
11: लाजो कौन करता है यार. छी लाजो क्या है ये. लाजो फरीदा जलाल.
1: ओके वो कौन सी थी मूवी यार, दिल टूटे वाली कुछ कुछ होता है.
11: दिल टूटे कुछ कुछ होता है. सलमान खान.
1: हर दिल जो प्यार करेगा.
11: ओ ला. ट्रेन.
1: दबंग.
11: ट्रेन और दबंग क्यों?
1: दबंग मूवी में ट्रेन है
11: वो. ऐसा क्या है?
1: ट्रेन का एक्शन सीन है वहां पे.
11: ओके
1: या
11: दबंग बोला आपने. पुलिस.
1: रणवीर सिंह.
11: रणवीर सिंह. चिंग. चिंग नूडल्स. हाँ रणवीर चिंग वो बहुत ऐड करता है वो उसका.
1: चिंग नूडल्स बोला तुमने.
11: चिंग. हाँ
1: एक मसाला.
11: मसाला. हाय एफएस मसाले के बाद अभी आपको बोलना है.
12: मसाला बोलना है यार, ये तो गलत टाइम पे कॉल लग गया.
11: क्या सोचा क्या था?
12: मैंने तो रणवीर सिंह वाला सोचा था.
11: हाँ बोल बोल रणवीर सिंह वाला बोल दे. चल
12: धुरंधर.
11: धुरंधर.
1: धुरंधर. सो बोलो रुज़बे आगे.
12: मसाला का गरम मसाला हो सकता है क्या?
1: एग्जैक्टली बहुत कुछ हो सकता है यार. यू कैन मतलब आउट ऑफ बॉलीवुड भी जा सकते हो.
11: हाँ गरम मसाला चलेगा. गरम मसाला.
12: गरम मसाला.
1: चलो ठीक है गरम मसाला.
11: आपका स्वागत है. हाय
13: हाय रुज़बे. हाय संदीप. सोम बोल रहा
11: हूँ. यस. हाँ सोम.
13: हाँ
1: तो बताइए गरम मसाला के आगे कंटिन्यू करना है आपको.
11: अच्छा सिमरन जीले अपनी जिंदगी.
1: गरम मसाला के आगे. गरम मसाला से तो बहुत सही चीज है यार.
11: जॉन अब्राहम. चलो ठीक है. थैंक्स सो मच.
1: थैंक यू.
11: टाइम समाप्ति की घोषणा.

0: accurate traffic.
1: Kitchenmania.co.nz.
2: A few showers and a bit windy tonight with a low of 14 degrees. Taking a look first at the southern motorway out of Auckland City. It is heavy to East Tamaki Road, about 50 minutes to get to Manukau. And the southwestern has traffic queuing south from Hillsborough Road, 40 minutes to the airports. On the northwestern, expect delays St Luke's to Te Atatū. And on the northern, it's heavy out to about Esmond Road.
1: Order your new Kitchen Mania kitchen and be in the draw for an island holiday. T's and C's apply.
3: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel. Or tuck into beef enchiladas, tender pulled beef, soft tortillas and bright tangy sauce. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
4: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
5: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
4: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
5: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
6: ब्यूटीफुल हाउस प्लांट से लेकर हर वो चीज जो माँ को घर और गार्डन के लिए पसंद है सब मिलेगा माइटन मेगा वेस्टगेट और हैंडरसन में एवरीथिंग टू मेक मम स्माइल एक्सेप्ट द होममेड कार्ड बट यू कुड लेट मम डिसाइड विद अ माइटन गिफ्ट कार्ड एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हैंडरसन
7: अटाकिया टर्न क्लटर इनटू काम With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at ikea.co.nz.
8: IKEA.
9: There are days when you nail parenting, but this isn't one of them. There's not even a single cherry tomato for their lunchbox. And is that a tumbleweed? Luckily, a DoorDash hero emerges. That's me.
10: Dash! Savior of the lunchbox!
9: Now the kids have a tasty lunch that you can totally share on the gram. With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
10: Dash.
11: The Grand Musty Night in conjunction with Freight and Cargo Brokers Low Finity in Wicked Chicken Botany Downs on 23rd May at Manurewa Netball from 6 p.m. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satya Anand, Jay Bhiyaji, Rowdy Naman Chadpar alongside Money, Moto, Aku and Ketan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jay's Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Kes Manurewa and Wicked Chicken Botany.
12: Don't miss out.
13: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Sir Rod Drury continues to completely reject allegations of inappropriate behaviour as he hands back a prestigious title. The former Xero CEO says he doesn't want his current situation to undermine the integrity of the New Zealander of the Year award. He says he also doesn't want further pressure placed on a great organisation before the relevant investigations or proper processes have been completed. The wild weather slamming the west coast is causing headaches on the roads. NZTA is fielding reports of slips and fallen trees, including on State Highway 73 north of Arthur's Pass Village and State Highway 6 in the Lower Buller Gorge. There is also surface flooding across the region. The PSA says Maritime New Zealand is the latest casualty of the government's cost-cutting. The union estimates more than 30 roles will go after Cabinet declined to address a funding shortfall. National Secretary Dwayne Leo says it's just one example of penny-pinching in the public service.
15: What we're seeing is a wider pattern here. Got WorkSafe, Fire and Emergency New Zealand, Health NZ, DOC. These are all institutions that the government is systematically underfunding.
14: The United Arab Emirates is tackling missile and drone attacks from Iran, according to its Ministry of Defence. In a post on X, it urges residents to stay calm and follow instructions from officials. To rugby with Shift 4, get ready for a brutal Super Rugby encounter in Christchurch in just over an hour's time. Prop George Bauer is promising the Crusaders will meet the Blues' explosive ball carriers head on.
16: For us, it's simple. Just whack, get our tackles in, get around the ruck, fill our heart defence and just keep doing that for 80 minutes.
14: That's followed by the Reds and the Chiefs in Brisbane from 9:35. And defending NBA champion Oklahoma City remained perfect in the NBA playoffs after beating the Lakers 125-107 today.
17: Sports News.
13: brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
0: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशन.
8: सूचित किया जाता है सनीवेल की स्नेहलता सोमेश्वर तथा स्वर्गीय डॉक्टर नीरज सोमेश्वर के पुत्र ऋषय सोमेश्वर यादव की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार शनिवार सुबह 11 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210817-1497 पर कॉल कर सकते हैं. सनीवेल की स्नेहलता सोमेश्वर तथा स्वर्गीय डॉक्टर नीरज सोमेश्वर के पुत्र ऋषय सोमेश्वर यादव की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार शनिवार सुबह 11 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए 0210817-1497 पर कॉल कर सकते हैं. लंबासा फीजी के स्वर्गीय देवी प्रसाद की पत्नी ऑकलैंड न्यूजीलैंड के डाउनर वर्क्स के कर्मचारी हेमंत कुमार और रविंद्र कुमार उर्फ बॉबी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के नरेन कुमार और कुसुम देवी तथा फीजी की अनीता देवी और सविता देवी की माँ, लंबासा फीजी की भूतपूर्व निवासी ऑकलैंड की चित्रवती की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार कल शनिवार शाम 4 बजे फीजी समय अनुसार लंबासा फीजी में किया जाएगा. लंबासा फीजी के स्वर्गीय देवी प्रसाद की पत्नी ऑकलैंड न्यूजीलैंड के डाउनर वर्क्स के कर्मचारी हेमंत कुमार और रविंद्र कुमार उर्फ बॉबी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के नरेन कुमार और कुसुम देवी तथा फीजी की अनीता देवी और सविता देवी की माँ, लंबासा फीजी के भूतपूर्व निवासी ऑकलैंड न्यूजीलैंड की चित्रवती की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे फीजी समय अनुसार लंबासा फीजी में किया जाएगा. सूचित किया जाता है बा फीजी के भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय गोपाल की पत्नी ऑकलैंड के मास्टर अशोक विनेश कुमार, सलिशनी देवी, अंजिला देवी तथा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की विजयंती देवी की माँ, ग्लेंडीन ऑकलैंड की गंगा माता की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार रविवार 10 मई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 46A हर्मल रोड ग्लेंडीन जा सकते हैं या मास्टर अशोक को 0211795459 पर कॉल कर सकते हैं. बा फीजी के भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय गोपाल की पत्नी ऑकलैंड के मास्टर अशोक विनेश कुमार, सलेशनी देवी, अंजिला देवी तथा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के विजयंती देवी की माँ, ग्लेंडीन ऑकलैंड की गंगा माता की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार रविवार 10 मई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 46A हार्मल रोड ग्लेंडीन जा सकते हैं या मास्टर अशोक को 0211795459 पर कॉल कर सकते हैं.
0: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
13: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
12: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
13: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
17: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
18: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from $449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
12: Let's go! 3, 2, 1.
13: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
19: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
8: 6 बज चुके हैं, ट्रेंड मेकर्स में आपका स्वागत है, जहाँ पे आपके लिए हम एक थीम लेकर आते हैं एवरी वीकडे 6 से 7 के बीच.
20: सो आज की थीम है आपके लिए, हम ट्रेवल सॉन्ग्स लेके आ रहे हैं. बेसिकली दीज आर रोड ट्रिप सॉन्ग्स,
8: रोड ट्रिप गाने जो आप यूजुअली एंजॉय करते हैं व्हाइल ड्राइविंग. आई लव लिसनिंग, लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स इज बेस्ट डन व्हेन यू आर इन द कार.
20: Yeah.
8: मेरे हिसाब से
20: yeah.
8: क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब जो साउंड होता है ना गाड़ी में, सारी विंडोज अगर बंद होती है या खुली भी होती है, जो साउंड इम्पैक्ट आता है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट.
20: और कहीं और पे हम पूरा गाना सुनते नहीं है ना, और घर पे नहीं हम सुनते हैं गाना. घर पे तो मेरे को लगता है गाना ही नहीं सुनते हैं, पूरा गाना तो क्या सुनना है हमें. एंड
8: घर पे मैं सुनता हूँ एक्चुअली कभी-कभार.
20: कभी-कभी सुनते हो तो
8: या लाइक, बट डिपेंड करता है. लाइक मेरे ना कुछ ऐसे प्लेलिस्ट है जो मैं प्ले करता हूँ, बट नाउ आई हैव गॉट अ न्यू प्लेलिस्ट दैट आई कैन प्ले, व्हिच इज ट्रेंड मेकर्स का ये प्लेलिस्ट जो आज आप एंजॉय करेंगे.
20: 100%. सो इस प्लेलिस्ट को एक्चुअली में आप नोट भी कर सकते हैं. अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है अनफिल्टर्ड क्रू ऑन फेसबुक, तो वहाँ पे इस लिस्ट को हम पोस्ट भी कर देंगे. सो जो ग्रुप में है उनको तो बेनिफिट मिलने ही वाला है.
8: या शुरुआत करना चाहते हैं एक ऐसे गाने के साथ जो जिसने हमें रोड ट्रिप करना सिखाया. इस गाने ने, इस मूवी ने हमें पहली बार एक्सपोज किया कि अच्छा ऐसा भी होता है. आपका, आपको याद है मेमोरी, आपकी दिल चाहता है इस मूवी को लेकर कोई?
20: नॉट एग्जैक्टली, कोई ऐसी मेमोरी याद नहीं है मेरी, कोई रोड ट्रिप की कोई तो मेमोरी नहीं है, बट आई लव्ड द, या आई जस्ट लव्ड वाचिंग द मूवी.
8: बट गोवा का कोई ऐसा बाद में प्लान बना था कि चलो गोवा चलते हैं ऐसे कुछ?
20: नहीं.
8: हमारे, मुझे याद है कि हम छोटे थे जब मूवी आई थी, लेकिन उसके बाद ना हमेशा से प्लान होता था कि अरे गोवा चलते हैं फ्रेंड्स के साथ, गोवा चलते हैं. और हमने किए भी है गोवा की ट्रिप. एंड गोवा इज सच अ प्लेस ना, जहाँ पे आप एक बार जाओ तो आपको ऐसा फील होता है कि यार वापस से जाना चाहिए.
20: मैं कभी नहीं गई हूँ, मैं अभी तक गोवा वैसे नहीं गई हूँ, बट या लेट्स सी.
8: सो यार वी स्टार्टिंग ऑफ दिस आवर विद दिल चाहता है, इसका टाइटल ट्रैक आपके लिए जुगाया है शंकर माधवन और क्लिंटन सिरजो ने.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Trendmakers में आज road trip songs आपको हम सुनाने वाले हैं और रोड ट्रिप गाना बोले तो ये गाना तो बनता ही है, लकी अली का जो गाना आपने सुना भी।
1: लकी अली का ना मुझे लगता है कोई भी गाना इज अ रोड ट्रिप। मतलब लकी अली की आवाज में को गाड़ी में इतना मजा आता है सुनने में, और स्पेशली न्यूजीलैंड में व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड लकी अली इज ऑन, देन यू लव इट।
0: बिकॉज वो हमने क्यों चलती है पवन वो सुना है ना,
1: वहां से हम कनेक्ट हुए ना, ना तुम जानो ना हम।
0: तो वहां से वो उनके आवाज में कोई भी गाना,
1: ऑल द सॉन्ग्स, ओ सनम, तेरी यादों की कसम, एनी काइंड ऑफ सॉन्ग ऑफ लकी अली इज मेड फॉर द रोड ट्रिप।
0: दैट्स एब्सोल्युटली, आई थिंक अ रोड ट्रिप इज नॉट कंप्लीट इफ यू डोंट लिसन टू अ लकी अली सॉन्ग।
1: या
0: सो या डेफिनेटली हमने भी इसलिए इंक्लूड किया लकी अली का ये गाना। बट टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी इवेंट्स, देर आर अ लॉट ऑफ इवेंट्स इन द कम्युनिटी जो हो रहे हैं जिसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। जैसे कि आज ही शाम को होने वाला है भक्ति कीर्तन संध्या, आज जावेद अली का कॉन्सर्ट भी हो रहा है शाम को, भोजन मेला होने वाला है ऑन द 17th of May विच इज नेक्स्ट वीक, ये रामा रामा में होगा, एंड 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे ये होने वाला है नेक्स्ट सैटरडे ऑन 16th May एट मलयोला कम्युनिटी सेंटर।
1: Yes, तो वहाँ पे भी आप जरूर पहुँच सकते हैं। एंड ग्रैंड मस्ती नाइट होने वाली है, वाइब मिक्स इवेंट्स आपके लिए ग्रैंड मस्ती नाइट लेके आ रहे हैं, जहाँ पे फीजी के कुछ फेमस अनाउंसर्स आने वाले हैं, रेडियो अनाउंसर्स।
0: अरे इसमें अपना राउडी नमन भी है ना,
1: राउडी नमन भी इसमें रहेगा, इसमें अपना केतन भी रहने वाला है।
0: अच्छा,
1: आवर वेरी ओन केतन कुमावत विल बी परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज।
0: ओहो हो,
1: या सो एक बहुत ही अमेजिंग इवेंट ये रहने वाला है, लॉट्स ऑफ गिव अवेज भी वहाँ पे होंगे। सो गिव अवेज एंड टिकट्स ये सब आप ले सकते हैं। 23rd May को ये इवेंट होगा नेटबॉल मैनोरिवा में, डोर्स ओपन 6 PM, टिकट्स आर VIP टेबल सीटिंग विथ $50 एंड स्टैंडर्ड टिकट इज $30। आई थिंक दिस इज रियली गुड यार, इट्स रियली नाइस, फ्री पार्किंग एंड सिक्योरिटी वहाँ पे रहेगी।
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 30 hours for just $10 per week for all ages.
1: So, jaldi join kare to enjoy these special offers. Aur sabse khas baat, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. So, dehen mat kijiye. Call 0800 46 26 26 today.
0: Available at selected branches. T's and C's apply.
2: Jen didn't think she needed a DVS system.
3: Oh, I've got insulation in that.
2: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
3: Ah, yeah.
2: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
4: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: हमेशा साथ देने वाले दोस्त
8: brought to you by Beds R Us Manuko and Pukekohe with Sleepy Head Queen Mattress Frames starting from 449 and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
9: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Trendmakers में आज हम आपके लिए road trip गाने लेकर आ रहे हैं.
10: Next गाना कौन सा है रुस्बे?
9: Next गाना जो है ये भी बहुत ही perfect road trip song है. This is Shan और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में.
10: आओ मिलो चले.
9: जब भी मेट का ये गाना है.
10: It's a beautiful song, very nice song. And आप किसी के साथ भी travel कर रहे हैं ना, आप गाड़ी में बैठे हैं, ये song चलेगा. तो मतलब मजा आता है. मुझे एक ट्रैवल सॉन्ग की मेमोरी है मेरे अंदर.
9: बताओ ना.
10: स्कूल में थे और हम शायद पिकनिक के लिए जा रहे थे, तो स्कूल बस जो थी पिकनिक के लिए हम रॉक गार्डन की ओर जा रहे थे. दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर.
9: मेकआउट प्लेस.
10: एंड और गाड़ी में सब कौन सा गाना गा रहे थे, मतलब गाड़ी नहीं बस में सब हम गाना गाए थे, यू ही कट जाएगा सफर. So this is one song I remember, like bachpan ka ye, matlab, but I loved it.
9: Yeah,
10: and everyone was singing. Har ek bachcha, matlab, uchi uchi hum ye ga rahe. Actually khel rahe the, lekin jab ye gaana aaya, everyone was singing it.
9: Actually, I really miss those antakshari days, yaar, jo bachpan mein hum antakshari khelte the. Aur na kuch gaane na patent hote the. Pata nahi aapke yahan pe bhi hote the ki nahi. To pehle mo aata tha.
10: Yeah.
9: पहले तो वो होता था बैठे बैठे क्या करे करना है कुछ काम शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम.
10: Yeah.
9: Right. और फिर मो से गाना कौन सा आपके मन में आता है?
10: अभी मुझे याद
9: हमारे टाइम पे वो होता था माइन माइन वेत तेरी जो भी बोल रहा है
10: माइन माइन मुंडेरे पे तेरी जो भी है बोल रहा है कागा
9: जोगन तेरी
10: आई लव द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग. या
9: फिर वो एक होता था गाना फिर ई से इमली का बूटा बेरी का
10: ये, तो, ये yeah, पेटेंट दिस इज द पेटेंट.
9: तो कुछ yeah. कुछ ऐसे गाने होते थे ना जो स्टैंडर्ड होते थे.
10: yeah.
9: जो गाने ही है
10: आज भी वही है
9: हमारे लिए वही है.
10: नहीं आज भी काफी लोग जब अंताक्षरी खेलेंगे ना अंताक्षरी वही मिलेनियल्स मेरे को लगता है काफी खेलते हैं. उससे पहली जनरेशन काफी खेलती है जेन एक्स. बट अगर आज भी कोई बैठ के अंताक्षरी का खेलता है तो दीज आर द सॉन्ग्स जो माइंड में आते हैं बिकॉज लिरिक्स सुन के याद होते हैं
9: ना. कुड़ी तेनू कहंदी
10: इसका नहीं याद रहेगा कैसे याद रहेगा ये.
9: बट या व्हिच इज योर फेवरेट गो टू अंताक्षरी सॉन्ग आज आप यहाँ पे हमें मैसेज करके बताइए. बट अभी के लिए दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर यू.

0: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. आपके लिए हम यहाँ पे ट्रेंड मेकर्स में आज रोड ट्रिप सॉन्ग्स लेकर आ रहे हैं.
1: Yes, and so far हमने आपके लिए जो गाने प्ले किए हैं, अगर आपसे मिस आउट हुए हैं तो यू कैन ज्वाइन अवर फेसबुक ग्रुप जिसका नाम अनफिल्टर्ड क्रू है. ये अगर आप सर्च करते हैं अनफिल्टर्ड स्पेस क्रू तो वहाँ पे ये फुल लिस्ट आपको मिल जाएगी.
0: Sandy, weekend is here, almost here. What is your plan for the weekend?
1: Very interesting. बहुत random plan होते हैं मेरे रोज भी.
0: Random ना? Unplanned.
1: Random होते हैं मेरे. ऐसा कि ये करना है तो I just go by the flow of the day. ऐसा होता है मेरा plan. Until unless मेरा कोई hacking या वो plan हो, वो बस planned होता है. बाकी घर के जब कोई ऐसा कोई.
0: कल का आपका afternoon तो booked है ना? कल हम जा रहे हैं एक event पे.
1: Yes, कल हम एक event पे भी जा रहे हैं. ओह
0: या उसके vlog वो बनाएंगे शायद.
1: It's gonna be another busy.
0: फ्राइडे भी छुट्टी था काम से.
1: Oh, yeah.
0: और मेरा मंडे भी छुट्टी रहने
1: वाला. क्या बात कर रहे हो?
0: Yeah, bro.
1: Nice, man. Very nice. Good job.
0: Books.
1: Yeah. Anyway, इसी नोट पे अभी बाय नहीं गए लेकिन अभी हम अगला गाना सुनेंगे. This is another movie, travel movie, I will say.
0: Yeah, this is a travel movie, but this is a different kind of a travel movie.
1: Yeah.
0: This is like वो वाला travel movie, like अय्या शो, नवाबी travel.
1: This is like pack बनाया है, उसको complete करना है. और जब वो complete करते करते उनको realize होता है कि this is a thing we were missing in our life.
0: अच्छा, कौन सा बोल रहे हो?
1: तुम किसका गाना प्ले कर रहे हो?
0: मैं दिल धड़कने दो प्ले करने वाला हूँ अभी.
1: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का है ना ये?
0: जिंदगी ना मिलेगी का क्या?
1: हाँ,
0: अच्छा
1: हाँ.
0: दिल, ओ मुझे लगा ये दिल धड़कने दो मूवी का गाना है.
1: नहीं नहीं नहीं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला दिल धड़कने दो है ये.
0: अच्छा, ओके.
1: सो इसमें यू नो जैसे ऋतिक रोशन इज वेरी बिजी लेकिन वो भी करना है. अभी दिल की अलग कहानी चल रही है.
0: राइट.
1: सो फरहान अख्तर इज ओनली द पर्सन हु इज चिलिंग आउट बेसिकली स्टार्टिंग से.
0: दैट्स राइट. या एंड हर ग्रुप में ऐसे टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं.
1: या
0: सो एंजॉय कीजिए ये गाना अभी के लिए.

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum, accurate traffic.
2: The Auckland Travel Show.
3: A few showers tonight, windy as well with a low of 14 degrees. We'll start off coming in towards town on the motorway network, the northern very heavy Esmond Road to the bridge. We've actually got reports of an incident there. We'll keep you updated on that. Out of town, the northwestern is slow between Great North Road and Te Atatū. The southern busy Market Road out to Mount Wellington, and the southwestern slow south from Mangere Bridge.
2: Escape the grind. The Auckland Travel Show. This weekend. Travelshow.co.nz.
1: The red hot sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
4: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest, Sarah.
5: What do you make in kebab ko special, Chef Alex?
4: Perfect blend of spices, tender meat, and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
5: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
4: Ye hai Amma's Kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
5: 100% authentic and pure as mother's love.
6: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, e-waste हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। auckland.gov.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी altogether Auckland.
7: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह,
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
11: Get it sorted with Cheap As Deals. Grab a hot deal with over 30% off selected Nuvo hot water bottles, now just $9. And 10 centimetre Flora Viva flower plants, now only $2.50 each. Limited stock, Cheap As Deals. In Sunday at Mitre 10.
12: अगर आपको कभी भी लगे कि हमने ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन किया है, तो आप इसकी शिकायत ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी से कर सकते हैं, और जानकारी के लिए bsi.govt.nz पर लॉग ऑन करें।
13: The Drive Show with Sandy and Rusby.
14: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
15: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: आप सुन रहे ट्रेंड मेकर्स। आज का हमारा थीम है रोड ट्रिप। रोड ट्रिप सॉन्ग्स आपको हमने सुनाए ये पूरे घंटे, एंड अब जाने की बारी आ गई है। लेकिन जाते जाते ऐसा रोड ट्रिप गाना जिसमें रोड ट्रिप में प्यार हो गया। किडनैपिंग हो रही थी लेकिन एक्चुअली में प्यार हो गया।
1: इसके एक टर्म भी है,
0: हाँ,
1: जब आपको किडनैपर से प्यार हो जाता है।
0: स्टॉकहोम सिंड्रोम
1: ये कहते हैं इसको। इसके ऊपर मूवी भी है, एक हॉलीवुड मूवी भी है इसके ऊपर।
0: काफी मूवीज बनी है इस बात इसके ऊपर, और ये भी मूवी इसके बेस पे ही थी,
1: इसी के बेस पे।
0: रणदीप हुड्डा, आलिया भट्ट,
1: एंड इसमें आलिया भट्ट मेरे को उस समय पर बहुत अच्छी लगती थी जब ये मूवी आई थी। अभी भी शी इज फाइन, या ऐसा कुछ नहीं
0: अच्छी लगती है ना
1: अभी मेरे को, वो थोड़ी ओवर सी लगती है। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ और बनने के लिए बहुत एफर्ट डाल रही है वो।
0: सो आई थिंक इट इज
1: हरसेल्फ नहीं है,
0: इट इज रणबीर कपूर इफेक्ट। If you see that, दीपिका पादुकोण जब रणबीर कपूर के साथ थी तभी वो नहीं अच्छी लगती थी ज्यादा। आप सोचो इसके बारे में, जैसे ही दीपिका रणबीर के साथ गई, दीपिका फिर से अच्छी लगने लग गई।
1: व्हाट अबाउट कैटरीना कैफ?
0: कैटरीना कैफ रणबीर के साथ थी क्या? तभी तो बिल्कुल नहीं पसंद थी ना, क्योंकि सलमान को छोड़ के गई थी ना वहाँ पे।
1: वो तो मेरी बात है वो मेरी कहानी तो अलग है।
0: राइट, बट एनीवे आपसे मजा आया आज बातें करके, और भी बातें करेंगे, बट आप सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए हमारे वीकेंड शोज भी।
1: या थैंक यू सो मच गाइस, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
0: बाय।

प्यार इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी, मानसिक संतुलन अपना खोने लगी, पहले गंदा किया फिर खुद ही धोने लगी, एक रात में हिलाव उसे होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पीए से है रखे जो घूटो से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी, मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी, मेरे गोयाट के बैक कानों में टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी, कोई एक टिप्पणी पे ना करो टिप्पणी, तेरे जैसे कहां से मैं आंट चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी कैसी तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी चलता है उसको भी फाड़ता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, 3 रात लगातार मैं जागता फिरूं, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं।

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई ले

0: Crispy on Rova, Spotify और anywhere you get your podcast.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
4: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू. विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी. टीज एंड सीज अप्लाई.
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
5: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
6: हम
5: लेट्स गो.
0: द वीकेंड स्टार्ट्स हियर.
6: फ्राइडे नाइट रेव.
0: हम

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The breakfast show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Danny didn't think he needed a DVS system.
6: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
5: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
6: Nah, only one room. It was just too noisy.
5: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
7: Bunnings Trade is here to help you get set for winter with 134 Trade. For quick quotes and pricing, stock queries, order and delivery updates, and general inquiries, contact the 134 Trade team today on 0800 134 872. Bunnings Trade, helping business is our trade.
8: Join the Great Big Balance Check at New World. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card, only at New World. T's and C's apply.
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।

0: Yukio Waisa! Terabyte Panther!
1: Terabyte.

बनोगे क्या कुछ? अभी अभी सोचा है मैडम, आप पे पूरा भरोसा है। चलो अच्छा सुनो, जो लाइन पसंद आती है वो चुनो। नाम छोटा डॉन मगर सब

0: hookah, yeah. Get my job before the money, every 30 days I'll bear with the people and work, work, work, work. And if it wasn't for the money, I'd be running to the office and just putting on my papers with them.
1: बचपन से बचपन तू राही थोड़ा थोड़ा स्टैक जबर खूब काही राही काही नाही नको अरे दाजी मामी थोड़ी चिंतित पर बाकी सब इलाही इल हाय ये मैं राज दुआ मैं मिल तू आज दुआ मैं मिल लू आज दुआ मैं तुझको राज ए ए चुना ना दूर से देख चूहा जेरी तू मैं टॉम मैं तेरा दोस्त तू देख देख विचार चलू तार शब्द कांदान वर से तू ना पांदान वर टिक पैसा खानदान वर चेक लाओ लाओ थोड़ा सा प्यार मेरे कंटेंट पे क्यों जगह पर कॉल मेरी कौन कौन इस कंटेंट में कॉन्सर्ट पे सब्सक्राइब पे खतली मी नौ आरी पदर सर का फ्लो सारा रैप बारी लाइफ आरी मराठी पोरगी ना काते नथनी प्रेमाचा रैप जसा भाकर अनचटनी माथे पे चंद्र कोर जबान खारी खारी चाय के साथ वैसे ही मैं और मेरी नौ आरी शब्दों से कूल हॉट ट्रेंड मेरी सारी खारी चाय के साथ

0: पागल है, पागल है, मेरे यार सारे पागल है, पर साथ निभाते बराबर है, सारे बोले मुझे लक्ष्य।
1: Starts here.
2: Friday Night Rave.
1: How

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना।
1: और गानों में जज्बा

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, मैं

0: The beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
4: You can enjoy a flexible personal loan with zero establishment fee when you apply for a GEM personal loan by the 19th of May 2026. GEM loans can be used for all kinds of things, like a new car, your dream holiday, a much-needed renovation, or simplifying debt. With weekly, fortnightly, or monthly repayment options available, apply online in under 7 minutes, and if approved, we'll waive the loan establishment fee. That's a saving of $240. Establishment fee waived until 19th of May 2026. T's and C's apply.

0: दिया।
1: स्ट्रीमिंग ऑन रोवर।
2: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations, like LA and San Francisco from just $939 one way. Or fly to Vancouver from only $999 one way. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent. Conditions apply.
2: बिग बॉस देखा है ना, अब घर से बाहर निकलो और विनर को लाइव देखो। मुन्नावर फारूकी आ रहे हैं ऑकलैंड विद हिज स्टैंड अप कॉमेडी शो धंधो।
3: छोटा तो मेरे को नहीं समझ में आता था, मैंने अपने चाचा से पूछा, कुबुले कुबुले कुबुले क्यों होता है ऐसा तीन बार? मेरा चाचा बोलता है औरतों को एक बार में समझ में कहा आता है।
2: सैटरडे 23rd में ब्रूस मेसन सेंटर ताकापुना 7 PM onwards. Book your tickets now on ticketmaster.co.nz.
4: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari koi branch nahi hai.

0: flight on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार।
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: The Vibe Mix Events presents
7: the Grand Musty Night in conjunction with Freight and Cargo Brokers, Low Finity in Wicked Chicken Botany Downs on 23rd May at Manurewa Netboard from 6 PM. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satya Anand, Jay Bhiyaji, Rowdy Naman Chadpar alongside Money, Moto, Aku and Ketan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jay's Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Kes Manurewa and Wicked Chicken Botany.
6: Don't miss out.

0: flight on Hum.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
4: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
3: मेरे को समझ भी नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
1: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे

0: 10 AM.
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
1: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 80.
6: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: Award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
9: Kahani of Indelible Homes.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
11: Night Flight.

0: चाहे आप हमके ढिंचैक 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: Night Flight on Hum.
1: Bro, look at you. Blue light screen ko itna ghoor raha hai, jaise wo tujhe promotion de dega. Aur ye coffee? Lukewarm. A taste bilkul heartbreak jaisa. Please sir, tu cubicle ke liye nahi banaye. Tu beach ke liye banaye. Tu life ko enjoy karne ke liye banaye.
2: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
3: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex aur ye hai meri guest, Sarah.
4: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
3: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
4: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी.
3: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
4: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
5: Budget gaane.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships call Karam Hundal on 027-514-6477.
3: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Budget gaane.

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली बस मेरा फोकस है.
2: अच्छा
1: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
2: मिसेस सिंह
3: अरे मम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन। Playing Bollywood's biggest hits.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Playing Bollywood's biggest.

0: ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
3: हाँ। अच्छा,
2: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
6: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
0: कभी भी कहीं भी। Saturday breakfast on Hum.
7: आ गया।
0: You're listening to Avineet.
8: Kia ora, bula, salam, namaste, sat sri akal. मैं हूँ अभी आपके साथ में, जबकि आज है 9th of May, शनिवार। ऐसे में एक नई सुबह, एक नई उम्मीद की किरण लिए आपके साथ में और हाजिर हो चुका हूँ। अभी से लेकर 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। हम जानते हैं काफ़ी लोग निकल पड़े हैं, रास्ते पर है, अपने अपने नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपको कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग, अगर जो आप देश में सुन रहे हैं या फिर विदेश में सुन रहे हैं, आपका खास स्वागत हैं ऑन योर फेवरेट डायल विच इज हम, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम, साथ में रोवा पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। वेलकम टू द शो, और इस सुबह को भी आपके लिए बिल्कुल एंटरटेनिंग बनाएंगे और ढेर सारा इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर्स, ये सभी कुछ इकट्ठा करके लेकर आए हैं आपके लिए। इसी तरह से आपका साथ देते रहेंगे और यही चाहेंगे कि ये जो सुबह है आपके लिए बिल्कुल ब्यूटीफुल रहे, बिल्कुल आप ही की तरह ब्यूटीफुल रहे। ऐसे में चलो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह के साथ में। और कुछ ना कुछ जादू तो होता ही रहता है जब भी हम पर रहते हैं, इसी तरह से एक जादू भरी आवाज़ को सुनते हैं अरिजीत सिंह, और ये भी जादू के बारे में ही गाने जा रहे हैं।

ऑन दी एयरवेव्स ऑफ हम आपको विश करते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, और ऐसे में आपको बता दे कि आज के लिए मौसम क्या कुछ आपके लिए लेकर आएगा। तो बताया जा रहा है मेट सर्विसेज द्वारा कि क्लाउडी पीरियड्स रहेंगे विद ओट शावर्स हियर एंड देयर, यानी कि दिन में आपको रह रहकर बारिश भी मिल सकती है, और इसके साथ में जो बारिश है शाम तक काफ़ी हेवी भी हो सकती है, और इसके साथ में आज का जो सनराइज़ है इज फोरकास्टेड फॉर 7:06 AM, यानी कि 6:07 पर आप सनराइज़ की पहली किरण देख सकते हैं। इसके अलावा जो दिन का टेम्परेचर रहेगा कुछ 20 डिग्रीज तक एट इट्स पीक हो सकता है। इसके साथ में अगर जो पूरी की पूरी नॉर्थ आइलैंड साथ में साउथ आइलैंड के लिए देखें तो काफ़ी जगहों पर काफ़ी शहरों में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मिक्स्ड वेदर कंडीशन रहेगा, यानी कि धूप और साथ में बारिश आपको बराबर से मिलेगी। इसके साथ साथ साउथ आइलैंड की ओर भी ऐसे ही वेदर कुछ फोरकास्ट किया गया है। तो ये सभी कुछ आपके लिए वेदर पर एक नजर थी, ताकि आज का दिन आप अपने लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से प्लान कर सके। मैं हूं अभी आपके साथ में, वंस अगेन अभी अभी आप ट्यून इन हुए हैं, आपको विश करना चाहते हैं आप वेरी गुड मॉर्निंग, और इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा 5599 पर, और साथ में 0800-4866 पर आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं।

0: 104.2 FM साथ में रोवा पर आपका खास स्वागत करते हैं। अभी का साथ है और एक नज़र समाचारों में अगर जो देख ले तो बताया जाता है, रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि कल रात साउथ आइलैंड में काफ़ी जगहों पर विंड थी और साथ में मूसलाधार बारिश भी हुई, यानी कि ज़ोरों के साथ में बारिश हुई और इसके चलते फ्लडिंग हुई, जहाँ पर 2 स्टेट हाईवेज़ को बंद किया गया ड्यू टू वाइल्ड वेदर। स्टेट हाईवे 6 राई वैली से लेकर हेवलो तक बंद की गई थी, साथ में स्टेट हाईवे 63 जो वायरा वैली से होकर जाती है, गुजरती है, उसको भी बंद किया गया था। साथ में स्टेट हाईवे 60 को भी नियता कता का एक एरिया है, यहाँ पर भी बंद किया गया है। इस पर और भी जो जानकारी है ये 8 पर समाचारों में आप तक लेकर आएंगे कि अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है या ये क्या कुछ है साउथ आइलैंड के लिए। इसके साथ साथ में कल एक और एक घटना घटी थी इंडोनेशिया में, जहां पर इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि 3 लोगों की जान गई है इंडोनेशियन आइलैंड में, जहां पर जो 3 हाइकर्स थे ये इंडोनेशिया के माउंट दुकोनो में हाइकिंग कर रहे थे और इनकी मौत हो गई, जबकि कल सुबह सुबह वेल्केनो इरप्ट हुआ। तो ये सभी कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहते हैं ताकि आपको भी पता रहे कि आपके इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: ड्राइविंग यू होम द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहां पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दूसरी तो
5: आए आए बताओगे
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Bedzaras Manuko and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from $449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: यो मैं हूँ सुता सा छोरा
0: यू आर लिसनिंग टू अविनीत
3: जी हाँ, अभी का प्यार भरा नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग आपको पहुँचे। और आपको बता दें कि थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आएंगे कि आपके आसपास आज क्या कुछ हो रहा है, आपके कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है। तो जब बातें करते हैं कम्युनिटी की, तो आपको बता दें वाइब मिक्स लेकर आ रहा है द ग्रैंड मस्ती नाइट, जो कि फिजी के काफ़ी रिनाउंड आरजे इसको प्रेजेंट करेंगी, एस एन जे साथ में नमन को, और यहाँ पर डेंसिंग लेजेंड चर्फर भी रहेंगे। ये सभी कुछ रहेगा आपके लिए एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा मोंटो मोनिका और सिंगा मनी डिसूजा जैसे जो परफॉर्मेंस है ये रहेंगे, ये सभी कुछ। और साथ में हम के अपने केतन भी लाइव परफॉर्म करेंगे स्टेज पर। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, आपको सिर्फ टिकट्स मिलेंगे जो वीआईपी टेबल सीटिंग है $50 और स्टैंडर्ड टिकट्स है $30। और अगर जो आपको टिकट्स चाहिए तो हंटर्स फूड टाउन पपटोई साथ में जेज फ्रेश मार्ट पपटोई जय के पास में जाकर आप टिकट्स ले सकते हैं। इसके अलावा गेट फ्रेश सुपर मार्केट मेंगरी और केस हेयर एंड ब्यूटी सलून मनीरवा में, साथ में विकेट चिकन बोटनी पर बोटनी डाउन ब्रांच में, साथ में जेंडर है एंड ब्यूटी सलून कैवेंडिश ड्राइव हरी नाउ, जबकि टिकट्स अभी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो ये रहेगा कॉन्सर्ट 23 मई को एट नेटबॉल मनी रिवर, और यहाँ पर जो डोज है ये ओपन होंगे 6 इन द इवनिंग।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: जी हाँ, सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है ये। मैं हूँ अभी आपके साथ में, जबकि आज है 9 तारीख। मैं ऐसे में आपका साथ देता रहूँगा 12 तक। और आज सुबह सुबह आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि लाइफ में चैलेंजेस और साथ में चुनौतियों को लेकर ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप चुनौती यानी कि चैलेंजेस के लिए अकेले ही काफ़ी हो।
2: 1, 2, 3.

0: 9th ऑफ मई है आज और आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको भी यहाँ से अनेकों बधाइयाँ देते हैं, आपको विश करते हैं हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और अगर जो आप अपने जो बर्थडे मैसेजेस है या फिर अपने जो खुशी के मौके में हमें यानी कि हमको भी शामिल करना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि 5599 पर अपने प्यारे प्यारे से मैसेजेस आपको भेजना है। इसके अलावा आज अगर जो आपकी शादी की सालगिरह है, ऐसे में आपको विश करते हैं हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। चलो शायद आपके दिमाग से बाहर निकल गया होगा या स्लिप हो चुका होगा, तो ऐसे में आपको याद दिला देते हैं कि आज का जो दिन है आपके लिए स्पेशल है। तो इसके लिए भी आप अपना जो मैसेजेस है 5599 पर ड्रॉप कर सकते हैं और आपको यहां से याद करते हुए चलेंगे हम पर।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहां से ले जाएंगे।
4: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या
5: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
4: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
5: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

0: after 10 a.m.
1: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
2: Showerdome.co.nz.
3: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ऑलटुगेदर ओकलैंड।
4: Now's the time to send mum something she'll love this Mother's Day. With over 560 stores across the country, it's easy to make Mum's Day with NZ Post. Find your local at nzpost.co.nz.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ, अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह,
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: 16 मिनट बाकी है 7 बजने में. हम पर गुड मॉर्निंग विश करता हुआ मैं हूं मुस्कुराता हुआ अभी आपके साथ में आपके फेवरेट स्टेशन हम पर प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और साथ में 104.2 FM और रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं.

हाँ, पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और क्वीन का गुड मॉर्निंग हो गया है क्योंकि इनका जो प्यारा से मैसेज है गुड मॉर्निंग अभी ऑसम प्रोग्राम आप सुन रही हैं, तो हमारी ओर से भी आपको गुड मॉर्निंग विश करना चाहते हैं। आपकी भी सुबह की शुरुआत हो गई है तो 5599 पर आप अपना मैसेज हमारे पास में भेज सकते हैं ताकि आपको भी यहां से हम विश कर सकें और पता तो चले कि रोवा पर और साथ में हम पर हमारे कितने साथी है अभी सुबह सुबह की जो प्रोग्राम है हमारे साथ में सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। इसके लिए एक ही तरीका है पता लगाने का कि आपका जो प्यारा सा मैसेज है 5599 पर ड्रॉप होने चाहिए आपकी तरफ से ताकि हमें भी पता लगे भाई सुबह सुबह आपके लिए आते हैं और कितना लोग हमारा साथ अभी दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें जबकि आज सैटरडे है तो ढेर सारी जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है, मैचेस है, ये कुछ होने जा रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। और इसके अलावा 7 के बाद आपको बताएंगे कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है और ये सभी कुछ हमारे साथ में रहेगा। और मैं हूँ अभी आपके साथ में, आपको वंस अगेन विश करना चाहता हूँ वेरी गुड मॉर्निंग, साथ देते रहिएगा जबकि 12 तक हमें मिलकर ये सफ़र को तय करना है।

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: There's the mum who raised you, the grandma who spoiled you, and the auntie who knows all your secrets. Buying gifts for all of them? Stressful. Buying a Prezi card? Easy. The Mother's Day gift that always lands. Shop prezicard.co.nz.
2: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday Breakfast on Hum.
3: You're listening to Avineet.
4: गुड मॉर्निंग, मैं हूं अभी आपके साथ में और घड़ी इशारा कर रही है कि 7 बज चुके हैं। ऐसे में आपको आज का जो दिन है बिल्कुल आपके लिए शुभ रहे। आप भी शायद निकल पड़े हैं मार्केटिंग के लिए, तो आपको भी शामिल करते हैं, रास्ते पर है, नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं, अपने काम की ओर बढ़ रहे हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू हमारी ओर से। और बस थोड़ी ही देर में अगर जो आप सोच रहे हैं कि क्या कुछ आप कर सकते हैं आज के लिए, तो ये भी आपके साथ में शेयर करते चलेंगे। याद रहे मैं हूं आपके साथ में ऑन हम 104.2 FM, साथ में रोवर पर।

0: कॉफी और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: फ्रेशली ब्रूड कॉफी का मजा ही कुछ और होता है. ऐसे में जो कॉफी है आप इंजॉय कर रहे हैं, इसके साथ में हम पर जो लेटेस्ट गाने, साथ में जो पुराने नगमे आपके लिए पेश कर रहे हैं, आपके लिए मेलोडियस नंबर्स ऑन अ ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग आपके लिए लेकर आते रहते हैं. इसके अलावा हमने आपसे वादा किया था कि आपको कुछ ना कुछ बताएंगे कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है. तो ऐसे में ब्लॉक हाउस बे लाइब्रेरी में, यानी कि 578 ब्लॉक हाउस बे रोड, ब्लॉक हाउस बे ओकलैंड में, यहाँ पर एक न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ के दौरान यहाँ पर जो लोकल आर्टिस्ट हैं आज प्ले करेंगे स्पेशल सेलो, साथ में वायोलिन रहेगा. अगर जो आप म्यूजिकली इंक्लाइंड है तो शायद ये आपको बिल्कुल सूट करे. जबकि आज दोपहर 2 से लेकर 2:45 PM तक ये जो प्रोग्राम है रहेगा, जहाँ पर कैलेब रेमंड एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, साथ में मेलेडी डेवरल एक 10 ईयर ओल्ड वायलिनिस्ट है, ये प्ले करेंगे साथ मिलकर. और अगर जो आपको मेलोडी सुनना है, साथ में वायलिन सुनना है और सेलो भी सुनना है, तो आपको सिर्फ जाना होगा ब्लॉक हाउस बे लाइब्रेरी. और आज जबकि 2 PM से ये जो प्रोग्राम है ये रहेगा. और अगर जो आपको म्यूज़िक पसंद है, जैसे कि हमने कहा है, यहाँ जाकर आप बिल्कुल इसको विटनेस कर सकते हैं.

हाँ, मन हुआ पंख लगा के लव्स टू फ्लाई। तो ऐसे में आपको बता दें, जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके पंखों को, आपके विंग्स को क्लिप नहीं करते, बल्कि वो आपको एक फेदा और दे देते हैं ताकि आप और भी ऊंचा उड़ सके। तो इन बातों के साथ में मैं हूँ अभी आपके साथ में, एंड इट्स 17 after 7। आपके लिए एक और एक कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा ही कुछ लेकर आएंगे, जबकि वीकेंड का माहौल इस समय है, ऐसे में कुछ इंस्पायरिंग सुबह सुबह होने चाहिए ताकि आप भी ऑन द ग्रूव, ऑन द मूव हो सके।

0: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा, और ये कॉफी ल्यूक वार्म, अ टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
4: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz. We gotta go to the boat
5: show. Attention New Zealand, it's Lotto NZ's biggest ever Mother's Day. Treat your mum to a triple dip and she could win one of 100 extra prizes of $30,000. Get Mother's Day sorted at your local Lotto NZ store. Prizes drawn May 16th, T's and C's apply.
6: Global fuel prices are impacting Kiwis, so these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
7: Fly direct from Auckland to the Gold Coast with Qantas from June 16. From sun-soaked beaches and luxury retreats to world-class waterfront dining and lush hinterland escapes, find that holiday feeling in the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and 30 kilos of checked baggage included when you fly with Qantas. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply. Schedule subject to change.
8: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
9: अच्छा?
8: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
9: मिसेस सिंह।
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन

0: RNZ.
1: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Saturday Breakfast on Hum.
2: Yo.
1: You're listening to Avineet.
3: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में। और कल जबकि मैंने रफ़ी और मैं ये देखने गया था और जावेद अली क्या परफॉर्म किया इन्होंने, और इसके बारे में अगर जो आप और क्लिप्स चाहते हैं तो हमने एक छोटी सी क्लिप्स जो है ये डाली है फेसबुक पेज, हम फेसबुक पेज पर, यहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं इसके साथ। और कुछ पिक्चर्स भी हैं जहाँ पर बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइंग जो इवनिंग थी ये यहाँ पर थी। इसके साथ साथ लोगों ने काफ़ी मज़ा किया, और मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जब ये स्टेज पर आए ना, और इसके बाद में वहाँ से ये हिले ही नहीं, क्योंकि एक के बाद एक ये परफॉर्मेंस देते गए और लोगों ने इनको बिल्कुल एंजॉय किया, इनके गानों को बिल्कुल एंजॉय किया। और बड़ी बात ये थी कि ये पूरा का पूरा इन्होंने रफ़ी को भी ट्रिब्यूट दिया, मोहम्मद लेट मोहम्मद रफ़ी के, जिनके ये बड़े फैन लग रहे हैं। इसके साथ साथ में लता मंगेशकर, साथ में आशा भोसले जी को भी इन्होंने बिल्कुल ट्रिब्यूट दिया। तो इनके बारे में अगर जो आप और पिक्चर्स चाहते हैं तो हम फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर इनका एक छोटा सा वीडियो, एक क्लिप भी हमने डाला है।

लगे हाथ आपको हम पर कम्युनिटी न्यूज भी बता देते हैं। श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट ये आपके लिए लेकर आ रहा है भोजन मेला द फूड कार्निवल, जो कि रहेगा संडे मई 17 को, यानी कि इस वीक नहीं, अगले वीक आप यहां पर जा सकते हैं। जबकि दिन में 11 बजे से लेकर शाम 4 तक यहां पर जो फंक्शन है भोजन मेला का, जो कार्निवल है ये लगा रहेगा। आपको सिर्फ जाना होगा 378 RRIMOO रोड रामारामा साउथ ऑकलैंड, जहाँ पर लक्ष्य है इनका कि ये लोग लोड वेंकटेश्वरा टेम्पल प्रोजेक्ट के लिए धन इकट्ठा कर सके। यहां पर फ्री एंट्री है, साथ में फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट और इडली सांबर। इसके अलावा यहां पर आप अगर जो ज्वेलरी साथ में क्लोथिंग के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, ढेर सारे स्टॉल्स आपके लिए रहेंगे। ये सभी कुछ आपके पास मौका रहेगा जाकर करने के लिए ऑन द 17th ऑफ मई दिन में 11 बजे से लेकर शाम 4 तक। और स्पॉन्सरशिप साथ में स्टॉल्स के लिए आप शिवानी को 0218700012, साथ में शांति रवि को 021-294-6394 पर कॉल कर सकते हैं।

0: आप सुने थे कुमार शानू को अपने सोलफुल अंदाज में, जबकि इधर सीबीडी में हल्की हल्की जो धूप की किरणें हैं, सूरज की किरणें हैं, ये उठ रही हैं। और आपके एरिया में वेदर कैसा है इसके बारे में आप ज़रूर बता सकते हैं 5599 पर। जबकि मौसम के बारे में बात करते हैं तो शायद आपने पहले मिस कर दिया होगा, साउथ आइलैंड में कल वेदर काफ़ी रफ था, जिसके चलते अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हमारे हाथ लगे हैं कि काफ़ी जगहों पर फ्लडिंग, पावर आउटेजेस और साथ में रोड क्लोजर्स, ये सभी कुछ हुए हैं साउथ आइलैंड में। नेल्सन साथ में मेलब्रो के इलाके इनमें शामिल है। इस पर जो और भी जानकारी है ये आप 8 बजे वाले समाचारों में ज़रूर सुन सकेंगे। बस साथ देते रहिएगा, जबकि 20 मिनट बाकी है 8 बजने में और 8 पर आपके लिए समाचार रहेंगे द फर्स्ट न्यूज़ ऑफ द डे आपके लिए।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hump. You get money, get cash. Money, money, money. It's all about that talent. New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: Moisture और ventilation का problem लगता है।
4: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डाले, पता करे कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ओटुगेदर ओकलैंड।
9: Right now at Guthrie Bowron. Enjoy free curtain making on thousands of quality fabrics. Take 15% off selected blinds, shutters and motorization. Plus receive a free in-home measuring quote. Cozy up your home in time for the cooler months. Guthrie Bowron. Inspiration starts here.
10: Farmers has the best gifts for mum. Surprise her with a new fragrance or beauty gift. Keep her cozy with a new robe and sleepwear. Treat her with some new styling tools or a gorgeous diffuser or candle. Celebrate mum this Mother's Day. Farmers, your department store.
11: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
12: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
13: बजे हिट गाने।
1: टोस्ट, कॉफी और हम का एनर्जी।
14: सुबह हो गई मामू।
1: Saturday breakfast on Hum.
15: Yo,
16: main hu chhota sa chhora.
1: You're listening to Avineet.
0: जी हाँ, गुड मॉर्निंग आपको हमारी ओर से। और हमारे पास में टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर ऐश आपका मैसेज आ गया है। गुड मॉर्निंग आपने लिखा है, इन्जॉय योर डे, थैंक यू सो मच, शुक्रिया इसके लिए। आप भी अपना मैसेज हमारे पास में 5599 पर भेज सकते हैं, खासकर अगर जो आज का दिन आपके लिए स्पेशल है, आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं या फिर आपके फैमिली में कोई लकी पर्सन है जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो ऐसे में आप उनके जो संदेश हैं, मैसेजेज हैं, हमारे पास में ड्रॉप कर सकते हैं। और कम्युनिटी न्यूज़ में आगे बढ़ते हुए, वीजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड ये साथ मिलकर ऐसे प्रॉपर्टी फाइनेंस स्पेशलिस्ट के साथ में लेकर आ रहा है 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे। गिरमिट जो फिजी वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन और एक ऐतिहासिक मुद्दा है। सैटरडे 16th मई को इसको सेलिब्रेट किया जाएगा एट द मलेओला कम्युनिटी सेंटर, जहां पर 16 वाइकुरी प्लेस मैंगरी ओकलैंड में जाकर आप इस सेलिब्रेशन में भाग ले सकते हैं। एक ऐसी इवनिंग जहां पर रिमेम्बरेंस और रिकॉग्निशन दिए जाएंगे, साथ में 4:30 PM से लेकर 8:30 PM तक ये सेलिब्रेशन जारी रहेगा। जो डोर्स है ये खुलेंगे शाम 4 बजे, और इसके साथ में नेट बुकिंग करने का मौका, साथ में टी एंड स्नैक्स विल बी प्रोवाइडेड, फ्री एंट्री है, और ढेर सारे ऐसे परफॉर्मेंसेज रहेंगे, साथ में स्पीचेस रहेंगे जो कहीं ना कहीं गिरमिट से संबंधित रहेंगी। इसके लिए अगर जो आपको और जानकारी चाहिए तो fijigirmitnz@gmail.com पर आप ईमेल कीजिए। याद रहे 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे ये जो है सैटरडे 16 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा, विच इज़ नेक्स्ट वीक सैटरडे।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: जी आप सुन रहे सैटरडे ब्रेकफास्ट शो, मैं हूँ अभी आपके साथ में, जबकि 9th of May है, ऐसे में शनिवार है एंड इट्स मदर्स डे टुमारो। आप भी शायद सुबह सुबह निकलेंगे अपनी मम के लिए शॉपिंग करेंगे। अगले आवर पर आपको बताएंगे द मोस्ट स्पोकन वर्ड ग्लोबली, क्या आपको अंदाज़ा है कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया शब्द कौन सा हो सकता है, इसके बारे में और भी बातें करेंगे। इन द मीन टाइम अगर जो आपको मालूम है, अगर जो आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो अपने गेसेस हमारे पास में 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं अपने नाम के साथ में कि क्या सोचते हैं आप सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया वर्ड ग्लोबली क्या हो सकता है। 5599 इज़ द प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आप अपने जो प्रेडिक्शंस हैं या फिर जो अपने गेसेस हैं हमारे पास में टेक्स्ट कर सकते हैं।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: कॉफी और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम You're listening to Avineet.
1: हमारे स्टूडियोज हम में 8:02 हो चुके हैं. वेरी गुड मॉर्निंग आपको कहते हैं, विश करते हैं ब्यूटीफुल डे अहेड. और आपको बता दें, लगे हाथ 9 पर आपके लिए लेकर आएंगे मस्ती मीठा, जहां पर आपको एक हेक्टिक वीक के बाद में कुछ ना कुछ कॉमेडी एलिमेंट्स हमारे शो में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं. तो जबकि हमने आपसे पूछा था कि वन ऑफ द मोस्ट ओवर यूज्ड वर्ड्स ग्लोबली, ये आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इसके बारे में, अगर जो आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो 5599 पर आप टेक्स्ट कीजिए अपने नाम के साथ में कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो ग्लोबली काफी ज्यादा हद तक इस्तेमाल किया जाता है. तो 5599 पर अपने नाम के साथ में भेजिए. इन द मीन टाइम इस आवा की शुरुआत करते हैं दिलजीत दोसांझ के साथ में अ ब्यूटीफुल नंबर, और इसके बाद में उसी वर्ड के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे जो ग्लोबली सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.

हाँ, हम पर ये कमाल की बात है कि हम आपके साथ में हैं ऑन द एयरवेव्स ऑफ हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, जबकि रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं, साथ में 104.2 FM पर आप हमें सुन रहे हैं। तो ऐसे में कमाल की बात ये भी है कि क्या आपको पता था कि सबसे कॉमनली यूज्ड वुड, अगर जो एक रिसर्च की माने तो BBC ने रिपोर्ट किया है, इज सॉरी, यानी कि सॉरी टू बोदर यू, साथ में सॉरी फॉर द डिले, सॉरी अबाउट द वेदर, और सॉरी फॉर द ऑल ऑफ द अबव। तो ये कहना है लोगों का, यानी कि काफ़ी कॉमनली यूज्ड शब्द है सॉरी, जहां पर लोग दिन भर किसी ना किसी से अपोलोजाइज करते रहते हैं। ऑन एन एवरेज बताया जाता है कि इस शब्द को शायद कोई एक पेशेंट ऑलमोस्ट 9 times पर डे यूज़ करता है, और अक्सर कई बार जब आप एक्सीडेंटली या अचानक से किसी के रास्ते में आ जाते हैं आउट ऑफ अ कोना, तो आप कहते हैं सॉरी। और इसके साथ में अगर जो आप किसी को किसी ने आपसे कुछ कहा है और आपने सुन नहीं पाया, तो आप ये भी कहते हैं सॉरी। तो एक अलग तरीके से कि आपने सुना नहीं, आप इसको दोहरा दें ताकि आप इसको समझ सके, और एक पोलाइट रिक्वेस्ट की तरह भी सॉरी कैन आई जस्ट यूज़ दिस आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक एक्चुअल अपोलॉजी के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, विच इज़ द ओरिजिन ऑफ इट। इसके साथ साथ में कई जगहों पर इसको यूज़ किया जाता है, ब्रिटेन में काफ़ी हद तक इसे यूज़ किया जाता है। क्या आपको मालूम था कि जापान में जो ट्रेन ऑपरेटर्स होते हैं, अगर जो इनकी ट्रेन डिले हो जाती है, जो बुलेट ट्रेन्स, बाय एटलीस्ट 30 seconds, तो ये निकल कर आकर जो ट्रेन ऑपरेटर है प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर लोगों से अपोलोजाइज करते हैं विद द हम्बल बाव। तो ये सभी कुछ दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, कनाडा में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। तो वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन वर्ड्स ग्लोबली इज़ सॉरी, ये मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था। तो अगर जो आपको भी किसी से कहना है, तो लोग ग्लोबली कहते हैं भाई, तो आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? आपको भी अगर जो जहाँ बनता है तो कहना है तो कह दीजिए, क्योंकि वीकेंड है ना, हम नहीं चाहते कि आप किसी तरह से एक दूसरे से खफा खफा रहे। तो सॉरी इज़ द वे टू बिगिन इट। तो ऐसे में यही शब्द है आज आपके लिए, जो हमने बताया कि काफ़ी हद तक लोग इसको इस्तेमाल करते हैं।

हम पर मैं हूँ आपका साथी अवि, और आपको मालूम है कि रोवा पर रहने से आपके ढेर सारे फायदे हैं, जिनमें चैटल भी है और इसके साथ में हम म्यूजिक स्टेशंस भी हैं, जहां पर आप अपने मन पसंद जो गाने हैं 60s 70s के, ये सुन सकते हैं हम रिवाइंड में। उसके साथ में 80s के जुग बॉक्स है, ये सभी कुछ आप सुन सकते हैं हम 80s जुग बॉक्स में। इसके अलावा जो फिजी भजन है यहाँ पर, ये भी रखे गए हैं आपके लिए, और जितने भी हमारे पंजाबी हिट्स के फैंस है, चढ़दी कला आपके लिए स्टोर किया गया है, ताकि आप यहाँ पर जाकर इन गानों को एंजॉय कर सके। इसके अलावा फिजी कीर्तन संग्रह, जहाँ पर मशहूर फिजी के आर्टिस्ट हैं जो अपने अपने आवाज़ों में कीर्तन, भक्ति रस कीर्तन को गाते हैं, इनके कीर्तनों को भी यहाँ पर स्टोर किया गया है, ताकि आप किसी भी समय अपने कन्वीनियंस पर इसे एक्सेस कर सकें। साथ में राहत फ़तेह अली खान, इनके जो सूफ़ी और कवाली है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं ओनली ऑन रोवा। और इसके साथ में अभी थोड़ी देर में आपके साथ में बताएंगे, आपको शेयर करेंगे कि कैसे आप चैटल खेल करके अपने आप को एक विनर ठहरा सकते हैं, बस थोड़ी देर में।

0: यह है ब्रेकफास्ट शो, मैं हूँ अभी आपके साथ में। और लगे हाथ आपको बता दूं कि काफ़ी लोग अभी से ही अप्लाई कर रहे हैं सिटीज़नशिप के बारे में, जबकि आपने सुना होगा इस वीक ये पता लगा था कि एक नया सिटीज़नशिप जो टेस्ट है ये 2027 से ये अप्लीकेबल हो जाएगा, जहां पर अगर जो आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टेस्ट टॉपिक्स है इसके बारे में जब बातें हुई तो कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं कि कुछ 15 से 20 क्वेश्चंस आपको करेक्टली आंसर करने पड़ेंगे टू पास। और जो टॉपिक्स होंगे इनमें बिल ऑफ राइट्स एक्ट, साथ में क्रिमिनल ऑफेंसेस, साथ में वोटिंग राइट्स और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में बातें, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर जो आप अवॉइड करना चाहते हैं ये टेस्ट देने से 2027 से, जबकि इसकी शुरुआत हो रही है, तो अभी से आपके पास में मौका है, आप अभी ही अप्लाई कीजिए अगर जो आप क्वालिफाई होते हैं, ताकि आप इस टेस्ट से बच सके। अगर जो यू फील कि आप इस टेस्ट से आपको थोड़ी प्रॉब्लम या परेशानी हो सकती है, तो ये इन इफ़ेक्ट आ रही है नेक्स्ट ईयर से। और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ हैं जहां पर टेस्ट दिए जाते हैं टू गेन सिटीजनशिप, इनमें यूएस, साथ में ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे कंट्रीज़ हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी इस वीक के लिए, जहां पर हम जानते हैं लोगों को अक्सर परेशानी हो जाती है ना जब टेस्ट के बारे में बात होती है। तो यहां पर सिटीजनशिप लेने के लिए ये टेस्ट अब 2027 से अप्लीकेबल हो जाएगी।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
2: कभी भी कहीं भी।
3: एटीज के रेट्रो गाने

0: Saturday breakfast on Hum.
1: Yo, main hoon chhota sa chhora.
2: You're listening to Avineet.
3: जी हाँ, 8:30 बज चुके हैं और आप शायद ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. आपको शामिल करते हैं, ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो 104.2 FM साथ में रोवा पर. और जी हाँ, रोवा पर जब बातें करते हैं तो चिड़ल

जी हाँ, हम पर यह है सैटरडे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शो। मैं हूँ अभी आपके साथ में, और आपको पता ही होगा कि राहत फतेह अली खान अब आ रहे हैं ओकलैंड, जबकि इनका जो कॉन्सर्ट रहेगा 25th ऑफ जुलाई को रहेगा एट द ट्रस्ट अरीना, जिनको ला रहे हैं आप तक जेके स्टार प्रोडक्शन साथ में गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन साथ में शहजादा प्रोडक्शन। अगर जो आपको टिकट चाहिए एक ऐसे इवनिंग के लिए जो बिल्कुल सोलफुल और सूफी रहेगी आपके लिए, सूफियाना अंदाज में राहत फतेह अली खान, जिन्होंने बॉलीवुड के लिए भी काफ़ी हिट हिट नगमे गाए हैं, और एक अलग दुनिया के इनकी आवाज़ है, दुनिया जहान से अलग। और इसके लिए अगर जो आपको टिकट्स चाहिए तो dryticketsdotcom से आप अपने टिकट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर जो आपको शानदार मौका दे दे डबल पास जीतने के लिए तो कैसा रहेगा बताइए। तो ये मौका अब आपको देने जा रहे हैं, आपको सिर्फ ये एक क्लिप जिन्हें राहत फतेह अली खान ने गाया है ये सुनना है, और आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इस गीत का जो ओपनिंग लाइन है यानी कि टाइटल क्या है, और उतना ही अंदाज़ा लगाकर आपको RFK के साथ में अपने जवाब को 5599 पर भेजना होगा अभी के अभी। तो इस क्लिप को सुनिए, और सुनने के बाद में ये अंदाज़ा लगाइए कि इस गाने का जो ओपनिंग लाइन है ये क्या है, और RFK यानी कि राहत फतेह अली खान यानी कि RFK लिखकर अपने जवाब को 5599 पर ज़रूर भेजिए, ताकि आपके नाम को ड्रॉ में शामिल कर सकें। तो चलिए आपको सुनवाते हैं ये क्लिप, और सुनने के बाद में इसके जो ओपनिंग लाइन से या फिर इस गाने के जो टाइटल है इसका जवाब हमें ज़रूर भेजिएगा 5599 पर।

जी हाँ, तो ये हमने आपको सुनवाया और आपको बताना होगा कि इस गाने का जो ओपनिंग लाइन है या फिर इस गाने का जो टाइटल है ये क्या हो सकता है। 5599 पर ही आपको अपना जो जवाब है अभी के अभी भेजना होगा ताकि आपके नाम को ड्रॉ में शामिल कर सकें और फिर आपके हाथ अगर जॉब विजेता ठहरे तो लग सकता है जो डबल पास है राहत फतेह अली खान को लाइव देखने का। तो जिनी तो काफ़ी क्विक थी, जिनी ने अपना जवाब भेज ही दिया है क्योंकि काफ़ी बड़ी फैन लगती है और क्यों ना हो भाई, राहत फतेह अली खान की बातें हो रही हैं। तो चलो एक बार फिर आपको सुनवाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा लग सके।

राइट, बस इतना ही सुनवाएंगे और आपको अपना जवाब 5599 पर भेजना होगा और जितने सही जवाब होंगे उनको ही मौका लगेगा ड्रॉ में शामिल होने के लिए। एक हो

0: 15 मिनट बाकी है 9 बजने में, ओसम अवी का साथ है और 9 पर आपके लिए होगा मस्ती मीटा, जहां पर कुछ ना कुछ हंसी के फुहारे आपके लिए लेकर आएंगे। ये सभी कुछ बस सुनते रहिएगा हम पर, चिल कीजिए हमारे साथ में एंड कीप हमिंग।
1: टोस्ट कॉफी और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू, सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: Danny didn't think he needed a DVS system.
4: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
3: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
4: Nah, only one room. It was just too noisy.
3: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
5: It's nesting season at Freedom. Save up to 50% off selected sofas, furniture and mattresses. That's up to 50% off. Hurry, sale ends Monday. Only at Freedom.
6: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a shower dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every shower dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
7: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full price pieces and receive a third one free, just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May, in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
8: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
9: Give mum the gift of sport with epic deals from Rebel, like 30% off Lorna Jane and 30% off running and fitness accessories. Or give mum the choice with a Rebel gift card. End Sunday at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
1: The beat of Bollywood.
10: World's best, hamari koi branch nahi hai. Hum.
1: Saturday breakfast on Hum.
11: Yo. Main hoon chhota sa chhora.
1: You're listening to Avineet.
0: जी हाँ, अभी का साथ है और आपको बता दें, जबकि राहत फतेह अली खान प्रमोशन में काफ़ी लोगों ने भाग लिया है, सुनीता ने अपना मैसेज भेजा, साथ में रचना ने भी पार्टिसिपेट किया है, ये मौका आपके पास में था। और इसके अलावा प्रतीका, आपका भी जवाब मिला और आने वाले शोज़ में आपको ऐसे ही ढेर सारे चांसेस दिए जाएंगे ताकि आप इनमें शामिल होकर जो डबल पासिस का हमने वादा किया है इसे आप जीत सकते हैं। एक और एक प्रमोशन है जिसके बारे में बातें करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये है हम फ्लाई अवे फ्रेंजी। और यहाँ पर आपको रिटर्न ईयर टिकट मिल सकता है टू माय आइलैंड पैराडाइज फिजी। जी हाँ बिल्कुल, अगर जो आप इसमें जीतते हैं तो सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो रिटर्न ईयर टिकट्स टू द पैराडाइज इन द आइलैंड्स फिजी का आपको मिल सकता है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, जो कोड वर्ड्स आपको वीकडेज में दिए जाते हैं, सुबह 8 पर, दिन में 11 बजे और साथ में दोपहर 1 बजे, शाम को 5 बजे, विद इन 60 मिनट्स आपको रोवा पर ये कोड वर्ड्स डालने होते हैं अंडा हम फ्लाई अवे फ्रेंजी। और इतना ही करके आप अपने नाम को रजिस्टर कर वालते हैं इस प्रमोशन में, जहां पर आपको ये टिकट्स मिल सकते हैं। ये सभी कुछ हमारे साथ में 9 पर, आपके लिए मस्ती मीठा भी रहेगी।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन

0: Saturday breakfast on Hum. Musti meter on Hum.
1: Yo.
0: You're listening to Avineet.
2: जी हाँ, 9:01 मिनट हो चुका है. वी आर हाफ वे थ्रू द शो. और जबकि अब पड़ाव आ गया है मस्ती मीटर का, जहाँ पर हफ्ते भर की भागम दौड़ के बाद में, जी हाँ, भाग दौड़ के बाद में आपको एक ऐसा दिन, वीकेंड मिलता है जहाँ पर आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड होते हैं. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को रिलैक्स करते हुए, हंसते हुए अपना दिन जो है ये बिताए. यही कोशिश लेकर हम आते हैं ताकि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ जो हैं ये बांटते रहें. तो मस्ती मीटा का ये पड़ाव शुरू हो चुका है. और हंसी के बारे में ये कहते हैं कि हंसी और खुशी को बैंक में FD मत करवाओ, इसे करंट अकाउंट की तरह रोज़ खुलकर लेन देन किया करो. और हंसी के बारे में ये भी कहा गया है कि हंसी को ज़रा हंस कर तो देखो, यानी कि अगर जो आप मीरा के सामने हो तो थोड़ा मुस्कुरा कर अपने आप को चेकआउट कीजिए, क्योंकि आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं. जो आपके दांत हैं ना, ये हमेशा चमकते और दिखते रहने चाहिए. इसी नोट पर जो मस्ती मीठा है इसकी शुरुआत करते हैं, और थोड़ी देर में आपको कुछ ना कुछ क्लिप हमेशा की तरह सुनवाएंगे.

0: हम्बर मैं हूँ अभी आपके साथ में और यह है मस्ती मीठा। जब भी आप सैटरडेज को शॉपिंग करने जाते हैं ग्रोसरीज के लिए तो सभी का एक अलग अलग तरीका होता है मोल भाव करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए। मेरा अक्सर ये रहता है कि जब भी मैं चेकआउट काउंटर पर होता हूँ और अगर जो किसी भी सामान का बारकोड अगर जो नहीं रीड करता है तो मैं हमेशा कह देता हूँ कि दिस इज़ सपोज टू गो फॉर फ्री। और आगे से जो काम करने वाले हैं ये भी मुस्कुरा देते हैं, या फिर दिन में पता नहीं कितनी बार ये लाइन ये सुनते होंगे, हु नोज़। लेकिन आपको बता दूं, अगर जो आप कहीं पर शॉपिंग कर रहे हैं और आपको किसी ने सेव किया है और वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं तो आप भाव करते हुए ये भी बोल सकते हैं कि अगर जो कोई कम मुस्कुरा रहा है, लुक्स लाइक यू हैव ड्रॉप समथिंग, अगर जो वो पूछे जवाब में क्या, तो आप कह सकते हैं अपनी स्माइल। तो ये सभी कुछ करते हुए आप हंसते मुस्कुराते हुए अपने दिन को बिता सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल चिल रहे जबकि सरडे है, ऐसे में वीकेंड को अपने एंजॉय करें। लेकिन चलो देखते हैं एक बार कि जो मोल भाव करते हुए एक तरीका और भी है जहां पर प्रोडक्ट के बारे में एक सजेशन कोई दे रहा है। तो कलाकार तो परेश रावल ही है, लेकिन आपको ये बताना होगा कि किस करेक्टर का अंदाज इन्होंने पकड़ा है इस क्लिप में।
1: ए बाबा, ये केला कितने का दिया?
2: 20 रुपए दर्जन है, 20 रुपए।
1: बिना छिलके का बोल रहे? बिना छिलके का।
2: अरे भाई
0: हाँ भैया, बिना छिलके का केला लेने वाले हैं। और आपको पता है कि किस कलाकार, यानी कि कलाकार तो परेश रावल ही है, लेकिन किस करेक्टर का ये डायलॉग है और कौन सा ये करेक्टर है? काफ़ी रिलेटेबल है, जबकि ये केला खरीदने के लिए और जबकि इनके इनको दाम काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है तो ये सजेस्ट कर रहे हैं।
1: ए बाबा, ये केला कितने का दिया?
2: 20 रुपए दर्जन है, 20 रुपए।
1: बिना छिलके का बोल रहे? बिना छिलके का।
0: हाँ, तो बिना छिलके का ये केला लेने वाले हैं। और 555-5599 पर अपना जो मैसेज है आप भेजिए हमारे पास में कि किस करेक्टर का ये डायलॉग है अपने नाम के साथ में। और ये मस्ती मीठा है आपके साथ में, इसी तरह से हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस सफ़र को, इस आवक को स्पेंड करेंगे।

हम पर अभी का साथ है और जो क्लिप हमने आपको सुनवाया था ये हेरा फेरी से ही था और आपने सही जवाब दिया है 54285। साथ में सविता आपका भी जवाब आया, इसके अलावा ऋषे आपने भी सही जवाब पहचाना, आपने जवाब सही लिखा हमारे पास में भेजा है। मुकेश आपको भी थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। और कुछ और भी क्लिप्स बारी बारी से आपके लिए प्ले करते रहेंगे, ये सभी कुछ रहेगा मस्ती मीटर में।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
3: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
4: Get it sorted with Cheap As Deals. Grab a hot deal with over 30% off selected Nuvo hot water bottles, now just $9. And 10 centimetre Flora Viva flower plants, now only $2.50 each. Limited stock, Cheap As Deals. In Sunday at Mitre 10.
5: हम सब चाहते हैं कि रिसाइकल सही तरीके से हो, तो याद रखिए प्लास्टिक बैग, ड्रिंक कार्टन्स और पुराने लैपटॉप अपने रिसाइकल बिन में मत डालिए। रिसाइकल सही करें, ये आपके हाथ में है। सर्च ऑकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमाकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ऑकलैंड।
6: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
7: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
6: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
8: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मालूम सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
1: जी हाँ, ये सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम, मैं हूँ अभी आपका साथी। और जबकि आज है 9th of May, ऐसे में आपको बता दें कि मैं यहाँ पर न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ का महीना है जहाँ पर लोकल टैलेंट को हम बिल्कुल बैक कर रहे हैं विद बैक योर बैकयार्ड बीट्स, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इनके लिए जितने भी आर्टिस्ट का चयन हुआ है, इनके जो गाने हैं ये वीकडेज हम पर आप सुन सकते हैं सुबह 8 पर और 11 पर, साथ में दोपहर 2 पर, साथ में शाम 5 बजे और रात को 10 बजे आप इनके गाने को सुन सकते हैं। और अगर जो आप इनको सुनने के बाद में अपने वोट्स को कास्ट करना चाहते हैं तो 5599 पर कीवर्ड MM लिखकर आप जरूर भेजें ताकि आप अपने आर्टिस्ट को बिल्कुल सपोर्ट कर सके। तो जितने भी हमारे लोकल टैलेंट हैं इनके लिए ये एक मौका दिया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। और जी हाँ, जो विनर्स है ये डिसाइड होंगे टोटल एंगेजमेंट, साथ में रेडियो वोट्स और सोशल मीडिया पर भी जो इनको वोट्स मिलेंगे ये सभी ध्यान में रखे जाएंगे। तो आपके पास में ओरिजिनल म्यूजिक है तो आप अपने बायो के साथ में buzz@hum.fm.com पर जरूर भेजिए। और अगर जो आपको ये ईमेल आईडी टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में चाहिए तो MM लिखकर 5599 पर जरूर हमारे पास में टेक्स्ट कीजिएगा। कुछ आर्टिस्ट का जो चयन हुआ है इनमें हमारे खुद के केतन हैं, बड़ा ही बढ़िया गाते हैं। और केतन को आपने सुना होगा, हमने आज सुबह सुबह भी इनका एक गाना बजाया था। इनके साथ में AJ साउंड, अर्जुन ऑल्सो नोन एज द AJ साउंड, ये मुंबई की इनकी पैदाइशी है और न्यूजीलैंड में ये बड़े हुए हैं और सिंगर भी है, सॉन्ग राइटर, साथ में प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बड़े ही क्रिएटिव पर्सन हैं। और इनके साथ में एहफाज लालवानी, ये भी गाने में काफ़ी माहिर है। इसके साथ में योगी जो फगवारा पंजाब इंडिया से हैं और साथ में DJ चिली। तो ये कुछ आर्टिस्ट का चयन हुआ है, अगर जो आप भी इनमें जुड़ना चाहते हैं तो अपने ट्रैक को, ओरिजिनल ट्रैक को buzz@hum.fm.com पर ज़रूर भेजिए अपने बायो के साथ में। इन द मीन टाइम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो गाना अब की बार पेश करने जा रहे हैं इनको लिखा है विजय ने, हमारे हम के विजय ने। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक शहर के बारे में है जिसका नाम है रेकी रेकी फ्रॉम फिजी। वेस्टर्न डिवीज़न का ये शहर है रेकी रेकी और यहाँ के रहने वाले विजय, जबकि आज ये न्यूजीलैंड हम में एक अध्यक्ष है, इन्होंने अपने बचपन को कहीं ना कहीं शायद महसूस किया होगा, साथ में उसकी खुशबू को पकड़ करके अपने कलम से कागज पर उतारा है। तो चलो इसको भी सुनते हैं और इसे इंजॉय करते हैं।

0: आप सुन रहे थे सोनू निगम साथ में अलका याग्निक को एक ब्यूटीफुल नंबर ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। और अगर जो आपको आप घर पर है प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं और या फिर आप रास्ते पर है आप अपने कंपेनियन के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, मैंने तो ट्रबल ही कह दिया आप अपने कंपेनियन के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप अपने कंपेनियन को एक नज़र देखिए और क्या आपको पता है कि घर में जो रूल्स होते हैं, जो कानून होते हैं, ये आपके फ़ायदे के लिए होते हैं या नहीं। तो चलो घर पर अगर जो हस्बैंड एंड वाइफ की जोड़ी है तो ऐसे में कुछ कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनका पालन या फिर उनको फॉलो करना ज़रूरी है। क्या आप इनसे अग्री करते हो? 5599 पर ज़रूर अपने जो राय है ओपिनियन से ये भेजिएगा। जबकि एक हास्य कवि आ रही हैं आपके बीच में, आयुषी ये लेकर आ रही हैं एक हास्य कविता जिसे आप सुनकर शायद आप भी कहीं ना कहीं मुस्कुरा ही देंगे।
1: पत्नी से कभी भी झूठ ना बोलें क्योंकि सच क्या है वो जानती।

0: सच क्या है वो अपना पता लगा लेगी। अगर पत्नी बोल रही हो, अगर पत्नी बोल रही हो तो बीच में ना बोले, और अगर पत्नी चुप है तो भूल कर भी ना बोले।
1: हाँ भाई, तो ये सभी कुछ कानून है कि अगर जो पत्नी चुप है तो आप भूल कर भी ना बोले। ये कुछ आयुषी बता रही थी हास्य कविता में। और अगर जो किसी की माने तो, किसी ने एक समय कहा था कि अगर जो सबसे अच्छे जासूस होते, अगर जो ये लेडीज़ होती तो ये, अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग CID होती तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से जासूसी कर पाती। अगर जो आप इससे सहमत है तो आप लिख कर भेज सकते हैं 5599 पर, और नहीं सहमत है तो वो भी आप बता सकते हैं हमारे पास में टेक्स्ट करके। ये तो मस्ती मीठा है और यहाँ पर जो हंसी मजाक है ये आपके साथ में हम करते ही रहते हैं।

0: हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी, और जबकि मस्ती मीठा के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कॉमेडी के बारे में बात करते हैं, अक्सर कॉमेडी जो है ये बेस्ड होती है कॉमेडी ऑफ एरर्स, यानी कि कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी होती है या फिर कोई सिचुएशंस को लेकर कुछ कन्फ्यूजन या कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसी से कॉमेडी उठकर आगे आती है। मिस्टेकन आइडेंटिटी के बारे में जब बात करते हैं तो पहले एक फिल्म आई थी अंगूर, जहाँ पर टू सेट्स ऑफ ट्विंस की आपस में अदला बदली हो जाती है। लेकिन अभी के लिए जबकि मिस्टेकन आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी कंफ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं, आप ये क्लिप सुनिए और बताइए कि कौन से ऐसे कौन एक्टर है जो टेलीफोन पर बातें कर रहे हैं। 5599 पर अपना जवाब जरूर भेजिएगा हमारे पास में। ये क्लिप सुनिए और बताइए कि कौन से एक्टर है, अब तो हमारे बीच में नहीं रहे, अभी हाल ही में आपने इनको देखा है कॉमेडी करते हुए बिग स्क्रीन पर, लेकिन ये बातें कर रहे हैं टेलीफोन पर इस क्लिप में। आप इनका आवाज से इनको पता लगाइए कि कौन है ये, और इनका नाम हमारे पास में 5599 पर जरूर टेक्स्ट कीजिएगा।
1: 5 किलो की शादी नहीं है, 10 किलो की शादी चलेगा। शादी की बात कौन बोला? अबे साले तू अभी बोला ना शादी करनी है तेरी बहन की, तू बोला।
2: सर जी मैंने बोला मेरी बहन की शादी, मेरी बहन की शादी।
1: तूने बोला? सॉरी सॉरी,
3: पेंट।
1: हाँ पेंट का 10 किलो का डिब्बा चलेगा ना? हाँ ठीक है, तो लाइन पे रहो, बताता हूँ अभी। हाँ चलेगा, भेज दे। हाँ भाई, हाँ तो तू, तेरी माँ की शादी?
4: मेरी माँ बेहोश हो गई
2: है शादी की।
0: हाँ तो ये कन्फ्यूजन चल रही है इस सीन में, और आपको पता लगाना होगा, आपको सिर्फ बताना होगा 5599 पर कि कौन एक्टर है जिनको टेलीफोन पर बातें करते हुए काफी कन्फ्यूजन हो गई है।
5: लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है, मस्ती मीटर के साथ।
6: Ladies and gentlemen,
5: unfiltered with Sandy and Rusbe, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real, और conversations होते हैं बिना mask के।
7: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
5: Unfiltered with Sandy and Rusbe on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
8: Cooking का असली flavour चाहिए? Switch to Kashish Foods Ginger Garlic Paste, freshly ground in New Zealand, bina added chemicals, bina preservatives and vinegar free. Sirf clean, natural taste, bilkul ghar jaisa. Ginger ho, garlic ho ya perfect combo, har dish banegi full of flavor. Aur ha, buy any Kashish dosa batter, any size, aur pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer, 31st May tak. Kashish Foods, eat better, live better.
9: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
10: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
11: Awards to Indelible Homes.
10: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
12: Kahani of Indelible Homes.
13: Make your budget stretch further with Mitre 10. Freshen up the walls with Accent Interior Paint 10 litre, now $119. Plus get 20% off assorted Nuvo tapware. T's and C's apply. Grab these great deals and more in-store or online at Mitre 10.
14: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
15: Mum's the word, and Briscoe's is the place to send them this Mother's Day weekend. With a mum-believable 30 to 50% off store-wide and incredible savings on gifts. Mum's the word, and Briscoe's is the place. See online for T's and C's.
16: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
5: Bollywood ka asli blockbuster.
17: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
5: Playing Bollywood's biggest hits. Ye hai Masti Meter.
1: Hello, Ramchand. 5 kilo ki shaadi nahi hai, 10 kilo ki shaadi chalega. शादी की बात कौन बोला? अबे साले तू अभी बोला शादी करनी है तेरी बहन की, तू बोला।
2: सर जी मैंने बोला मेरी बहन की शादी, मेरी बहन की शादी।
1: तूने बोला? सॉरी सॉरी,
3: पेंट।
1: हाँ पेंट का 10 किलो का डिब्बा चलेगा ना? हाँ ठीक है, तो लाइन पे रहो, बताता हूँ अभी। हाँ चलेगा, भेज दे। हाँ भाई, हाँ तो तू, तेरी माँ की शादी?
4: मेरी माँ बेहोश हो गई है।
0: तो ये कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है मस्ती मीठा में। अगर जो आपको पता लगा है कि किस एक्टर को कन्फ्यूजन हुआ है फोन पर बातें करते हुए, तो आप अपना जवाब 5599 पर जरूर भेजिए और इसके बारे में और भी बातें करेंगे। लेकिन अंदाजा लगाइए कि किस कलाकार को ये कन्फ्यूजन हुआ है। अब तो ये हमारे बीच में नहीं रहे, एक बड़े ही दिग्गज कॉमेडी एक्टर, साथ में अभी हाल ही में आपने इनको एक पिक्चर में देखा है और इसी एक्टर लीड एक्टर के साथ में देखा है भूत बंगला में। तो अगर जो आपको पता है कि किस कलाकार को एक्टर को ये कन्फ्यूजन हुआ है, तो उनका नाम जरूर हमारे पास में 5599 पर भेजिए और इस सीन को लेकर और भी बातें करेंगे आपसे।

0: Baby, ko best pasand hai.
1: Toast, coffee aur hum ka energy.
2: Subah ho gayi mamu.
1: Saturday breakfast on hum. Masti meter on hum.
3: That's right, ये था मस्ती मीठा आपके लिए. और आपको बता दूँ, जो क्लिप हमने आपको सुनवाया था ये असरानी जी के आवाज़ में ही थी, और अब तो हमारे बीच में नहीं रहे और काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया. प्रतीक, आपका जवाब मिला इसके साथ में. 8115 आपने भी सही पहचाना. 9181 आपका भी जवाब हमारे पास में आया. 2115 थैंक यू सो मच, आपने भी सही पहचाना कि ये असरानी की ही आवाज़ थी. और इसके साथ में राहुल आपका मैसेज आया है, ज्योति आपका भी मैसेज मिला. और अगर जो बातें करें इस सीन के बारे में, आप इसे यूट्यूब पर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इस सीन की खासियत यह है कि इट्स अ वन टेक सीन. इस सीन को फिल्माया गया है वन टेक में विदाउट एनी कट्स. तो अगर जो आप देखेंगे, एक तरफ तो कन्फ्यूजन है असरानी को टेलीफोन पर कन्वर्सेशन को लेकर, उसके साथ साथ अक्षय कुमार पहुंच जाते हैं कुछ लोन लेने के लिए, वो दूसरी ओर की कन्फ्यूजन है. और एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर एक्टर जो लोन मांग रहा है अपने मम के लिए, अपने मादा के लिए. तो ये तीन तरह की कन्फ्यूजन है और इसको फिल्माने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा, जबकि यू हैव टू मेक द मिस्टेक्स एट द राइट प्लेसेस. तो ये सभी कुछ अगर जो आप इसे चेकआउट करना चाहते हैं खट्टा मीठा से, इसे आप यूट्यूब पर ज़रूर देख सकते हैं. तो आज के लिए मस्ती मीठा को यहीं पर रैप अप करते हैं और अब अगले घंटे पर 8:10 आफ्टर न्यूज़ आपके लिए हो जाएगा शुरू. जुगाड़ जंक्शन.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: What kind of businesses run on business fiber? Businesses with no time for downtime, businesses that could flatline when deadlines are missed, and businesses that simply can't afford to be offline. If you need fast restoration when there's a network outage, get your business running on business fiber.
6: Gaadi chalti rahe, tension

0: your Saturday fresh with the perfect mix.
1: Saturday breakfast on Hum.
0: Saturday breakfast me. Hum aaye hain Jugaad Junction par.
2: Aa gaya.
0: You're listening to Avineet.
3: हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी और जबकि 10:02 हो चुके हैं तो ये है जुगाड़ जंक्शन जहाँ पर हम बातें करते हैं कुछ ऐसे से तरकीबों की जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे इसके साथ साथ में कम प्रेशर आपके जेबों पर पड़ाए आपके पॉकेट्स पर पड़ाए यानी कि आप पैसे भी बचा सके लेकिन इसके साथ में कुछ लाइफ हैक्स का भी इस्तेमाल कर सके ये सभी कुछ आपके साथ में रहेगा अगर जो आपके पास में भी कोई टिप है तो 5599 पर हमारे पास में ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा ताकि और लोग भी इसे जाने और लेकिन अभी थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आएंगे कि कैसे क्यों आपको अपने एयरपोर्ट्स साफ करने चाहिए और कैसे करने चाहिए इसके बारे में बात करेंगे बस थोड़ी देर में लेकिन इन द मीन टाइम आपको सुनवाते हैं विशाल मिश्रा को

हम पर यह है जुगाड़ जंक्शन और मैं हूं अभी आपके साथ में। अगर जो आप एयरपोर्ट्स के मालिक हैं, जो कि ज़्यादातर के लोग होते हैं और अभी तक आपने शायद कुछ दिन हो गए इनको साफ नहीं किया है, तो बिल्कुल ये ड्यू फॉर क्लीनिंग है, क्योंकि यहां पर एयरपोर्ट्स में बताया जाता है कि काफ़ी आसानी से डस्ट और डर्ट इकट्ठा हो जाते हैं और जब तक आप इनको क्लीन नहीं करेंगे ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इनके बिना क्लीन किए हुए आपको ये इन्फेक्शन हो सकते हैं, साथ में फंगल और ऐसे अन्य इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इनको क्लीन करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। अक्सर हम जब जिम में यूज़ करते हैं इसको ना, तो स्वेट के कारण कानों से और इस एयरपोर्ट्स में काफ़ी बैक्टीरिया ईजिली फॉर्म हो सकते हैं। तो आपको अपने हेडफोन्स और केस को साफ़ करने के लिए एक माइक्रोफाइबर क्लोथ चाहिए। बिल्कुल जेंटली आप इसको क्लीन करें बाहर से। इसके साथ में एयरपोर्ट्स को खास करके डर्ट और एयरवेक्स रिमूव करने के लिए आपको कॉटन बस की ज़रूरत होगी। तो जब आप इसको साफ़ कर रहे हो तो ख्याल रखिएगा जहाँ पर स्पीकर है यहाँ पर मेश जो मटेरियल है ये, तो हल्के हल्के से आप अपने कॉटन बस को इस्तेमाल करते हुए उसको साफ़ करें और इतना ही करके आप अपने एयरपोर्ट्स को बिल्कुल न्यू और रिफ्रेश कर सकते हैं। आपके पास में भी कुछ टिप्स है तो 5599 पर ज़रूर हमारे पास में भेजिएगा कुछ और नुस्खे और साथ में कुछ जुगाड़ आपके लिए बस थोड़ी देर में लेकर आएंगे।

हम पर मैं हूं आपका साथी अभी 104.2 एफएम साथ में रोवा ऐप पर आप मुझे सुन रहे हैं। और आपको बता दे जुगाड़ जंक्शन में आपको क्या आपने कभी प्रिवेंटिव केयर के बारे में सुना है? जी हां, एक ऐसी केयर जहां पर आप अपने आप को खुद को इंजा करने से पहले यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यानी कि प्रिवेंटिव केयर। और इसके बारे में बताते हुए आपको ये जो स्टेप्स है मैं बताने जा रहा हूं, इससे आपको अपने कायरो के पास में कम जाना पड़ेगा, अपने फिजियो के पास में शायद कम जाना पड़ेगा। आपको सिर्फ क्या करना होगा, सबसे पहला पहल अपने पोस्चर को इम्प्रूव करना होगा। हम में से काफ़ी लोग हैं जो दिन भर शायद ज़्यादा देर तक बैठे ही रहते हैं या फिर खड़े ही रहते हैं। ऐसे में अपने पोस्चर को वाल स्टैंडिंग या फिर सिटिंग बिल्कुल ख्याल में रखिएगा। इसके साथ में कीप अ फोम रोला हैंडी एट होम। जी हाँ, फोम रोला बिल्कुल अपने घर पर रखिए, ताकि जब भी कहीं भी आपको दर्द उठने से पहले हर शाम को आप थोड़ी देर के लिए इस फोम रोला का इस्तेमाल करें अपने बैक के नीचे या फिर अपने लेग के नीचे। इसके साथ साथ आपके लिए अगर जो हो सके तो अपने स्लीप पोजिशन को भी बिल्कुल एडजस्ट कीजिएगा, और बीच बीच में स्ट्रेच भी करना ज़रूरी है। यानी कि आप अगर जो एक्सटेंडेड आवर्स तक बैठते हैं डेस्क पर, तो एवरी 45 मिनट्स टू एन आवर आप ज़रूर ब्रेक लीजिए और थोड़ी देर के लिए आप स्ट्रेच ज़रूर करें। ये सभी कुछ करते हुए आप शायद कम बार आपको जाना पड़ेगा अपने फिजियो या फिर कायरो के पास में।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
3: कर रहा हूँ? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 AM.
5: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदो वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 grams जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 May तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
6: Get Mum a gift she'll love for money.
7: We've got plants, the hanging baskets, the seedlings. We've got a really good range of coloured pots as well. This year, give a Mother's Day gift that keeps on growing.
8: 14-centimetre Calathea prayer plant, only $26.87. Fiskars Ruby Bypass Pruners, $36.95. Northcote Pottery 20-centimetre Paloma Egg Pot, just $19.98.
7: Pop into Bunnings and find something she'll love. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
9: From the age of 10, I knew you would come. I didn't know when, but you arrived. Almost identical twins, but not quite. One just slightly bigger than the other, but you are the bravest part of me. The older I get, you're not always first into the room, but sometimes, if I give you the support you need, you'll be first into the room. You're close to my heart, and I love you. My name is Ursula Carlson, and this is a love letter to my breast.
10: Get to know yours, visit breastcancerfoundation.org.nz.
11: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy 2 full price pieces and receive a third one free, just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May, in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
12: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
13: Indelible Homes, your building expert.
14: Mum's the word, and Briscoe's is the place to send them this Mother's Day weekend. With a mum-believable 30 to 50% off store-wide and incredible savings on gifts. Mum's the word, and Briscoe's is the place. See online for T's and C's.
15: Playing Bollywood's biggest hits.
0: Saturday breakfast me. Hum aaye hain Jugaad Junction par.
16: जी हाँ, ये है जुगाड़ जंक्शन, और जबकि हम पर अक्सर वीकेंड्स पर आपके लिए स्पोर्ट्स अपडेट्स भी लेकर आते रहते हैं, तो सुपर रग्बी के कुछ खेल हुए कल, जहां पर क्रुसेडर्स की जीत हुई ब्लूज से 36-20 से। इसके साथ में चीफ्स ने रेड्स को 31-21 से हराया। इसके साथ साथ कुछ खेल आज भी रहेंगे, जहां पर 4:35 PM हाइलैंडर्स और वोराटास के बीच में मैच रहेगा। साथ में रात 7 पर मोना पैसिफिका टेक्स ऑन हरिकन्स। इसके साथ में लेट एट 9:35 PM टुनाइट ब्रम्बीज टेक ऑन फोर्स। तो ये सभी कुछ जो खेल है इस वीक के लिए है, जहाँ पर फिजियन ड्रोआ बिल्कुल बाय है, और इसके साथ में ब्लूज की एक हार हुई है क्रुसेडर्स के खिलाफ। इसके बाद में थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आएंगे EPL की दुनिया से, इंग्लिश प्रीमियर लीग की दुनिया से, जबकि इट्स अबाउट टू फिनिश ऑफ ये जो सीज़न है, इसके बारे में और भी कुछ रिजल्ट्स और फिक्चर्स के बारे में आपसे शेयर करते हुए चलेंगे।

हम पर आप सुन रहे मुझे, मैं हूं अभी आपके साथ में। और ईपीएल में लिवरपूल और चेल्सी के बीच में आज रात 11:30 पर खेल होगा। इसके साथ में 2 पर टुमारो मॉर्निंग एट 2 फुलहम टेक्स ऑन बोर्नमाउथ, साथ में सन्डरलैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में उसी समय खेल रहेगा। ब्राइटन और वुल्व्स के बीच में सुबह 2 पर एक और एक इंटरेस्टिंग मैच ये रहेगा। इसके साथ में मैनचेस्टर सिटी और ब्रेंटफोर्ड के बीच में कल सुबह 4:30 पर खेल रहेगा। कुछ और मैचेस हैं जो शायद सोमवार को खेले जाएंगे, इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, फिक्स्चर्स है, ये आपके साथ में कल शेयर जरूर करेंगे।

0: यह सैटरडे ब्रेकफास्ट शो, मैं हूं अभी आपके साथ में, जबकि हम आपका फेवरेट बॉलीवुड डाल है और इसके साथ में ये जुगाड़ जंक्शन है। तो ऐसे में ये बॉलीवुड से न्यूज़ आपको बता दूं कि ईशान खतर, इनकी आने वाली फिल्म का नाम है जुगाड़ू। जी हां, इनको प्रेजेंट कर रहे हैं बावजह स्टूडियो साथ में टिप्स फिल्म्स, और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे पलाश वासवानी। और आने वाले दिनों में इसकी जो शूटिंग है पूरे पैमाने पर जारी हो जाएगी। एक ऐसी फिल्म जहाँ पर शायद ये कुछ ना कुछ जुगाड़ ज़रूर लगाएंगे। ये बॉलीवुड से कुछ नवीनतम जानकारी है जो आप तक हम पहुंचा रहे थे।
1: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स।
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब।

0: के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: What kind of businesses run on business fiber? Cloud thriving businesses, CGI building businesses, even big file sharing, video calling, meme sharing businesses. For uncompromising bandwidth and reliability, get your business running on business fiber.
2: ब्यूटीफुल हाउस प्लांट से लेकर हर वो चीज जो माँ को घर और गार्डन के लिए पसंद है, सब मिलेगा माइटन मेगा वेस्टगेट और हैंडरसन में। एवरीथिंग टू मेक मम स्माइल एक्सेप्ट द होममेड कार्ड, बट यू कुड लेट मम डिसाइड विद अ माइटन गिफ्ट कार्ड एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हैंडरसन।
3: Macca's weekly deals are back. That means more of your favorites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
4: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
5: This Mother's Day, Michael Hill is celebrating all kinds of mums. From the new mums, the stepmums, and even the pet mums. Celebrate Mother's Day with pieces she'll love forever. Make sure to visit Michael Hill online or in-store today.
6: Whitewear Super Sale is on now at Noel Leeming. Get up to 25% off whitewear and cookware. Plus, check out our finance options available. Conditions and exclusions apply. Whitewear Super Sale ends Tuesday 12th May. Only at Noel Leeming.
7: Hear that? That's the sound of discount day. Get 10 cents off per litre at Mobil when you want it, even on game day. Choose your discount day each week, only in the Mobil NZ app. Let's go. For a limited time only, T's and C's apply.
8: Give mum the gift of sport with epic deals from Rebel, like 30% off Lorna Jane and 30% off running and fitness accessories. Or give mum the choice with a Rebel gift card. End Sunday at Rebel Sport. See online for T's and C's.
9: Join the Great Big Balance Check at New World. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
10: Non-stop Bollywood.
11: Hum.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
12: जी हाँ, ये जुगाड़ जंक्शन है और कंज्यूमर एनजेड के मुताबिक आपको बताने वाले हैं एक्सटेंडेड वारंटीज के बारे में। जी हाँ, कुछ रिटेल जाइंट्स हैं न्यूजीलैंड में जो अक्सर आपको एक्सटेंडेड वारंटी कवा ऑफर करते हैं और हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ अपने आप को कवा करने के लिए इन एक्सटेंडेड वारंटी को अक्सर ले ही लेते हैं ज़्यादा दाम भर के। लेकिन कंज्यूमर न्यूजीलैंड का कहना है कि आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि अक्सर जो मैन्युफैक्चरर्स है, रिटेलर्स है, इनका काम होता है कि अपने प्रोडक्ट्स को गारंटी करे अंडर कंज्यूमर गारंटीज एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी अप्लायंसेस ऐसे होती है, खासकर जो महंगे वाले होते हैं, ये ऑलरेडी कवर्ड होने चाहिए कंज्यूमर गारंटीज एक्ट के नीचे। तो इसके ऊपर से एक्सटेंडेड वारंटी लेना काफ़ी समय पर ये अच्छी या फिर रीज़नेबल नहीं होती है। और एक्सटेंडेड वारंटी इज़ वर्थ कंसिडरिंग ओनली इफ़ अगर जो ये CGA यानी कि कंज्यूमर गारंटीज एक्ट से ज़्यादा कवर करती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप शॉप्स में जाए और अपने प्रोडक्ट्स को ख़रीदने से पहले आप सीधा उनसे डायरेक्टली ही पूछ सकते हैं कि इस एक्सटेंडेड वारंटी में क्या ऐसा कुछ है जो CGA यानी कि CGA में नहीं कवर्ड है, यानी कि कंज्यूमर गारंटीज एक्ट में नहीं कवर्ड है। तो इतना ही जानकर पूछकर जब आपको जवाब मिल जाए और आप सेटिस्फाई हो जाए अब उस जवाब से, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर टू बाय एक्सटेंडेड वारंटीज ऑन योर प्रोडक्ट्स और नॉट। क्योंकि कंज्यूमर न्यूजीलैंड का ये कहना है, ये दावा है कि अक्सर इनका जो वारंटीज है ये कंज्यूमर गारंटीज एक्ट के नीचे प्रोडक्ट पर होता ही होता है। तो ये सभी कुछ आपके साथ में शेयर करते हैं। जबकि मदर्स डे कल है तो शायद आज आप भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या फिर कुछ अपने मम के लिए खरीद रहे होंगे गिफ्ट की तरह। तो इसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखिएगा ताकि आप भी बिल्कुल अवेयर रहें कि क्या खरीद रहे हैं और क्या वारंटीज़ आपको लेने हैं।

हम पर 10 मिनट बाकी है 11 बजने में, एंड इट्स अ रेप फॉर जुगाड़ जंक्शन। जी हाँ, आज के लिए जुगाड़ जंक्शन को यहीं छोड़ते हैं एंड लुक फॉरवर्ड करते हैं अगले आवर पर, जबकि आपके लिए लेकर आएंगे देसी बिज शाउट आउट, जहाँ पर आपके लिए आपके बिजनेस को, होम बेस्ड बिजनेस को प्रमोट करते हैं ऑन एयर स्ट्रेट फ्रॉम 11 टिल 12। तो ऐसे में अगर जो आप चाहते हैं तो अभी से हमारे पास में अपने बिजनेस के बारे में मैसेज कर सकते हैं 5599 पर, और 11 के बाद में, जी हाँ 11 बजे के बाद में, आपके बिजनेस को बिल्कुल ऐसे ही प्रमोट करेंगे ताकि आपका जो बिजनेस है और भी उन्नति कर सके और भी तरक्कियों को छू सके।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Bro, look at you. Blue light screen ko itna ghoor hai, jaise wo tujhe promotion de dega. Aur ye coffee? Lukewarm. A taste bilkul heartbreak jaisa. Please sir, tu cubicle ke liye nahi bana hai. Tu beach ke liye bana hai. Tu life ko enjoy karne ke liye bana hai.
0: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: Get into Bunnings today and get cooking. Because you can pick up a Mistral 6.5-litre digital air fryer for just $69. But hurry, only while stocks last. Shop online or in-store at Bunnings
3: Warehouse. Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bacche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hai.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: To jaldi join karein to enjoy these special offers. Aur sabse khas baat, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. To deer mat kijiye. Call 0800 46 26 26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: With local grants, anytime you play a Lotto NZ game, it's a win for your local community. Because 100% of profits go back into wins across Aotearoa. Cheers, Lotto NZ players.
6: Reliance Ventilation System.
7: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
6: Moisture और ventilation का problem लगता है.
7: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
6: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
8: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18.
9: Time out!
10: Okay, Macca's new Dunk McCrispy is here. Juicy chicken dunked in Korean sticky barbecue sauce. Plus Macca's sauce doesn't miss. Available between 11 a.m. and 11 p.m. T's and C's apply.
11: You can enjoy a flexible personal loan with zero establishment fee when you apply for a GEM personal loan by the 19th of May 2026. GEM loans can be used for all kinds of things, like a new car, your dream holiday, a much-needed renovation, or simplifying debt. With weekly, fortnightly, or monthly repayment options available, apply online in under 7 minutes, and if approved, we'll waive the loan establishment fee. That's a saving of $240. Establishment fee waived until 19th of May 2026. T's and C's apply.
12: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI, on your side.
13: The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari good brands nahi hai.
13: Desi Biz shout out on Saturday Breakfast.
15: जी हाँ, समय की ओर देखते हैं तो इशारा करिए कि 11 बज चुके हैं. ऐसे में दिस इज़ द फाइनल आवर ऑफ अ शो टुडे, और अभी से लेकर 12 तक आपके लिए रहेगा देसी बिज शाउट आउट, जहाँ पर आपके पास में मौका है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए. और जस्ट बाय टेक्सटिंग अस 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर 0800 004 866 पर आप कॉल करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं हमारे साथ में, ताकि और लोग भी जान सके कि आप कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके आप कौन से इलाके में है, कौन से एरिया में है, इसके बारे में जानते हुए आपका जो क्लाइंटेल है ये इंक्रीज हो, आपका क्लाइंट बेस बिल्कुल इंक्रीज हो. तो याद रहे 0800 004 866 पर आप कॉल कर सकते हैं, इसके साथ में 5599 पर आप मैसेज भी कर सकते हैं. कई जगह पर ऑकलैंड में मौसम अभी बनते बिगड़ते नजर आ रही है. ईस्ट ऑकलैंड में शायद एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है, और इसके साथ में आपको मालूम होगा कि कल रात को साउथ आइलैंड में काफ़ी जगह पर बाढ़ इत्यादि चढ़ा था, सेफेस फ्लडिंग हुई थी. इस पर और भी जो जानकारी है 12 बजे वाले समाचारों में आपके लिए रहेंगे, लेकिन अभी के लिए एडवर्ड ये यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अगर जो फाइबर इंस्टॉलेशन चाहिए या फिर पावर रिलोकेशन चाहिए, वाटर स्टॉर्म वाटर सर्वेइंग के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं 0210907 1670 पर. याद रहे 0210907 1670 पर आप एडवर्ड को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगर जो आप इंस्टॉल कराना चाहते हैं फाइबर घर पर, तो इससे आप संपर्क करें एडवर्ड से और ये आप कर आपके जो सर्विसेज है प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ अगर जो आप होम बेस्ड बिजनेसेस करते हैं तो आप हमारे पास में 5599 पर ज़रूर मैसेज करें, या फिर आपके पास में कोई फ्लैट है टू लेट इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और अगर जो एक और देखें तो अरविना, ये मनुरेवा से इन्होंने मैसेज किया था, ये फिजी बेले लीव्स साथ में पान के पत्ते, पान लीव्स मनुरेवा से सप्लाई करती है, इनको आप 0211824371 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके पास में भी मौका है, आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, टेक्स्ट कीजिए 5599 पर, दिस इज द गोल्डन आवर टू डू सो। चलिए गाना सुनते हैं और फिर उसके बाद में जितने और मैसेजेस हमारे पास में आएंगे देसी बिज शाउट आउट में, आप अगर जो फोटोग्राफर है घर से फ्रीलांसिंग फोटोज लेते हैं, या फिर आप घर से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं, या फिर आप टीचर है आप ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ये सभी कुछ आपके लिए हम बिल्कुल वी कैन स्प्रेड द वुड फॉर यू। आपको सिर्फ टेक्स्ट करना होगा 5599 या फिर 0800004866 पर आप कॉल कर सकते हैं।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: जी हाँ, ये सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम, मैं हूँ अभी आपके साथ में और ये है देसी बिज शार्ट आउट का सेगमेंट। और ऐसे में इशू ने मैसेज किया है। इशू, अपना जो गेरा प्लम्बिंग लिमिटेड है, ये प्लम्बिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर जो आपको नीड है किसी भी प्लम्बिंग सर्विसेज के लिए तो आप इशू को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0221663379 पर। याद रहे इशू, गेरा प्लम्बिंग लिमिटेड 0221663379 पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं फॉर ऑल योर प्लम्बिंग नीड्स। इसके साथ में दीप, आपका एक और बार मैसेज आया है और आपने लिखा है कि आप जनरल इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स करते हैं, साथ में न्यू इंस्टॉलेशन, रीवायरिंग, ये सभी कुछ करते हैं। आप हाउस होल्ड अप्लायंसेस के भी मरम्मत करते हैं। इसके साथ में हॉट वाटर, सीसीटीवी, हीट पंप, ये सभी आप इंस्टॉल करते हैं। 10% डिस्काउंट अगर जो लिसनर्स मेंशन करेंगे दीप से हम FM, तो ये दे यू गो, देयर इज मोर डील्स। इसके साथ में 02111767778, आप अगर जो अपना मैसेज दोबारा कॉम्पैक्ट करके भेजे हमारे पास में, क्योंकि आपका मैसेज काफ़ी डिलीट हो गया, शायद ढेर सारा इन्फॉर्मेशन आपने भेज दिया है, इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके आप हमारे पास में भेजें ताकि आपके बिजनेस को हम प्रमोट कर सके। तो आप भी कुछ करते हैं घर से, टेलरिंग करते हैं या फिर किसी और कामकाज में फ्लावर्स बेचते हैं आज आप घर से, तो इसके बारे में भी आप 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि वी कैन गिव यू अ शाउट आउट ऑन एयर। ये सभी कुछ हमारे साथ में ओनली ऑन देसी बिज शाउट आउट। आपका सैटरडे ब्रेकफास्ट शो होस्ट मैं हूँ अभी आपके साथ में।

0: ईमान।
1: हम पर मैं हूँ आपके साथ में अभी, और यह देसी बीज शाउट आउट। आप भी अगर जो अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, होम बेस्ड खासकर बिजनेसेस है आपके, तो 5599 पर हमारे पास में आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर 0800004866 पर आप उन्हें आकर प्रमोट भी कर सकते हैं। ये सभी कुछ मौका आपको दिया जा रहा है। याद रहे, मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल रहती है, और ख़ास करके जबकि ओनिया पर आपको ऐसे ही हम की तरफ से आप सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेसेस को, कि ताकि आप अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ा सके। ये सभी कुछ मौका आपके पास में है टिल 12, ऐसे में पीछे मत हटिए। 5599 पर मैसेज कीजिएगा, या फिर 0800004866 पर आप कॉल करके अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, हमें प्रमोट कर सकते हैं।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर रवि का साथ है और ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो, जहां पर आपके लिए लेकर आए हैं देसी बिज शाउट आउट शिव। ये डेकिंग बनाते हैं, डेक्स बनाते हैं, साथ में फेंसिंग करते हैं, या फिर आपको बाथरूम अपग्रेड की ज़रूरत है तो आप इनको 0218819872 पर कॉल कर सकते हैं। फॉर एनी अदर रेनोवेशन वर्क आप करना चाहते हैं अपने घर पर तो शिव को आप कॉल कर सकते हैं 0218819872। तो शिव की तरह आप भी अपने बिजनेस के बारे में हमको बता सकते हैं ताकि ऑन एयर आपके बिजनेस को प्रमोट किया जाए। 5599 पर टेक्स्ट करके या फिर 0800004866 पर कॉल भी कर सकते हैं आप।
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
3: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel. Or tuck into beef enchiladas, tender pulled beef, soft tortillas and bright tangy sauce. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously.

0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब।
1: हम पर मैं हूं अभी और आपको याद दिला दूं कि कल मदर्स डे है। ऐसे में अभी तक आपने अपनी मदर्स डे की शॉपिंग नहीं की है तो आज आपके पास में मौका है, ताकि कल जबकि मदर्स डे दिवस पर ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन जब अपने मम को आप ग्रीट करें तो साथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट उनके लिए आप लेते जाए या फिर उन्हें भेंट दें, उपहार दें, ताकि मम भी उसे देखकर बिल्कुल खुश हो जाए। वैसे अगर जो अक्सर देखते हैं तो मदर्स डे के दिन कहीं कहीं दूर से भी बच्चे अपने मम को कहीं ना कहीं से बुकेज इत्यादि भेज देते हैं या फिर कॉल करके बातें कर लेते हैं, और ये सभी कुछ रहती है। एंड ये सब कुछ कल मेरे ख्याल से भी रहेगा, क्योंकि एक स्पेशल डे है। जितने भी मम्स आउट देयर है, आपके लिए एक स्पेशल डे होने वाला है। ये सभी कुछ कल रहेगा 10th of May, और इसके दौरान आपके लिए एवरी आवर पर मदर्स डे जो गीत है ये भी लेकर आएंगे, ताकि मदर्स डे को धूमधाम से हम पर आपके साथ में सेलिब्रेट कर सके।